जिंदगी सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं बल्कि हर पल को खुलकर जीने का नाम है। छोटी छोटी खुशियां, मुस्कुराना, अपनों के साथ हंसना और हर दिन को एक नए उत्सव की तरह अपनाना, यही तो बेहद खूबसूरत जीवन की पहचान है। क्योंकि जो इंसान मस्ती, प्यार और मुस्कान के साथ जीना जानता है और दूसरों को खुश रखना जानता है, वही तो जिंदगी का असली आनंद लेता है।

और देखिए धीरे धीरे भोर सुहानी प्रोग्राम के अंत पर हम आ चुके हैं और चलते चलते हम आपको छोड़े जा रहे हैं एक बेहद खूबसूरत अर्जी के साथ, गीत के साथ। आपकी और हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। सुरभि को दीजिए।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 जून 2026 सुबह के 5:53 और 34 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब समय है कार्यक्रम विवरण का। 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी समाचार आप सुन सकते हैं, 6:10 का समय है कार्यक्रम अर्पण का।

7:10 पर गोल्ड सुप्रभात कार्यक्रम का लुत्फ ले सकते हैं। 8:45 पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी। नौ बजकर दस मिनट पर प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का प्रसारण होगा। 12:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी। आज की फिल्म है मेरा नाम जोकर। 1:10 पर दिल ढूंढता है और 3:30 पर रेडियो किड्स। 4:30 का समय है परिक्रमा का। 6:10 पर आप सुनेंगे सदाबहार गीत और 11:10 पर गीत मेरे मन में। 10:30

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम ने और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना

एक नूतन सुबह, एक नई चेतना और ईश्वर की असीम अनुकंपा। आप सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमन, सुप्रभात। उस अदृश्य अनंत और सर्वव्यापी सत्ता का आधार प्रकट करने के लिए शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं, जिसने सृष्टि के कण कण में अपना प्रेम पिरोया है, जिसने हमें हर संकट में संभाला है। आज उस ईश्वर की चौखट पर श्रद्धा के कुछ फूल अर्पित करने का दिन है। आज का ये कार्यक्रम हमारे और आपके भीतर बैठी उसी दिव्य ऊर्जा को समर्पित है। आइए अपनी व्यस्तताओं को थोड़ी देर के लिए विराम दें और सहजता और शालीनता के साथ उस परमपिता परमेश्वर की कृतज्ञता में लीन हो जाएं। जीवन बहुत खूबसूरत है, बस इसे जीने की जरूरत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अर्पण। अर्पण में आपके साथ हूं मैं शीतल। 6:13 और 6 सेकेंड हुए हैं। जीवन में जब हम ईश्वर की अनुभूति कर लें, फिर संकट खुशी सब समान ही लगता है।

हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो अपने साथ सिर्फ उजाला नहीं लाता, बल्कि हमारे बीते हुए कल की हर निराशा को मिटाने की एक नई उम्मीद लेकर आता है। ईश्वर ने अगर हमें आज का ये नया दिन दिया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे हिस्से की खुशियां और हमारी सफलता अभी बाकी है। इसीलिए उठिए, एक गहरी सांस लीजिए और पूरे विश्वास के साथ कहिए, आज का दिन मेरा है और मैं इसके हर पल को खुलकर जीऊंगी। कल चाहे जैसा भी था, आज एक नया पन्ना है और आज इस नए पन्ने पर मैं एक नया इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आज के दिन की शुरुआत करें और चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें।

अक्सर हम अपनी कमियों को ढूंढने में इतना वक्त लगा देते हैं कि हमारे भीतर छुपी असीम शक्तियों को हम देखना ही भूल जाते हैं। हमें याद रखना है, जिस ईश्वर ने इस पूरी कायनात को बनाया है, उसने हमारे भीतर भी उसे दिव्य ऊर्जा का एक अंश रखा है। हम कमजोर नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं। हम अपनी सोच को सकारात्मकता के पंख दें, फिर देखें, ये आसमान भी हमारे हौसलों के आगे छोटा नजर आने लगेगा। हमें कभी भी खुद को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हमारे भीतर स्वयं उस ईश्वर ने अपना स्थान सुनिश्चित किया है। 6:26 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है अर्पण, और अर्पण में आपके साथ हूँ मैं शीतल।

जिंदगी में कभी कभी ऐसा दौर आता है जब लगता है सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए जहां हमारे विचार और हमारे प्रयास रुक जाते हैं वहां से ईश्वर की कृपा शुरू होती है। जब मिट्टी को सबसे ज्यादा तपाया जाता है तभी वो एक मटका बनकर शीतलता देने के काबिल बनता है। अपने जीवन के संघर्ष में हम जितनी चीज़ों को सह रहे हैं वो ईश्वर हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें निखारने के लिए दे रहा है। बस हमें उस परम पिता पर अटूट विश्वास रखना है। मुश्किलें हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। ईश्वर की योजना हमारी योजना से हमेशा बेहतर होती है। इसीलिए कहा गया है कि हृदय में सिर्फ उन पर विश्वास रहे तो फिर जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हम मुस्कुराहट के साथ कर सकते हैं।

भविष्य की चिंता में आज के इस खूबसूरत पल को हमें नहीं गंवाना है। आज जो हमारे पास है वो कई लोगों का सपना था। हम मुस्कुराएं, मेहनत करें और अपने कर्म को ही अपनी पूजा बनाकर अपने इस जीवन को बिताएं। जब हम पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं तो प्रकृति और ईश्वर खुद ब खुद हमारे लिए सफलता के मार्ग खोल देता है। आज अगर हम जिएंगे तो फिर इस जीने को आने वाले समय में हम महसूस कर पाएंगे और याद करके अपने होठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट को सजा पाएंगे।

विधि के विधान के अनुसार श्री राम तथा जानकी का विवाह शिव के धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। किंतु लोकाचार का अपना ही महत्व होता है। प्रत्येक कुल की अपनी मर्यादा तथा परंपरा होती है, जिसका परिपालन ऐसे शुभ अवसरों पर ही होता है। अतः वेदों में वर्णित तथा राज पुरोहितों द्वारा अनुशंसित आचार के लिए राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास शुभ संदेश लेकर अपने दूत भेजे। संदेशवाहक पत्र लेकर श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे। पाती बांचते हुए महाराज दशरथ का हृदय पुलकित हुआ और नैनों में आनंद के आंसू छलक आए। जनकपुरी से आए दूतों का समाचार सुन मित्र मंडली के साथ खेलते हुए भरत तथा शत्रुघ्न दौड़े आए। अपने प्राणों से भी प्रिय भाइयों श्री राम तथा लक्ष्मण का कुशल क्षेम जानने के लिए। जब से ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ के दो पुत्र ऋषि मुनियों की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, तब से आज पहली बार उन दो किशोरों के कुशल क्षेम का समाचार मिला था। दूतों ने धनुष यज्ञ में श्री राम के पराक्रम की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ, जिसमें आज आपने सुने बालकांड का कुछ अंश। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत, तो हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। उसके बाद होगा आपका और हमारा साथ एक बार फिर गोल्ड सुप्रभात में। आप सुने ठीक 6:55 पर संस्कृत में समाचार।

0: हित के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेज के बगैर या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावना बढ़ जाती है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत के किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की योदायु कीमतों को पराजित किया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ले युंग के होगा। फीवा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international

7:22 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये है गोल्ड सुप्रभात और लग तो रहा है कि दोपहर हो रही है। जी हाँ, अगर मैं स्टूडियो की खिड़की से बाहर की तरफ झांक रही हूँ तो सूर्य देव अपनी पूरी तपिश में आ चुके हैं। और जब सुबह सुबह मैं आ रही थी तो मैं अपने जो है जो मेरे साथ थे उनसे मैं यही कह रही थी कि अगर सुबह के वक्त इतनी ज़्यादा गर्मी है तो आज पूरे दिन का क्या हाल रहने वाला है। और क्योंकि छुट्टी का दिन है और ख़ासतौर से अगर हम कहें कि बच्चों के लिए स्कूल कल से खुलने वाले हैं या फिर एक से खुलने वाले हैं, तो उनके लिए भी नज़दीक ही आ चुका है ये समय। तो ज़रूरी है कि आज का दिन आप बहुत अच्छे से प्लान कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि चलो भाई आज के दिन आप कुछ खास कर लें, लेकिन बाहर निकलने से पहले तापमान पर भी नज़र डालनी बहुत ज़रूरी है। आज का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और हवा में उमस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेगी आज पूरे दिन, जिससे थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो सकती है। और ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। भाई बहुत ज़रूरी होता है कि हम ठीक ठाक रहें। अगर हम ठीक नहीं हैं तो मौसम कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी मज़े का हो, फिर अच्छा नहीं लगता है।

कहते हैं हमारी जिंदगी में किसी ना किसी चीज की इतनी अहमियत होती है कि अगर हम बहुत बुरी से बुरी कंडीशन में भी हैं और अगर वो चीज हमारे साथ हो जाए तो हम शांत होना शुरू हो जाते हैं। और इस कड़ी में जो बहुत कॉमन चीज होती है बहुत सारे लोगों की, वो होता है संगीत। अगर आप अपने पसंद के संगीत से जुड़ जाएं तो आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं, आप साथ ही में इस खूबसूरत सी जिंदगी को अपने ख्यालों के अनुसार जी सकते हैं। और जब आप अपनी पसंद का गीत संगीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, तो फिर कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी परेशानी हो, अपने आप वो चीज़ें हल होनी शुरू हो जाती हैं।

जी हाँ, किसी को पहले अपना बनाइए, फिर उसके लिए जिंदगी जीना शुरू कीजिए और अपनी जिंदगी में चार चांद लगाइए। फिलहाल वक्त हो चला है 7:29 यानी कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे और गोल्ड सुप्रभात को। मैं शीतल यहीं पर विराम देने की इजाजत चाहती हूँ। आप रखिए अपना ख्याल। 8:45 पर होगा एक बार फिर आपका और हमारा साथ म्यूजिकल दिल लगी में। आप सुनिए समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार, कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहतनाज और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। आज के इस अंक में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका है आपसे सरोकार। महानगरों की खबरें होंगी, इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे और मौसम का हाल जानेंगे और अंत में याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और प्यार भरा नमस्कार एक बार फिर से आप सभी को और शगुन आपको भी।
1: नमस्कार फरहत एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वेल, एवरी मॉर्निंग इज अ जेंटल रिमाइंडर दैट एनीथिंग इज पॉसिबल एंड ऑन दैट नोट वी आर बिगिनिंग विद ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी एंड एज वी डेल्व इनटू द फ्रेशनेस ऑफ द मॉर्निंग। दिस इज आज सवेरे, सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस।
0: जी शगुन, सबसे पहले हम मन की बात से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे और ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आपको बता दें आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा और हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।
1: Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles Patrick Hermini today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. A report.
2: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a three-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
1: Earlier, Prime Minister Modi visited the Botanical Gardens and attended a tree planting ceremony. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. Following this, Prime Minister Modi also interacted with members of the Indian diaspora. The Prime Minister reached Victoria yesterday on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport.
0: और शगुन, कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी एक बेहद खुशखबरी है। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे कई भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं और इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा भी नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों से सलाह दी है कि वो सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू ना करें और मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेज के बगैर या जरूरी दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और श्रद्धालुओं को ये भी सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उनका टूर ऑपरेटर पूरी तरह पंजीकृत और अधिकृत हो।
1: The death toll in Venezuela's earthquakes has risen to 1,430. The latest figures were released as rescuers continued the search for survivors of the 1-2 punch of 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes that devastated the South American nation on Wednesday. We have a detailed report.
3: Venezuela's government has said families reported at least 68,900 people missing 3 days after the earthquakes devastated the South American nation. The National Assembly President Jorge Rodriguez said tens of thousands of people are still working around the clock on search and rescue operations. Meanwhile, the Venezuelan Foundation for Seismological Research, FUNVISES, reported that 4.1 magnitude earthquake was felt across the central region of Venezuela yesterday. The state seismological agency said the epicenter of the latest tremor was located about 35 kilometers west of La Guaira, a key port city on the country's central coast that was declared a disaster zone after sustaining extensive damage from the Wednesday's too powerful earthquake. The agency reported that the quake occurred at a shallow depth of 5 kilometers, which typically amplifies around shaking and increases the potential for structural damages. Seismologists continue to monitor the region closely, with the Venezuelan Foundation for Seismological Research maintaining round-the-clock surveillance. With Rupesh's report, Jigyasa Pandey for Akashwani News, Delhi.
0: अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज किकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान ने ड्रोन से तेल टैंकर किकू पर हमला किया और ये टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहा था और इसमें 20 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल था।
1: वेल ऑन टू स्पोर्ट्स। फर्स्ट इन बैडमिंटन, India's Kidambi Srikanth stormed into the men's singles final of the US Open Championships in California today. Srikanth defeated Japan's Yudai Ukimoto 22-20, 15-21, 21-19 in a hard-fought semi-final. The former world number one had booked his place in the last four with a 21-9, 12-21, 21-8 victory over Liao Zhufu of Chinese Taipei in the quarterfinals. Meanwhile, India's Ronak Chahan will take on Su Li Lang of Chinese Taipei in the other men's singles semi-final today, keeping alive the possibility of an all-India final. Now, in women's singles, India's Devika Sehag bowed out of the tournament after losing to Denmark's Line Christopherson in the semi-finals. Christopherson won 21-16, 11-21, 21-11 to seal her place in the final.
0: और शगुन बैडमिंटन के बाद फीफा फुटबॉल विश्व कप की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम और हैरी केन ने एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा।
1: Now, as part of our series Prakriti Ki Baat Akashwani Ke Saath, we bring you a conversation on Chhattisgarh's Garbage Cafe. Run by Ambikapur Municipal Corporation, the cafe offers meals in exchange for plastic waste. In the program, we speak to Ritesh Seni, in charge of the Garbage Cafe.
4: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: So, to listen to the conversation, tune into 100.1 Akashwani Gold today morning at 9:10 a.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel.
0: तो चलिए शगुन, अब महानगरों की खबरों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली की खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चेतावनी दी है कि जो कोचिंग सेंटर जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें दिल्ली में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक वीडियो मैसेज में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत रेगुलेटरी कानून लाएगी ताकि ज्यादा सख्त निगरानी, बेहतर जवाबदेही और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये फैसला बार बार होने वाली आग की घटनाओं और हाल ही में लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग के बाद लिया गया है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दिल्ली जल बोर्ड ने टैंकर आधारित जलापूर्ति में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले वर्ष की तुलना में 82,117 से अधिक अतिरिक्त टैंकर जलापूर्ति दर्ज की गई है। जल बोर्ड ने बताया कि पिछले वर्ष मई में जहां 106,501 टैंकर जलापूर्ति दर्ज की गई थी, वहीं इस वर्ष मई में ये संख्या बढ़कर 188,618 टैंकर जलापूर्ति तक पहुंच गई है। और इसके साथ ही वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 372 से अधिक अतिरिक्त जल टैंकर लगातार जलापूर्ति सेवा में लगाए गए हैं। वहीं बात कर लेते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। विश्वविद्यालय ने बताया कि सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 में सम्मिलित हुए वे अभ्यर्थी जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में प्रवेश लेना चाहते हैं वो सामान्य सीट आवंटन प्रणाली 2026 पोर्टल CSS पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थी विश्वविद्यालय के 67 कॉलेजों में 100 से अधिक BA कार्यक्रमों सहित 73 स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकेंगे। जीओ ने बताया कि अभ्यर्थी केवल अपने CUET UG 2026 आवेदन संख्या के माध्यम से CSAS पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। तो ये तो थी बात दिल्ली की, और अब शगुन आपसे जानते हैं चेन्नई में क्या है खास।
6: जी, सो इन चेन्नई, इन एक्चुअली तमिलनाडु, मोर देन 52.9 लाख चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, दे विल बी एडमिनिस्टर्ड ओरल पोलियो वैक्सीन टुडे। The State Health Department launches the National Pulse Polio Immunization Drive at 43,051 booths across the state. The government conducted campaigns at primary health centers, even government hospitals, Anganwadi centers, schools and other locations, which started from 7 a.m. and will go on till 5 p.m. today. And in addition to fixed booths, transit vacation centers have also been set up at major bus stands, railway stations, airports, toll plazas and check posts to cover children on the move as well. So children living in remote and inaccessible areas will also be covered through mobile medical teams. More than 2 lakh personnel, including healthcare workers, Anganwadi staff, teachers and volunteers, will be participating in the campaign. So this was all about oral polio vaccine. This will be administered today.
0: और अब आइए महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने राज्य भर के अभिभावकों से आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान में भाग लेने की अपील की है, जिसमें ये सुनिश्चित करना शामिल है कि 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को मौखिक पोलियो का टीका लगाया जाए। श्री आंबेडकर ने बताया कि इस अभियान के लिए महाराष्ट्र भर में 88,479 टीकाकरण बूथ, 26,530 ट्रांजिट टीमें, 13,518 मोबाइल टीमें और 586 रात्रिकालीन टीमें तैनात की गई हैं। इन्होंने अभिभावकों से 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निकटतम टीकाकरण बूथ पर ले जाने का आग्रह किया है। जो बच्चे टीकाकरण बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें अगले 5 दिनों तक शहरी क्षेत्रों में और 3 दिनों तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर टीकाकरण किया जाएगा। तो एक बहुत ही शगुन अच्छी पहल है, जहां पर बच्चों को टीकाकरण जो है किया जाएगा, क्योंकि उनकी ताकि जो स्वास्थ्य को देखते हुए ये फैसला जो है काफी लाभकारी है।
6: एग्जैक्टली।
0: और अब महाराष्ट्र बांध की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के बड़े, मध्यम और छोटे बांधों में इस्तेमाल लायक पानी का औसत भंडार कल तक 22.73% था, जो पिछले वर्ष इसी दिन के 82.16% से काफी कम है। अमरावती में इस्तेमाल लायक पानी का भंडार सबसे ज्यादा 38.11% है। इसके बाद बारी आती है नागपुर की, 30.57% है वहां पर। कोंकण की बात की जाए तो 27.72% वहां पर दर्ज किया गया है, और छत्रपति संभाजीनगर 24.52% का स्थान ले चुका है। पुणे डिवीजन में पानी का भंडार सबसे कम है, जहां जलाशय अभी अपने इस्तेमाल लायक क्षमता के 13.46% पर है। और अब महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता प्रवेश परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले पर्दाफाश किया गया है। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी TET के प्रश्न पत्र दिल्ली से लाए थे और कथित तौर पर उन्हें लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर तीनों आरोपियों को सौदा होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साहू और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है।
6: Heading now to Bengaluru, Farhat. Vice President C.P. Radhakrishnan will launch the Nasha Mukt Bharat campaign in Bengaluru, organized by Rajiv Gandhi University of Health Sciences to mark its 31st Foundation Day. This campaign, set with a goal towards creating a drug-free India, will be organized in collaboration with the Narcotics Control Bureau and Disha Bodh Foundation. And this event will be graced by Karnataka Governor Thavarchand Gehlot, Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazir, and Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar. So the students and staff of Rajiv Gandhi University of Health Sciences and its affiliated medical colleges will pledge to uphold the values of academic excellence, ethical healthcare service, social responsibility, and to contribute towards building a healthier and drug-free India. And as part of the campaign, the committees formed at the college level will tackle the menace of drug abuse on their campus and ensure that there is no availability of drugs around their campus. And they will provide mental health facilities, which involves psychologists, psychiatrists to help the students rehabilitate. Such a great initiative.
0: बिल्कुल शगुन। और उसी तरीके से पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। राज्य के शिक्षित युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने आईटीआई कॉलेजों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस के अवसर पर शनिवार को कोलकाता में बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने कहा कि इन शिक्षण केंद्रों के बुनियादी ढांचे को तेजी

0: से उन्नत करने के लिए अधिक निवेश के लिए राज्य सरकार ने 51 ITI कॉलेजों को निजी संगठनों के साथ 5 साल की अवधि के लिए संयुक्त रूप से संचालित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न कॉरपोरेट घरानों के साथ संयुक्त उद्यम में इन कॉलेजों का संचालन करेगी। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें 1,200 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के साथ साथ रोजगार बढ़ाने और युवाओं के कौशल को निखारने के लिए प्रधानमंत्री सेतु योजना पर भी जोर दिया जाएगा।
1: नाउ वी आर हेडिंग टू हैदराबाद। This is all about Cinecathon 2026, where Union Minister G. Kishan Reddy emphasized that India's future relies heavily on its creative economy. And this event happened at National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises, where he emphasized that India's future relies on creative economy. And he urged the youth to leverage India's vast, thousands of years old cultural heritage and storytelling potential. And he also cited global cinematic wonders, which include Bahubali, RRR, Hanuman. He highlighted India's robust infrastructure growth and noted that the country has built over 100 new airports in the last decade and expanded national highways by nearly 70% and emerged as the world's fourth largest economy. He asserted that infrastructure must be complemented by sharp, creative thinking to generate global intellectual properties. Underlining India's leadership in digital ecosystems, the minister stated that India now dominates global digital transactions and surpassing nations like the US, Germany and China. So this was all about metro cities.
0: महानगरों की खबरों के बाद अब आइए मौसम का रुख कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो आज तैयार हो जाइए क्योंकि मौसम का रुख बदलने वाला है। आज बारिश की संभावना है।
2: वाओ, रियली?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि कल काफी गर्मी का एहसास लोगों को था।
2: Exactly.
0: दो दिनों से हो रहा है,
2: रियली ह्यूमिड।
0: जी बिल्कुल, तो अगर आज बारिश हो जाती है तो मौसम जो है बेहतर हो सकता है। लेकिन तापमान में भी वृद्धि दर्ज होगी, 41 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। जी न्यूनतम तापमान रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस। मुंबई की अगर बात की जाए तो वहां पर भी बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में बारिश की संभावना है, न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
2: सो फरत, इन अदर 3 मेट्रो सिटीज इट मे रेन। चेन्नई इज लाइकली टू विटनेस अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और इवन थंडरस्टॉर्म। The temperatures are expected to range between minimum 28 degrees Celsius and maximum 37 degrees Celsius. If we talk about Bengaluru, is forecast to experience a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 21 degrees Celsius, while the maximum temperature may reach 31 degrees Celsius there. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperatures are expected to range from 24 degrees Celsius to 33 degrees Celsius Farhat in Hyderabad.
0: जी, तो ये तो था मौसम का हाल। और अब आइए इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। आज 28 जून 2026 है और सबसे पहले बात करते हैं सन 1846 की। एडोल्फ सेक्स ने वाद्य यंत्र सेक्सोफोन को पेटेंट कराया आज ही के दिन।
2: In 1919, the Treaty of Versailles was signed today at the Palace of Versailles. It imposed severe territorial losses, massive financial reparations and strict military limitations on Germany while establishing the League of Nations.
0: 1857 में नाना साहब ने बिठूर में स्वयं को पेशवा घोषित किया, अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया।
2: In 1932, the Marylebone Cricket Club concluded a 3-day test match at Lord's, defeating India by 158 runs during India's historic first ever test series.
0: 1894 में आज के दिन श्रम दिवस पर अमेरिका में आधिकारिक अवकाश घोषित हुआ।
2: In 1995, the government of Madhya Pradesh officially designated the state as a tiger state to protect and conserve the big cat population.
0: सन 1902 में अमेरिकी संसद ने स्पूर्ण कानून पारित कर राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को कोलंबिया से पनामा शहर के अधिकरण का अधिकार दिया।
2: In 1996, India opened its first official mission in the area under the Palestinian Authority in Gaza City.
0: सन 1981 में चीन ने कैलाश और मानसरोवर का रास्ता खोला।
2: In 2008, T.S. Narayan Swamy, the then chairman and managing director of the Bank of India, was elected as the

0: President of Indian Banks Association. In 2010, the Gyaneshwari Express derailed and collided with a freight train in West Bengal's Midnapur district, and this resulted in the tragic deaths of 149 passengers.
1: 1995 में बाघों को शिकारियों से बचाने और उन्हें आश्रय देने के लिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट घोषित किया गया। तो ये तो थी इतिहास की बात, और अब आइए कुछ जानी मानी शख्सियतों को याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के नौवे प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाने वाले पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव की। वर्ष 2024 में भारत सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया।
0: Today we are also remembering Jean-Jacques Rousseau, philosopher, writer and a composer as well. His political philosophy influenced the progress of Age of Enlightenment throughout Europe as well as aspects of the French Revolution, and this actually led to the development of modern political, economic and educational thought. So Rousseau's discourse on inequality, which argues that private property is the source of inequality and the social contract, outlines the basis for a legitimate political order and cornerstones in modern political and social thought. So Rousseau's sentimental novel, Julie, this was important to the development of romanticism in fiction, and Emile, or On Education, is an educational treatise on the place of the individual in society. And Rousseau's autobiographical writings, such as the posthumously published Confessions, this was completed in 1770. This initiated the modern autobiography, and the unfinished Reveries of the Solitary Walker exemplified the late 18th century Age of Sensibility and featured an increased focus on subjectivity and introspection that later characterized modern writing. I was telling you about Jean-Jacques Rousseau.
1: और आज जन्मदिन है भारत की ऊंची कूद के खिलाड़ी मरियप्पन थंगावेलु का। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पैरालंपिक खेलों में पुरुषों के ऊंची कूद मुकाबले में मरियप्पन थंगावेलु ने स्वर्ण और वरुण भाटी ने कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। मरियप्पन थंगावेलु ने एक जंप में भी सोना जीता था, जबकि भाटी ने एक जंप में लगाते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया था। थंगावेलु और भाटी की सफलता के बाद अभी तक की सभी पैरालंपिक खेलों में भारत के कुल पदकों की संख्या 10 है, जिसमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: टुडे वी आर आल्सो रिमेंबरिंग पंडित चंद्रकांत कामत, हिंदुस्तानी क्लासिकल तबला प्लेयर ऑफ द बनारस तबला घराना। सो कामत स्टार्टेड एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन द नाटक or musical plays of his father's theatre company Anand Vilas, and began learning the tabla at a very young age. Learned from Gurus Raghunath Shivalkar and Digambar Yamaji Kadam, and he also trained in Indian classical dance.

और श्रोताओ, आज ही के दिन जन्म हुआ था हिंदी के समाचार पत्र दैनिक आज के संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त का। देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों को इनका समर्थन प्राप्त था। अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए भी शिव प्रसाद गुप्त ने कई बार जेल की सजा काटी। ये काशी विद्यापीठ के संस्थापक रहे। बनारस में भारत माता मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। और एक और साहित्यकार का आज जन्मदिन है, अमर गोस्वामी का। वे मनोरमा और गंगा जैसी देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं से लंबे समय तक जुड़े रहे थे। अमर गोस्वामी साहित्यिक संस्था विचारिकी के संस्थापक भी रहे। इन्होंने कई साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन किया।

0: और आज ही के दिन उन्होंने हमें सन 2012 में अलविदा कह दिया था।
1: टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग ड्रास ट्रम्पेटर पीट कैंडली, प्लेड विद द बिग बैंड्स ऑफ वुडी हर्मन एज वेल एंड वर्कड इन रिकॉर्डिंग एंड टीवी स्टूडियोज। Well, he has been credited with playing such beautiful compositions, one of which, let's listen now.

0: श्रोताओं, इसके साथ ही अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें कहना होगा आपसे अलविदा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर।
1: वेल, वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। विद दैट, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए है। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य

0: श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
4: हमारे यहाँ दो कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: जी लवलीन, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफरसेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो GM मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में है। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ सेशेल्स पैट्रिक हर्मिनी टुडे टू ऑल्सो एड्रेस सेशेल्स नेशनल असेंबली एंड इंटरैक्ट विद मेंबर्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा। Prime Minister to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 this morning. Ministry of External Affairs asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. US military strikes multiple targets in Iran for second day at the direction of President Donald Trump. Death toll in Venezuela's earthquakes rises to 1,430 as rescuers continue search for survivors. And India's Kidambi Shri

0: मसरूफ हैं। और भारत के किदाम्बी श्रीकांत कैलिफोर्निया में जारी अमरीकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी से बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा शराकतदारी के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे और बाहमी मुफादात के इलाकाई व बैनुल-अक़वामी मामलात पर अपने ख्यालात का तबादला करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और भारतीय बरादरी के अरकान से बातचीत करेंगे। बाद में वज़ीर-ए-आज़म मोदी रोश कैमन में कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजारत ने बताया कि भारतीय दिफाई अफवाज का एक दस्ता भारतीय बहरिया के दो जहाजों के साथ इन तकरीबात में हिस्सा लेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के तीन रोजा सरकारी दौरे पर हैं। इस दौरान वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली में मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत करेंगे। यह दौरा भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और देरपा दोस्ती को तकवीत देगा और तमाम शोबों में दोनों मुल्कों के दोतरफा ताल्लुकात के मुश्तरका अज़्म को फरोग देगा। नई दिल्ली से आकाशवाणी के लिए अक्षित विद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बोटेनिकल गार्डन्स का दौरा किया और शजरकारी की एक तकरीब में हिस्सा लिया। उन्होंने बोटेनिकल गार्डन में जाइंट टोर्टाइज इनक्लोजर का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म सेशल्स के अपने तीन रोजा दौरे पर कल विक्टोरिया पहुंचे। एयरपोर्ट पर सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज़, DD न्यूज़, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो कैलाश मानसरोवर यात्रा उस वक्त तक शुरू न करें जब तक उन्हें पूरे सफर के लिए तमाम जरूरी दस्तावेजात हासिल न हो जाएं। वजारत ने यह हिदायत निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हुए नेपाल में फंसे हुए भारतीय यात्रियों की मदद की दरखास्तें मौसूल होने के बाद जारी की हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वजारत खारजा ने कहा है कि कुछ भारतीय शहरी निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हो गए, लेकिन वो चीन में दाखिल होने के लिए लाजमी वीजा और एंट्री परमिट हासिल किए बगैर नेपाल पहुंच गए। इसके नतीजे में कई यात्री नेपाल में फंस गए और उन्होंने वजारत खारजा से मदद तलब की। वजारत ने यात्रियों को हिदायत दी है कि वो तमाम सफरी दस्तावेजात और इजाजतनामों की तस्दीक के बगैर सफर शुरू ना करें, क्योंकि जरूरी इजाजतनामे हासिल होने से पहले रवानगी सफर के दौरान मुश्किलात का बायस बन सकती है। वजारत ने यह भी कहा कि यात्री रवानगी से कबल इस बात की जरूर तस्दीक कर लें कि उनका टूर ऑपरेटर बाकायदा रजिस्टर्ड और मजाज है। वजारत खारजा की इस हिदायत का मकसद यात्रियों के लिए महफूज, आसान और बिला रुकावट रूहानी सफर को यकीनी बनाना और उन्हें गैर जरूरी परेशानी से महफूज रखना है। दिल्ली से रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहन अम्मार।
0: उमूर दाखिला और इमदादी बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज शाम गांधीनगर में PM फैमिली केयर ट्रेकर आजमाइशी प्रोजेक्ट का बाजाब्ता इफ्तिताह करेंगे। इस नए इकदाम का मकसद खानदानों के लिए सेहत की निगरानी के निजाम को बेहतर बनाना, नीज सेहत और फलाही खिदमत तक उनकी रसाई को मजीद आसान बनाना है। जनाब अमित शाह अहमदाबाद में बूथ सुदूर और शक्ति केंद्रों के इंचार्ज के लिए मुनक्कदा खसूसी चिंतन शिविर में भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर वो जमीनी सतह पर तंजीमी हिकमत अमली का जायजा लेंगे और मकामी पार्टी वर्करों से भी बातचीत करेंगे। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत ने गुज़श्ता 12 बरसों में सेहत की देखभाल में नुमाया पेशरफ्त की है और वो हर शहरी के लिए काबिल रसाई किफ़ायती और मेयारी सेहत की देखभाल को यकीनी बनाने और आलमी सेहत की कवरेज के वसी तर हदफ की सिमत काम कर रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के नवे एडिशन से खिताब करते हुए मोहतरमा पटेल ने कहा कि हुकूमत ने अपनी पॉलिसी के मरकज में रोकथाम के साथ अपनी सेहत के नुक्ते नज़र की बीमारी की देखभाल से तंदुरुस्ती और मुकम्मल तौर पर

0: इलाज मुआलजे से जामी सेहत की देखभाल की तरफ मुंतकिल कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद होने वाले 6 जांबाज फौजियों की अजीम कुर्बानी का सरकारी तौर पर पहली बार हाल ही में एतराफ किए जाने से मुतालिक मीडिया और सोशल मीडिया के बाज हलकों में गर्दिश करने वाली खबरों पर वजारत दिफा ने अपनी वजाहत पेश की है। वजारत ने इन खबरों को हकायक के मुनाफी करार दिया। वजारत के मुताबिक मुल्क ने शहीदों को अवलीन मौके पर खराज अकीदत पेश किया था। उस वक्त के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन DGMO ने गुज़श्ता बरस 11 मई को मुनक़िदा सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 6 शहीदों को खराज अकीदत पेश किया था। वजारत ने मजीद बताया कि इन शहीदों को बहादुरी के एजाजात भी अता किए गए थे, जिनका ऐलान गुज़श्ता बरस 14 अगस्त को एक प्रेस रिलीज में किया गया था। वजारत ने मजीद कहा कि भारतीय फौज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया था। वजारत दिफा ने कहा कि शहीदों के नाम तयशुदा प्रोटोकॉल के मुताबिक नेशनल वार मेमोरियल पर कुंदा किए जाते हैं और ये कहना कि मुकर्रा प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया गया हकाइक के खिलाफ है। उसने मजीद कहा कि इस तरह की गुमराहकुन इतलात न सिर्फ हकाइक को मस्क करती हैं बल्कि शहीदों के अहले खाना के लिए गैर जरूरी तकलीफ का बाइस बनती हैं। इसके साथ ही वतन के लिए अजीम कुर्बानी देने वालों के वक़ार को भी मुतासिर करती हैं। वजारत ने तमाम शराकतदारों से अपील की है कि शहीदों से मुतालिक खबरों की इशात में जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहरा करें और गैर मुसद्दका मालूमात की तशहीर से गुरेज करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी फौज ने कहा कि सदर ट्रंप की हिदायत पर उसने लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों को निशाना बनाया। इस दौरान नाजुक जंगबंदी एक बार फिर दबाव का शिकार हो गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी फौजी तैयारों ने ईरान के फौजी निगरानी के निजाम, मौसलाती निजाम, फिजाई दिफाई तनसीबात, ड्रोन मराकज और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत से मुतालिक ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी फौज के मुताबिक ये कार्रवाई जुमे के रोज एक तजारती बहरी जहाज पर होने वाले हमले के जवाब में की गई। सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरानी फोर्सेज ने कीकुनामी तेल बर्दार जहाज पर एकतरफा ड्रोन से हमला किया। यह जहाज आबनए हुरमुज से गुजर रहा था और इसमें 20 लाख बैरल से ज्यादा खाम तेल मौजूद था। अमरीकी फौज का कहना है कि ईरान के पास जंगबंदी मुआहदे की पासदारी का मौका था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसकी फोर्सेज ने कीकू ऑयल टैंकर पर हमला किया। दूसरी जानिब ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इतला दी है कि आबनए हुरमुज के शुमाल में वाकई एक इलाके में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजलों के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 1430 हो गई है। इमदादी टीमें अब भी मलबे तले दबे लोगों की तलाश में मसरूफ हैं। यहां बुध के रोज 7.2 और 7.5 की शिद्दत के दो ताकतवर जलजलों ने जनूबी अमरीका के इस मुल्क में वसी पैमाने पर तबाही मचाई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वेनेजुएला की हुकूमत ने कहा है कि जलजलों के 3 दिन बाद भी 68,900 लोग लापता हैं। इनकी गुमशुदगी की इतला उनके अहले खाना ने दी है। कौमी असेंबली के सदर जॉर्ज रोड्रिग्स ने कहा कि हजारों इमदादी कारकुन रात दिन मुतासरा इलाकों में तलाश और बचाव की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। वेनेजुएला के जलजले से मुतालिक मुतालियात की फाउंडेशन फुनविसिस ने इतला दी है कि वेनेजुएला के वस्ती इलाकों में 4.1 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। सरकारी इदारे ने बताया कि इस जलजले का मरकज मुल्क के अहम वस्ती साहली शहर लागुएरा से तकरीबन 35 किलोमीटर मगरब में था। बुध के रोज आने वाले दो ताकतवर जलजलों से हुए बड़े पैमाने पर नुकसान के बाद इस इलाके को आफतजदा जोन करार दिया गया है। इदारे के मुताबिक जलजला सिर्फ 5 किलोमीटर की गहराई में आया, जिसकी वजह से जमीन ज्यादा शिद्दत से लरस गई और ढांचा जाती नुकसान भी ज्यादा हुआ। जलजले के माहरीन मुतासर इलाके पर करीबी नजर रखे हुए हैं, जबकि फुनविसिस भी दिन रात निगरानी का काम जारी रखे हुए है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: दिल्ली की वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता ने खबरदार किया है कि जो कोचिंग सेंटर लाजमी हिफाजती उसूलों पर अमल नहीं करेंगे उन्हें दिल्ली में कोचिंग सेंटर चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत जाब्ता जाती कानून मुतारिफ कराएगी ताकि कोचिंग सेंटरों की सख्त निगरानी, ज्यादा जवाबदेही और तलबा की बेहतर हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आला ने तलबा से अपील की कि अगर उनकी कोचिंग सेंटर में हिफाजती इंतजाम में कोई कोताही या लापरवाही हो तो वो

0: इसकी इत्तला ईमेल, मैसेज या फोन के जरिए हुकूमत को दें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने मरदमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत मकानात की फेरिस्त साजी और गिनती का काम 100% मुकम्मल कर लिया है। ऐसा करने वाला ये मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पहले अजला में से एक बन गया है। हम अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के हिस्से के तौर पर छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के बारे में एक मुजाकरा नशर करेंगे। ये कैफे अंबिकापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाती है, जिसमें प्लास्टिक कचरे के बदले में खाना पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमने गार्बेज कैफे के इंचार्ज रितेश सैनी से बात की।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: इस बातचीत को आप 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। आप हमारा ये प्रोग्राम न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। बैडमिंटन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत कैलिफोर्निया में जारी अमरीकी ओपन चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में एक सख्त मुकाबले में जापान के खिलाड़ी युदाई वो की मोतो को 22-20, 15-21, 21-19 से हराया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ है मोहम्मद अम्मार।
5: शुक्रिया फैसल। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम ने मोदी के सेशल्स पहुंचने की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, सेशल्स बहर हिंद खित्ते में भारत की बहरी सलामती और खुशहाली की हिकमत अमली का कलीदी हिस्सा है। वजीर आजम मोदी सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब भी करेंगे। इसी अखबार ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान को शह सुर्खी बनाया है, रिहाइश के लिए जरूरतमंद लोगों के इलाज और मकान का इंतजाम करेगी हुकूमत। रोजनामा इंकलाब ने अपने अंदरूनी सफे पर एक अहम खबर को शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मुल्क की पहली 8-लेन सुरंग खोल दी गई। इसी अखबार ने अपने आलमी सफे पर एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है, ईरान के मुतादिद फौजी अहदाफ पर अमरीका की बमबारी, तेहरान का जवाबी हमला।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हरमनी के साथ बातचीत करेंगे। वो सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब करेंगे और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगे। वजीर आजम आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों से कहा है कि वो तमाम जरूरी सफरी दस्तावेजात के बगैर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर न जाएं। अमरीकी फौज ने सदर ट्रंप की हिदायत पर लगातार दूसरे दिन ईरान में मुतअद्दिद ठिकानों पर हमले किए हैं। वेंजवेला में जलजले से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1,430 हो गई है। बचाव टीमें अभी जिंदा बच जाने वाले अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

वक्त एक बेबाक साज है जो बज रहा है हरदम, सुर से सुर मिलाओगे तो खिल उठेगी सरगम, बीते दिन

की राख को हवा में तुम उड़ा दो, जो सो रहा है भीतर उस जादूगर को जगा दो। उजाले की इस कशिश में तुम आग की तरह छिपे हो, जो रूह में मध्यम है उस संगीत को जगा दो। और कदमों की हर चाप को तुम एक मुकाम दे दो, इस बहते हुए लम्हे को तुम अपना नाम दे दो। संगीत की रवानगी का सा गहरा मिजाज कर लो, इरादों की सल्तनत पर तुम आज राज कर लो। और इस राज करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में आप खुद से मुलाकात कर चुके हों। फिलहाल आपकी मुलाकात हो रही है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मुझसे यानी शीतल से। आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से मेरा नमस्कार, अभिनंदन, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम। और ये है म्यूजिकल दिल लगी। म्यूजिकल दिल लगी में बात होती है दिल की खूबसूरती की, प्यार की, मोहब्बत की, क्योंकि भाई जितनी हम अच्छी बातें करेंगे उतनी सारी अच्छी चीज़ें हमारे भीतर सिमट कर आएंगी। और आप जानते हैं कि हम सब शब्दों के जादूगर हैं। हम चाहें तो इन शब्दों से किसी के दिल को छलनी कर दें, और चाहें तो इन्हीं शब्दों से किसी के दिल को, उसके जख्मों को हम मिनटों में भर दें। तो क्यों ना आज अपने शब्दों से वो जादू बिखेरा जाए, जिस जादू का इंतजार हमारे आसपास वाले लोग कर रहे होते हैं।

8:56 और 2 सेकंड हुए हैं। धीरे धीरे करके ये वक्त तो गुजर ही रहा है, लेकिन हम चाहें तो इस वक्त को थाम सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त को जीकर कुछ ऐसा करके जो हमारे बाद भी याद किया जाएगा। और ऐसी चीज़ों में शामिल होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और आजकल तो सचमुच हमारे जीवन में ऐसी चीज़ों की भरमार है, हम बाहर मार्केट में देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते, और बहुत से लोग हैं जिनको उनकी ज़रूरत है। तो आज के दिन थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने घर से उन सारी चीज़ों को, अगर आप ऐसे लोगों को दे पाएं जो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको वो याद भी रखेंगे और आपके साथ उनका जो जुड़ाव है वो और गहरा दर गहरा होगा।

0: हम चाहते हैं ये मोहब्बत सभी को मिल जाए, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि हम आपकी मोहब्बत और लूट पाएं, आपके साथ थोड़ा और वक्त बिता पाएं, क्योंकि अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ठीक 9:10 पर आपके साथ म्यूजिकल दिल्ली के दूसरे पड़ाव में इंदु होंगी साथ। मुझे यानी शीतल को दीजिए इजाजत। आप सुनिए समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय

0: संवाददाता ने बताया कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई उकिमोतो को 22-20, 15-21, 21-19 से हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क के लाइने क्रिस्टोफरसन से हार गई। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ग्रुप ए के अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। पुरुष टी20 क्रिकेट में आज बेलफास्ट में भारत का सामना मेजबान आयरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में मानसून आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hamini, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. A report.
3: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a 3-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
2: Earlier yesterday, Prime Minister Modi visited the Botanical Gardens and attended a tree planting ceremony in Victoria. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. Following this, Prime Minister Modi interacted with members of the Indian diaspora. The Prime Minister reached Victoria yesterday on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hamini, at the airport. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR.

0: BILAB. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah, who is on a three-day visit to Gujarat, will officially launch the PM Family Care Tracker pilot project in Gandhinagar today evening. This new initiative is aimed at improving healthcare tracking and welfare accessibility for families. Earlier in the day, Mr. Shah will attend a special Chintan Shivir for booth presidents and Shakti Kendra in charges in Ahmedabad, during which he will review grassroots strategies and interact with local party members. The External Affairs Ministry has advised Indian citizens not to commence the Kailash Mansarovar Yatra until they have obtained all required travel documents for the complete journey. The ministry has issued the advisory after receiving requests for assistance from Indian pilgrims stranded in Nepal while undertaking the yatra through private tour operators. The U.S. military said it struck multiple targets in Iran for the second consecutive day at the direction of President Donald Trump as a fragile ceasefire came under renewed strain. In a post on social media, U.S. Central Command said that American military aircraft targeted Iranian military surveillance infrastructure, communication systems, air defense sites, drone storage facilities, and mine layer capabilities in response to an attack on a merchant vessel on Friday. The death toll in Venezuela's earthquakes has risen to 1,430. The latest figures were released as rescuers continued the search for survivors of the 1-2 punch of 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes that devastated the South American nation on Wednesday. Families have reported at least 68,900 people missing. In badminton, India's Kidambi Srikanth stormed into the men's singles final of the US Open Championships in California today. Srikanth defeated Japan's Yudai Ukimoto 22-20, 15-21, 21-19 in a hard-fought semi-final. The former world number one had booked his place in the last four with a 21-9, 12-21, 21-8 victory over Liao Zhufu of Chinese Taipei in the quarterfinals. In football, FIFA World Cup, the Democratic Republic of Congo created history by reaching the knockout stage of the World Cup for the first time after defeating Uzbekistan 3-1 in Group K clash at Atlanta Stadium this morning. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. The Met Department has predicted heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Karaikal, Telangana, Vidarbha, Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands during the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ
2: ये आकाशवाणी है प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इसके अंतर्गत सुनिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा संवाद में भाग ले रहे हैं इस विशेष पहल के पीछे काम करने वाले रितेश सैनी कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आलोक शुक्ल
3: श्रोताओं नमस्कार आजकल आप आम देख रहे हैं कि हर चीज में पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है तो इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं प्लास्टिक के जो कचरे हैं प्लास्टिक की बोतलें हैं जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहां पे लाएं गौरव पथ पे जो बना हुआ है और उसके बदले एक किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा आधा किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा खाने में भी क्वालिटी अच्छी है तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से तो सैनी जी आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ, तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये विचार आया?
4: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया। मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पे ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत एसएलआरएम प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहां पे दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती है। कचरा को संग्रहण करने के बाद एसएलआरएम सेंटर में आता है, जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहां सेग्रीगेशन होता है। और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो एसएलआरएम सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वाशिंग होती है। वाशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन, जो प्लास्टिक का ग्रेनुल्स बनता है, ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया। दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए, तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारा पृथक्करण का खर्चा बचा। जो हम लेबरों से अलग अलग प्लास्टिक को कराते, वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके हमारे पास ला करके दिया, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई, तो वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक के एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पर डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया, उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपए के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया, क्योंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है। बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है। बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक एसएलआरएम सेंटर है। क्योंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है, तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है। जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा एसएलआरएम सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती हैं। उस टोकन को लेकर के आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है। ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है। आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहाँ जमा करिए और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
3: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
4: यस।
3: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में, या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे, उन विचारों को आपने सकारात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया, ये बताएंगे सैनी जी आप?
4: इसमें देखिए क्या हुआ था कि 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था, तो एक हम लोग एक आईसी एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारीगण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचरे को, अन्य सभी कचरों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहाँ पे एक बात आई कि क्या इस कचरे के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या? तो उस समय जो अधिकारीगण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप इस जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा, इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको ये समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर हैं, आप प्लास्टिक को कहां बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर 30-40 रुपए किलो में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर 1 किलो प्लास्टिक में 20 रुपए भी मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए में इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सके, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सके।
3: ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है।
4: जी बिल्कुल।
3: तो उसके लिए भी एक रेट है,
4: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कि ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दें, टोकन वालों को बाद में दें, तो इसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा। क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपए मेरे को आप टोकन का रिडीम आप करेंगे, बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा, तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहे हैं। जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ भेदभाव हो, ऐसी स्थिति ना बने। तो इनको ये कहा गया कि आपको दो टेबल रिजर्व रखना है।

0: कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे?
0: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के एक दो महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जाम्पल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर एक टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को तो मैं अकेले खाना जाता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूँ और अपने परिवार बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊँ, तो मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ? तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
1: जो गरीब परिवार है खासकर जो कचड़े का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
0: होटल वाला भी ये करता है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है, इडली खाने का मन है, तो जरूरी नहीं कि आलू बंडा समोसा ही आप खाइए, आप 2 टोकन दे दीजिए तो उसके बदले में, तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स इसमें निकल करके आए हैं। तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
0: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं, यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी, मतलब कि ऐसा कोई अनहाइजीन सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान भी इनके द्वारा।
1: सनी जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव ये पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं?
0: बिल्कुल,
1: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए?
0: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27-28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था तो 21 दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहाँ पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा, कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो CAG ने भी इस पर विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीज़ों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो CAG ने भी इन सब चीज़ों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
1: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला, समाज के किस तबके को मिला?
0: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि 1 किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, 1 किलो लोहा और 1 किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। 1 किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया, और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। इसमें हम लोग एक ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज करें, मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंके ना, आप प्लास्टिक का यूज कीजिए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, 1 किलो हो गया गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
1: तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है?
0: नहीं,
1: क्या है,
0: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ रहा है, देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50-55 टन कचरे का हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए, जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोजल हो सकता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं,
1: जैविक है
0: वो, ऑर्गेनिक है वो।
1: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे या थर्मोकोल की रहती थी, अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं, ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं, और वो क्या होती है कि वो नष्ट भी हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती हैं। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
0: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है, तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ कुछ आइटम है तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है, उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उस ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने

0: का उल्लेख किया जी, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
1: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में, लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज
0: कैफे पड़ा,
1: बिल्कुल असर
0: वृद्धि हुई है,
1: उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा, इनके प्रति सपोर्ट भी बढ़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं, तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं, ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर इस पर अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको। ना केवल प्लास्टिक, अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चल करके।
0: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल हैं, कई जो पुराने होटल हैं, बड़े होटल, वो स्थापित हैं, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है, जो एक कई सामाजिक जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है, कि या कहें कि ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो, तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
1: सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है, ये रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा है। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज, तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।
0: तो अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है, उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब?
1: इसका जो इकोनॉमिक व्यू है गार्बेज कैफे संचालन का, एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा, तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते, टेंडर करते, कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी, तो इसका एक सब्सिडाइज रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि सबसे मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। अगर मान लीजिए एग्जांपल लूं कि 40 रुपए की प्लेट है, तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूं, ये बिड का आधार था, ना कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में लूंगा। ठीक है, तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहां पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का ये जो प्रीमियम है वो देना होगा, और जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा, लेकिन प्रीमियम बिड को हम लोग फिक्स कर दिया था, उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे। तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया कि यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको फुल पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है, हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना है और वो सीधे दाना बन जाएगा, तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की, वो भी लगभग 20-22 रुपए आ जा रही है। अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20-22, तो 20-22 रुपए वहां से बच गया, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया, तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
0: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है, लाभ का अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है?
1: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है, मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है। नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं, क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रति माह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व इस गार्बेज कैफे का।
0: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री हैं, उनके बल पे ये
1: बिल्कुल चल रहा है,
0: बस चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21
1: यहाँ 21 लोकेशन पे ऐसा
0: 21 लोकेशन पे गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए, और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है,
1: बिल्कुल जानकारी।
0: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
1: छत्तीसगढ़ में तो अभी अंबिकापुर में।
0: तो आप देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से 2019 से ये पहल शुरू हुई, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
1: अभी हम लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर जो कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता के कचरा को लेकर के आ रही है कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बॉटल में पानी पिए और वो बॉटल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं मुंह लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पर सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था। तो उस स्तर का कचरा अब हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है, तो हम सिटीजन के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं, कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें, ये इस तरह से हम लोग और भी इनिशिएटिव
0: टॉकीज में जाकर फिल्म देख सकें।
1: इस तरह की योजना कैसे बच्चों का सपोज दैट।

0: बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी हो, वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप कैसे इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाएं फिर प्रेस करते जाएं, डालते जाएं, वो एक भर इतना कंप्रेस्ड हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक लीटर की प्लास्टिक की बॉटल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है जिसको सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है। तो इस तरह के बच्चे का इनिशिएटिव ले रहे हैं तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव बच्चों को, चाहे वो फिल्म मूवी देख सके कोई बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहे, कंपास देना चाहे, इस तरह के चीजों पे भी कुछ,
1: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
0: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी तो मन की बात में एक एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था। अंबिकापुर में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
1: उसके रैपर
0: को इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब कंपनी हमसे 10 रुपए का 15-20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं तो उसके कचड़े को कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड वाइज अलग अलग किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और उस ब्रांड को कोरियर कर दिया।
1: एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ने एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचरा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। माने कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा है वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
0: हैशटैग गार्बेज कैफे सर्च करिए तो आपको तमाम देशों के मिल जाएंगे, उसमें बांग्लादेश से लंदन इटली वगैरह सारे जगह,
1: जापान कोरिया यहां से भी
0: सभी जगह
1: प्रशंसा आई थी, इसकी
0: प्रशंसा आई थी। अंबिकापुर के ट्वीट को रिट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहां पे ले रहे हैं और ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
1: दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहां से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति हैं रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ला को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे थे इस पहल के पीछे काम कर रहे रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आलोक शुक्ल। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है लक्ष्मण प्रसाद दुबे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, जबलपुर से वृंदा हिंगनीकर और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारतीय स्वाधीनता का इतिहास ऐसे अनेक राष्ट्रभक्तों की कहानी कहता है जो समय की प्रचंड आंधियों के बीच दीप नहीं दिशा बनकर उभरे। भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे गणेश घोष। उनकी यात्रा उस नदी की तरह थी जो चट्टानों से टकरा कर भी अपना मार्ग बनाना जानती है। उनका संकल्प उस अग्नि की तरह था जो स्वयं तप कर भी अपने आसपास उजाला बिखेरती है। गणेश घोष का जन्म 22 जून सन 1900 को अविभाजित भारत के जैसोर नामक स्थान पर हुआ था जो बांग्लादेश के खुलना जिले के पास स्थित है। उनके पिता का नाम विनोद बिहारी घोष था। गणेश घोष बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे तथा अपने आसपास की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति देखकर बहुत अधिक उद्वेलित हुआ करते थे। उनकी शिक्षा आगे बढ़ती रही और आरंभ में उन्होंने ब्रिटिश रेलवे में काम भी किया, लेकिन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान कोलकाता के बंगाल तकनीकी संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए उन्होंने चिटगांव में एक स्वदेशी कपड़े की दुकान भी खोली थी। उन्होंने जो मैकेनिकल और तकनीकी कौशल की शिक्षा ग्रहण की थी वो शिक्षा केवल आजीविका के लिए नहीं थी, बल्कि इस कौशल का प्रयोग वो देश को आजाद कराने के लिए हथियार और बम बनाने के लिए भी करने का विचार करने लगे। भारत की आजादी उनकी आंखों का पहला सपना था। अंग्रेजों की गुलामी से वो अत्यधिक आक्रोशित रहा करते थे तथा मन ही मन क्रांति पथ पर चलने का उन्होंने संकल्प ले लिया। उन्हें विश्वास था कि भारत बहुत जल्द आजाद होगा।

कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान ही गणेश घोष बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर के संपर्क में आ गए थे। वो बहुत जल्द इस संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। चटगांव में रहते हुए ही उनकी भेंट मास्टर सूर्यसेन से हो चुकी थी। सूर्यसेन की सादगी और दृढ़ संकल्प से वो अत्यधिक प्रभावित हुए और उनके सहयोगी बन गए। बहुत जल्द चटगांव में क्रांतिकारियों का समूह बना, जिसमें सूर्यसेन के साथ गणेश घोष, अनंत सिंह और लोकेन बल शामिल थे। इन्हें चटगांव में क्रांतिकारियों की त्रिमूर्ति कहा जाता था। गणेश घोष ने चटगांव के युवाओं को व्यायाम शालाओं के माध्यम से संगठित करना शुरू किया। वो युवाओं को शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाने, लाठी चलाने और अनुशासन सिखाने के प्रभारी थे। वो मास्टर सूर्यसेन द्वारा स्थापित चटगांव रिपब्लिकन आर्मी में सघन रूप से सक्रिय हो गए। ये एक सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से चटगांव को मुक्त कराना तथा पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी भड़काना। इस तरह इस क्रांतिकारी संगठन ने मजबूत आकार ले लिया। सन 1930 आते आते चटगांव की धरती पर एक बड़ी योजना आकार लेने लगी और इसके सूत्रधार थे मास्टर सूर्यसेन, गणेश घोष और अनंत सिंह। इन्होंने निश्चय किया कि अंग्रेजी शासन को सीधे चुनौती दी जाए। योजना बनी कि चटगांव के दोनों शस्त्रागारों पर कब्जा कर लिया जाए, संचार व्यवस्था को ठप्प कर दिया जाए, रेलवे संपर्क काट दिया जाए ताकि ब्रिटिश सेना की सहायता वहां तक न पहुंच सके। 18 अप्रैल सन 1930 गुड फ्राइडे का दिन था। रात करीब 10 बजे भारतीय रिपब्लिकन आर्मी की वर्दी पहने क्रांतिकारियों ने हमला बोल दिया। गणेश घोष ने पुलिस शस्त्रागार पर हमला करने वाले दस्ते का नेतृत्व किया। उन्होंने बड़े ही साहस और चतुराई से वहां मौजूद पहरेदारों को निष्क्रिय कर दिया तथा भारी मात्रा में बंदूकें और मस्कट जब्त कर लिया। उधर अनंत सिंह के समूह ने सहायक बल शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागार पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद सभी क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर इकट्ठा हो गए। वहां मास्टर सूर्यसेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सैन्य सलामी दी गई और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई। गणेश घोष इस नवगठित क्रांतिकारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ संलग्न हुए, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सेना ने चटगांव को चारों ओर से घेर लिया। परिस्थिति देखकर क्रांतिकारी दल जलालाबाद की पहाड़ियों की ओर बढ़ चला।

22 अप्रैल सन 1930 को ब्रिटिश सेना ने जलालाबाद की पहाड़ियों को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस युद्ध में गणेश घोष ने युवाओं का ऐसा हौसला बढ़ाया कि क्रांतिकारियों की सटीक फायरिंग के सामने ब्रिटिश सेना टिक नहीं पाई, उसे पीछे लौटना पड़ा। इसके बाद मास्टर सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर गांवों में छिपने का आदेश दिया। गणेश घोष, अनंत सिंह, लोकेन बल और आनंद गुप्ता हुगली जिले के चंदन नगर में पहुंचे, जो उस समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, इसलिए ये स्थान ब्रिटिश पुलिस के सीधे अधिकार क्षेत्र से बाहर था। यहाँ क्रांतिकारी सुहासिनी गांगुली और शशधर आचार्य ने पति पत्नी होने का नाटक कर एक घर

किराए पर ले लिया, जहां गणेश घोष और उनके साथी छिपे हुए थे। ब्रिटिश खुफिया विभाग को इस ठिकाने का पता चल गया। पुलिस ने इसे घेरकर भयंकर गोलाबारी शुरू की। इस मुठभेड़ में गणेश घोष के साथी मखनलाल घोष शहीद हो गए और गणेश घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। अपनी जेल यात्रा में भी वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने जेल में दो बड़ी भूख हड़ताल भी की थी। उनकी रिहाई के लिए देशव्यापी आंदोलन चले। महात्मा गांधी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और अन्य शीर्ष नेताओं ने ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव बनाया और अंततः 1946 में वो रिहा हुए। आजादी के बाद उन्होंने शस्त्र छोड़कर जन आंदोलन और चुनावी राजनीति का रास्ता चुना। वो पश्चिम बंगाल के गरीब और शोषित वर्ग की आवाज बनकर उभरे। आजादी के बाद वो लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य चुने गए। सदन में वो अपनी प्रखर वाणी और शोषितों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। सन 1967 में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। वो दक्षिण कलकत्ता की सीट से चुनाव जीतकर 4th लोकसभा के सदस्य बने। अपने जीवन के अंतिम 2 दशकों में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि चटगांव विद्रोह और उनके शहीदों का इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक अवश्य पहुंचे। उन्होंने इसी उद्देश्य से बंगाली और अंग्रेजी में कई संस्मरण, लेख और पुस्तकें लिखीं। उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है चट्टग्राम विप्लवेर बन्ही शिखा। ये उस दौर का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। वो जीवन के अंत तक कोलकाता के एक छोटे से मकान में बहुत ही सादगी से रहे। उन्हें जो भी पेंशन या भत्ते मिलते थे, उसे वो जन कल्याण हेतु दान कर दिया करते थे। अपने जीवन का पल पल भारत भूमि को समर्पित करते हुए उन्होंने 16 अक्टूबर सन 1994 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: मंडळी, आता आपण ऐकणार आहोत मन की बात. माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी जनतेशी साधलेला संवाद आणि त्यानंतर या संवादाचा संस्कृतमध्ये अनुवाद तुम्ही ऐकू शकणार आहात 10:55 ते 12 वाजेपर्यंत. आणि 12 वाजता पुन्हा आपण भेटणार आहोत रंजक सफरी आपल्या कार्यक्रमात.
1: ये आकाशवाणी है.
2: श्रीमद भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है. बुद्धि तो एक तलवार के समान है. जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है. इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता. इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है.
3: महात्मा गांधी का कहना है,
4: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है.
5: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से. आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना. 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति. महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन.
6: कोई बोले राम राम,
5: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल. न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना.

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किड बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
5: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
3: चले
4: ले आ गया नया किड बैग।
6: RBI कहता है
7: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी, और यह कार्यक्रम था

भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं, और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है, और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड, सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानि केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब

28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने यह सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचा

बढ़ाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए दान

नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल करा।

बनाने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको वृक्ष में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको वृक्ष का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे
मिट्टी की मूर्तियों

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण

एक बजकर 11 मिनट और 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज कार्यक्रम मधुर तरानों का सजा गुलदस्ता यानी दिल ढूंढता है। वो गीत जो कल भी दिल के करीब थे आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, जिन्हें बार बार गुनगुनाने का मन करता है, और ऐसे ही गीतों को लेकर हाजिर हूं मैं आशीष। नमस्कार। शुरुआत करते हैं फिल्म मेरे सनम के उस यादगार गीत से जिसे गाया है आशा भोसले ने, संगीत से संवारा ओपी नैयर ने और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी।

रेशमी जुल्फों का अंधेरा है ना घबराइए, लेकिन पूछना बनता है भाई ये जुल्फ कैसी है। कुछ कहा गया है फिल्म पिया के घर में इस गीत में। गायक कलाकार मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंदरूने मुल्क के दिफाई सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज करते हुए समुंदर से लेकर आसमान तक तेजी के साथ महफूज और खुदकफील बनता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में ही तैयार किए गए हवाई जहाज C-295 की पहली परवाज मुकम्मल होने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने और गैर मुल्की सफर करने से गुरेज करने, नीस कार पूलिंग को फरोग देने की अपनी हालिया अपील के सिलसिले में सरगर्मी के साथ हिमायत करने पर मुल्क के शहरियों के तहत तशक्कुर का इजहार किया। विक्टोरिया में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ दो तरफा बातचीत की है ताकि बाहमी इश्तराक का जायजा लिया जा सके। सरकार ने भारतीय शहरियों से कहा है कि वो सफर से मुतालिक जरूरी दस्तावेजात के बगैर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर न जाएं। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल बिगड़ गई है। अमरीका और ईरान की अफवाज ने एक दूसरे के खिलाफ फिर से हमले किए हैं और ख्वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में आज लंदन में ग्रुप ए के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया है कि भारत में बनाए गए C-295 तर्ज के हवाई जहाज की पहली परवाज मुकम्मल होने के साथ ही भारत ने जून के महीने में एविएशन के शोबे में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि इस तरह के 40 हवाई जहाज भारत में तैयार किए जा रहे हैं।
1: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: जनाब मोदी ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि भारत ने इस महीने मुल्क की सिक्योरिटी और खुदकफालत से वाबस्ता कामयाबी हासिल की है। वज़ीर-ए-आज़म ने हाल ही में कोलकाता में बहरिया की एक तकरीब में शिरकत की थी जिसमें INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को भारतीय बहरिया के बेड़े में शामिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर मुसर्रत का इजहार किया कि इन बहरी जहाज़ों के डिज़ाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर चीज़ अंदरून मुल्क तैयार की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जून के महीने में ही दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने भी मुल्क में ही तैयार किए गए तवील दूरी के ज़मीनी हमले से मुतालिक क्रूज मिज़ाइल की कामयाब आजमाइश की। इसे DRDO की तजर्बागाहों और भारतीय सनत के साझेदार इदारों ने मिलकर तैयार किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत समुंदर से लेकर आसमान तक तेज़ी के साथ महफूज और खुदकफील बनता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने योग के बैन अल-अक़वामी दिन का भी तज़किरा किया जिसमें पूरी दुनिया के लोगों ने भारत की कोशिशों के साथ मिलकर कदम बढ़ाया। जनाब मोदी ने अहमदाबाद में मुनक़िदा आलमी योग आसन चैम्पियनशिप का भी जिक्र किया जहां भारत ने सोने के 102 तमगों समेत मजमूई तौर पर 114 तमगे जीते।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की तामीर में अवाम की शमूलियत की ताकत भारत के लिए एक बड़ा असासा है। जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के तनाजुर में कुछ निकात के सिलसिले में जब उन्होंने हम वतनों से अपील की तो ये अवामी शमूलियत फिर से देखी गई। जनाब मोदी ने लोगों से कहा था कि वो कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने से गुरेज करें, गैर मुल्की सफ़र पर न जाएँ और कार पूल का इस्तेमाल करें। वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों से भी ये दरख्वास्त

0: की थी कि वो बग़ैर केमिकल वाली खेती अख्तियार करें, अपने खेतों का तहफ़्फ़ुज़ करें और कुदरती खाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जनाब मोदी ने अपनी अपील के सिलसिले में लोगों की हिमायत और हर तरह से सरगर्मी के साथ ताउन करने पर मुल्क के हर शहरी के तई तशक्कुर का इजहार किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार मुल्क भर के करोड़ों कुंबों को तहफ़्फ़ुज़ाती ढाल फराहम कर रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुतालिका शख्स को हादसा होने की सूरत में 2 लाख रुपए तक के बीमे की सहूलत मिलती है, जबकि इसका सालाना प्रीमियम सिर्फ 20 रुपए है। मन की बात के इस नशरिए में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवहुम परस्ती या अंधविश्वास के मौजू पर भी बात की। जनाब मोदी ने बताया कि आसाम में पाए जाने वाले नायाब परिंदे हरगिला को रियासत के बाज़ हिस्सों में किस तरह अशुभ माना जाता था। उन्होंने कहा कि यह हरगिला परिंदा फितरत को साफ रखने में अहम रोल अदा करता है। जनाब मोदी ने कहा कि अंधविश्वास की वजह से उन दरख्तों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगिला के घोंसले होते थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हयातियाती उलूम की माहिर पूर्णिमा देवी बर्मन ने अवाम के जहन में पैवस्त इस गलत तासुर को बदलने का अहद किया और ख्वातीन को साइंस पर मबनी हकाइक से वाकिफ कराया। रफ्ता रफ्ता ख्वातीन उनकी मुहिम में शामिल होती गईं और एक बड़ी काया पलट का आगाज हुआ। अपने खिताब के आखिर में वज़ीर आज़म ने पानी की बचत पर जोर देते हुए कहा कि बारिश के पानी के हर कतरे को बचा कर रखना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि कैच द रेन मुहिम की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। विक्टोरिया में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के सदर पैट्रिक हरमेनी के साथ दो तरफा बातचीत की है ताकि बाहमी इश्तराक का जायज़ा लिया जा सके। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं का जायज़ा लिया। इसके अलावा उन्होंने इलाकाई और बाहमी मफाद के बैन अल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को स्टेट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर सदर हरमेनी भी मौजूद थे। जनाब मोदी सेशेल्स की कौमी असम्बली से भी करेंगे और वहां रहने वाली भारतीय बिरादरी के लोगों से मिलेंगे। बाद में वज़ीर आज़म एजाजी मेहमान की हैसियत से सेशेल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल बिगड़ गई है। अमरीका और ईरान के दरमियान पहले से ही कमज़ोर जंगबंदी टूट गई है। दोनों ही मुल्कों की अफवाज एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज़ के नज़दीक ईरान के 10 फौजी ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। इससे कबल अमरीका ने ईरान पर एक कमर्शियल तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला करने का इल्ज़ाम लगाया था। उधर ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिका के फौजी ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ चंद घंटों में ही जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भेजी गई भारतीय इमदाद वेनेजुएला पहुंच गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस एतमाद का इजहार किया है कि फील्ड अस्पताल यूनिट इमदादी रसद दवाओं और तिब्बी साजो सामान से वहां जलजले से मुतासर इलाकों में इमदादी कोशिशों को तकवीत मिलेगी। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वह कैलाश मानसरोवर यात्रा उस वक्त तक शुरू न करें जब तक कि उन्हें पूरे सफ़र के लिए तमाम ज़रूरी दस्तावेजात हासिल न हो जाएं। वजारत ने यह हिदायत नेपाल में फंसे उन भारतीय यात्रियों की जानिब से मदद की दरख्वास्तें मौसूल होने के बाद जारी की है जो निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रवाना हुए थे। ICC खवातीन के T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में आज भारत ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। यह मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंदरूनी मुल्क दिफाई सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज करते हुए समुंदर से लेकर आसमान तक तेजी के साथ महफूज और खुद कफील बनता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में ही तैयार किए गए हवाई जहाज C-295 की पहली परवाज मुकम्मल होने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने और गैर मुल्की सफर करने से गुरेज करने नीज कार पूलिंग को फरोग देने की अपनी हालिया अपील के सिलसिले में सरगर्मी के साथ हिमायत करने पर मुल्क के शहरियों के तई तशक्कुर का इजहार किया। और ख्वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में आज लंदन में ग्रुप ए के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies. With focus on indigenous defense production, highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country. In his Man Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in their final Group A match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Man Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: मिस्टर मोदी एक्सूडेड प्राइड दैट इंडिया हैज अचीव्ड सक्सेस लिंक्ड टू द कंट्रीज सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस दिस मंथ। ही अटेंडेड एन इवेंट इन कोलकाता रिसेंटली वेयर आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक एंड आईएनएस अग्रे वर इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवीज फ्लीट। मिस्टर मोदी नोटेड दैट इंडिया इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली सिक्योर एंड सेल्फ रिलायंट फ्रॉम द सीज टू द स्काइज।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
2: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचे। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचे। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
2: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nanded, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है।

0: इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ कर के रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी

0: हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है नाटक रुपया तुम्हें खा गया। इस नाटक के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक रुपया तुम्हें खा गया।

0: कौन? रानी?
1: नहीं सर, मैं हूँ।
0: तुम कौन हो? कौन हो?
1: आपकी नर्स ज्योति।
0: नर्स?
1: जी सर।
0: ओ, तुम नर्स हो ज्योति। याद आया, मैं तो बीमार हूँ, नर्सिंग होम में बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ, है ना? एक गिलास पानी
1: जी ले।

0: हेलो, बाजार का क्या हाल है?
1: क्या कहा?
0: सोना 1,00,000 पार हो गया। 5,000 तोला बेच दो। हाँ, 5,000।
2: सर पानी लीजिए सर।
0: ठहरो ठहरो। हेलो शिव कुमार जी, मानिक चंद बोल रहा हूँ। क्या खबर? टाटा छोड़ गया? अच्छा तो 4,000 शेयर्स ले लो मेरे लिए। अच्छा ये बताओ इंडियन कॉरपोरेशन की क्या खबर है? इतना गिर गया? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, अभी मत बेचो। ऐसा करो 5,000 शेयर्स और ले लो। मार्जिन कितना देना होगा? 5,00,000। अच्छी बात है, मंगा लेना। मेरी कॉपी कॉपी कहाँ है?
2: सर उधर आपके तकिए के लेफ्ट में, उधर वो देखिए वहाँ।
0: ठीक है ठीक है। हाँ, अब और नहीं गिरेगा, इतना अधिक गिर चुका है।
2: सर पानी
0: पानी पानी मांगा क्या मैंने? नहीं नहीं, प्यास नहीं है। जाओ जाओ जाओ, अपनी जगह पर जाकर बैठो।
2: ओके सर।
0: हॉर्न कौन हो सकता है?
2: नमस्कार सेठ जी।
0: नमस्कार।
2: कैसे हैं?
0: तो आप हैं मेरी डॉक्टर, डॉक्टर सोनल कोठारी।
2: अगर आप मेरी सलाह माने तो फोन स्विच ऑफ कर दें जब तक यहां आपका इलाज चल रहा है।
0: फोन स्विच ऑफ कर लूं? क्या कहती हो डॉक्टर, इस कमरे में मैं अपने आप को जिंदा दफन कर लूं? जानती हो मैं इस कमरे में कभी कभी एक मौत का सा गहरा सन्नाटा महसूस करने लगता हूं।
2: लेकिन सेठ जी
0: मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैं इस कमरे में एकदम अकेला हूं। एक अजीब सा भय जाग उठता है मेरे अंदर और उस भय से जीतने के लिए मैं फोन उठाता हूं। जिंदा मनुष्यों से बात करके मैं ये अनुभव करता हूं कि मैं भी जिंदा हूं। सोना चांदी और न जाने क्या क्या मैं खरीदता बेचता हूं। मृत्यु की निष्क्रियता के स्थान पर मैं जीवन की सक्रियता का आह्वान

0: करता हूं, शेयर्स का खेल खेलता हूं, अपनी मिलों की एक्टिविटी का संचालन करता हूं मैं डॉक्टर।
1: सेठ जी आप ज्यादा उत्तेजित न हो।
0: मैं उत्तेजित न हूं डॉक्टर? मैं ये उत्तेजना ही तो जिंदगी है। आज न जाने क्यों मेरे मन में ये इच्छा प्रबल हो उठी है कि अपने अंदर का रहस्य जो न जाने कब से भीतर ही भीतर घुट रहा था उसे मैं मुक्त कर दूं। डॉक्टर तुम्हें मेरी कहानी सुननी ही पड़ेगी।
1: अच्छा ठीक है सुनाइए।
0: सुनो 20 साल पहले की बात है। मैं उन दिनों एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट फर्म में क्लर्क था। परिवार में मेरी वाइफ रानी, मेरा बेटा मदन और मेरी बेटी शोभा थी। 3,000 रुपया सैलरी थी, सिर्फ 3,000 रुपया डॉक्टर। जितना रुपया तुम एक दिन में मुझसे एक नर्स को दिलवा देती हो उससे आधे से भी कम। और एक दिन
2: आ गए आप। चलिए जल्दी से मुंह हाथ धो लीजिए, चेंज कर लीजिए आप।
0: अभी करता हूँ, जरा 5 मिनट ठहरो, थोड़ा सुस्ता लूं।
2: अरे खाने के डब्बे वाला बैग कहाँ छोड़ा है?
0: वो तो
3: मालिक चंद जी।
0: अरे ये तो मैनेजर साहब की आवाज मालूम होती है, खोलता हूँ।
4: मैनेजर साहब यहाँ इस वक्त? कैशियर साहब, पुलिस?
0: खैरियत तो है?
3: आज तुम दफ्तर से क्या बजे चले गए थे?
0: मैं 4:30 बजे निकला था। क्यों?
3: भगवान दास और रामलाल का कहना है कि जब वो चाय पीने के लिए सामने की दुकान पर गए थे तब तुम वहां से चले गए थे।
0: अच्छी ठीक बात है, जैसे ये लोग चाय पीने के लिए गए वैसे ही मैं वहां से चल दिया था। शिवदीन चपरासी से मैंने कह दिया था कि मुझे जरूरी काम से जाना है। आखिर बात क्या है?
3: कैशियर साहब की सेफ से 10 लाख रुपए निकल गए, तुम्हें कुछ मालूम है?
0: कैशियर साहब की सेफ से 10 लाख रुपए निकल गए?
3: जी।
0: बड़े ताज्जुब की बात है, कहीं किसी का पेमेंट तो नहीं किया है आपने कैशियर साहब?
5: पेमेंट? मानिक चंद जी आज दोपहर में ही तो बैंक से रुपए लाया था और आपके सामने ही तो मैंने वो रुपया सेफ में रखा था।
0: लेकिन ताज्जुब की बात है, सेफ विलायती है, उसकी चाबी आप ही के पास रहती है और सेफ ना टूट सकता है ना खुल सकता है।
5: मैनेजर साहब मैं कसम खा के कहता हूँ कि वो रुपया ऑफिस के ही किसी आदमी ने चुराया है। जब आपने मुझे स्टेशन भेजा था तब मैं गलती से चाबियों का गुच्छा मेज पर छोड़कर चला गया था।
0: मैनेजर साहब आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। रानी
6: जी आई।
2: जी नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते रानी।
2: हाँ जी।
0: अपने ट्रंक और अलमारी के ताले खोलकर इन लोगों को दिखा दो।
2: हाँ?
0: दफ्तर से 10 लाख रुपए की चोरी हो गई है।
2: क्या? अभी दिखाती हूँ। ये लीजिए।
3: यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
7: किशोरी लाल जी,
5: जी
7: देखिए मुझे बड़ा दुख है कि आपकी इस कहानी पर विश्वास कौन करेगा।
5: देखिए
7: अच्छा ही होगा कि ये रुपया आप किसी तरह जमा करा दें।
5: जी।
7: अभी भी ये मामला मैं दबा सकता हूँ।
5: हे भगवान, मैनेजर साहब मेरे पास रुपया कहाँ है? मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैनेजर साहब मैं कहीं का नहीं रहूंगा।
7: मैं मजबूर हूँ किशोरी लाल जी, बिल्कुल मत।
5: अरे
7: चलिए
5: मैनेजर साहब। अरे मेरी बात सुनिए, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने नहीं चुराए पैसे।
8: बेवकूफ किशोरी लाल।
0: भला किशोरी लाल?
8: असफल किशोरी लाल।
0: ये नेकी और ईमानदारी, ये सीधापन और भलाई, ये सब अभिशाप है। अभिशाप है रानी।

वो बन सकता है जिसमें धर्म कर्म सच्चाई ईमानदारी इन सब का नितांत अभाव हो, जो झूठ बोल सकता हो, धोखा दे सकता हो, जो चोरी कर सकता हो, जो गला काट सकता हो, और ये सब करते हुए उसके चेहरे पर शिकन तक ना आए।

0: बेचारे नेक ईमानदार और धार्मिक किशोरी लाल कैशियर को 3 साल की सजा हुई।
1: चोरी किसने की थी? किसने की थी चोरी?
0: मैंने।
1: क्या?
0: मैंने की थी।
1: क्या?
2: मैनेजर साहब, मेरी बात मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी बात
1: उस फर्म का नाम क्या था?
0: फर्म का नाम अमर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड।
1: अमर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। आप इतने दिनों से यहाँ नर्सिंग होम में हैं, आपकी पत्नी, बेटा और बेटी में से कोई आया नहीं?
0: पत्नी मसूरी में है, यहाँ की गर्मी से उसे घबराहट होती है, इसलिए वहाँ की कोठी में रहने चली गई है।
1: शायद उनको पता नहीं कि आप यहाँ एडमिट हैं।
0: पता है, एडमिट करा के उसी दिन तो गई है।
1: अच्छा, और बच्चे?
0: तुम जो कहना चाहती हो वो मैं समझ रहा हूँ। बेटा अपने काम में व्यस्त है, बेटी ने भी आना छोड़ दिया है। उसने अपने ससुर के साथ मिलकर मेरी एक मिल पर कब्जा कर लिया है। किसी को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा हूं, मेरा ख्याल रखने के लिए ही तो तुम्हें रखा है।
1: अब मैं चलती हूं।
0: आंधी तूफान भी थम गया है, अब तुम जा सकती हो।
1: जी,
0: गुड नाइट।
3: गुड इवनिंग डैड।
4: गुड इवनिंग डॉक्टर।
1: गुड इवनिंग।
0: जीता रहे मदन पुत्र, तुम कैसे? तुम तो कलकत्ता जा रहे थे।
4: वेदर बहुत खराब है, फ्लाइट कैंसिल हो गई।
0: फिर तुम्हें तो कल दोपहर में मीटिंग करनी है, कैसे पहुंचोगे?
4: अभी रात की एक ट्रेन है 11 बजे, उससे जाऊंगा। कल सुबह तक पहुंच जाऊंगा कलकत्ता। इलेक्ट्रिक केबल की फैक्ट्री के सेठ हीरालाल से मिला था, उसके पास 51% शेयर तो हैं, लेकिन वो सब शेयर बेचना नहीं चाहता। अपने लिए 11% शेयर रखकर 40% बेचने को तैयार है, इसलिए मैंने इनकार कर दिया।
0: ठीक किया।
4: और हाँ, मुंबई की रीना कॉटन मिल बिक रही है, 100 करोड़ मांगते हैं, मैंने 90 करोड़ बोला है। जरी वाला सेठ यहाँ आया हुआ है, उससे मीटिंग करके देखता हूँ।
1: आप इनके बेटे हैं?
4: यस।
1: देखिए, आप अपने फादर की हेल्थ, उनकी बीमारी के बारे में जानना चाहेंगे?
4: क्या बीमारी है बाबूजी को?
1: सेठ साहब को नर्व्स की बीमारी है, इसमें सेठ साहब को आराम की सख्त जरूरत है, लेकिन ये आराम करते ही नहीं।
4: मैं तो देख रहा हूं कमरे में लेटे हुए हैं, और अधिक कैसा आराम चाहिए इन्हें?
1: सेठ जी को शारीरिक आराम की जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा मानसिक आराम की जरूरत है।
0: डॉक्टर, मानसिक आराम केवल मृत्यु के बाद मिलता है। चेतना से युक्त मनुष्य के लिए मानसिक आराम का अर्थ होता है मृत्यु। डॉक्टर की बात पर मत ध्यान दो मदन, डॉक्टर का कहना है कि मैं अपने कमरे से फोन हटवा दूं। अच्छा डॉक्टर, कल सुबह मिलते हैं।

0: गुड नाइट
1: मिस्टर मदन
0: जी।
1: सेठ जी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मेरी बात पर कभी ये हंस देते हैं, कभी झल्ला उठते हैं। आप इन्हें समझाइए, इन्हें कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है।
0: कंप्लीट रेस्ट, पूर्ण विश्राम, इसका अर्थ होता है मृत्यु, और उसका अभी समय नहीं आया डॉक्टर। गुड नाइट। गुड नाइट।
1: गुड नाइट।
0: कंप्लीट रेस्ट, पूर्ण विश्राम, पूर्ण विश्राम। बेवकूफ कहीं थी, पूर्ण विश्राम का अर्थ ही वो नहीं समझती। वो बेवकूफ है, जिंदगी को ना वो समझती है ना पहचानती है। जिंदगी हलचल है, जिंदगी उथल पुथल है। बिजली कड़क रही है, पानी बरस रहा है, इस तूफान की आवाज सुनते हो? जिंदगी एक तूफान की तरह है, और आराम मौत का एक घुटता हुआ सन्नाटा।
2: अच्छा डैड, अब मैं निकलता हूं। कल की डील अगर फाइनल हो गई तो वारे न्यारे हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मोटी फीस लेने वाले डॉक्टर और नर्स आपका पूरा ध्यान रखेंगे। अच्छा, बाय बाय डैड।
0: बाय बाय।
1: गुड मॉर्निंग मानिक चंद जी।
0: जय राम जी की। कितने दिन और लगेंगे डॉक्टर? मेरी तकलीफ तो बहुत लंबी हो गई।
1: हाँ, लंबी तो हो गई है। इम्प्रूवमेंट की स्पीड भी बड़ी स्लो है सेठ जी।
0: लेकिन सुधार तो है।
1: हाँ, आप और हम इसे सुधार कह सकते हैं, लेकिन ये केवल उतार चढ़ाव है।
0: उतार चढ़ाव कैसा?
1: सेठ जी, बीमारी का अंत होता है, बीमारी में सुधार नहीं हुआ करता। जितने दिन तक बीमारी चलती है वो बीमारी की अवधि कहलाती है। उस अवधि में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अगर सुधार हो तब तो बीमारी अच्छी हो गई।
0: मैं अच्छा तो हो जाऊंगा डॉक्टर, बोलो।
1: अरे आप डर गए? आप भी डर सकते हैं, इसकी मैंने कल्पना ही नहीं की थी। नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। आप करीब करीब अच्छे हो चुके हैं। एक हफ्ते में आप अपने ऑफिस जाने लगेंगे।
0: सच डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बड़ी कृपा है।
1: इलाज करना मेरा काम है सेठ जी, जिसकी मैं फीस लेती हूँ, इसमें कृपा की कोई बात नहीं है। सेठ जी, आप तो जानते हैं कि दुनिया में पैसे से बड़ी कोई ताकत नहीं है।
0: सही है, बिल्कुल सही है, ये दुनिया का एकमात्र सत्य है।
1: और आप मानते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है? धर्म, ईमान, इज्जत, आबरू।
0: लेकिन इस समय मुझसे ये प्रश्न क्यों? तुम जानती हो डॉक्टर के मैं बीमार हूं।
1: हाँ, आप बीमार हैं और आप जिंदगी भर बीमार रहेंगे। इस बीमारी से मैं आपको कभी अच्छा नहीं कर सकती। मैं क्या, कोई भी आपको अच्छा नहीं कर सकता।
0: डॉक्टर, ये तुम्हें क्या हो गया है?
1: कुछ नहीं हुआ सेठ जी। आप इन्हें पहचानते हैं ना?
0: तुम कौन? यहाँ कैसे चले आए? डॉक्टर, ये कौन है?
3: तुम मुझे भूल गए? लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। याद करो मानिक चंद, अमर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीनियर।

0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं असंभव।
1: तुम्हारी याददाश्त कमजोर नहीं हुई है बाबू माणिकचंद। नहीं नहीं सेठ माणिकचंद। मैं किशोरी लाल ही हूँ।
0: तुम क्यों आए हो किशोरी लाल? देखो मैंने तिजोरी से रुपया नहीं निकाला था। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है।
1: डरो मत माणिकचंद, तुमने जो चोरी की थी उसकी सजा मैं भुगत चुका हूँ। तुम्हारे पाप का प्रायश्चित मैं कर चुका हूँ। 3 साल जेल में रहा हूं। तुम नहीं समझ सकते माणिकचंद, घर में मेरी पत्नी थी, मेरी 2 बेटियां थी, सोनल बड़ी और मीनल छोटी।
0: डॉक्टर सोनल कोठारी, डॉक्टर सोनल कोठारी, तुम किशोरी लाल की बेटी हो?
1: मेरी पत्नी ने अपने जेवर बेचे, मेरी लड़कियों ने ट्यूशन पढ़ाए, पड़ोस के कपड़े सिए और अपनी पढ़ाई की। मीनल प्रोफेसर बन गई और सोनल यहां है तुम्हारे सामने।
0: किशोरी लाल, मुझे दुख है जो हुआ।
1: मैं जेल में बंद था, कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी पागलपन में कुछ भी बकने लगता था। 3 साल बाद छूटकर मैं अपने घर पहुंचा। सब उजड़ गया था, सब कुछ। लोग मुझसे बात नहीं करते थे, मुझे हर बात पर इंसल्ट करते थे, गालियां पड़ती थी मुझे। मेरी फूल सी बेटियां कुम्हला गई थी, मेरी पत्नी 3 साल में बीमार हो चली थी, टूट गई थी, वो कुछ भी नहीं बचा था घर में।
0: बस करो किशोरी लाल, बस करो। बोलो तुम क्या चाहते हो?
1: कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें अपनी कहानी सुनानी है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि घर लौटकर मैंने जो देखा उससे मैं कांप उठा।
0: लेकिन उस समय तुम मुझसे क्यों नहीं मिले?
1: इसलिए कि मुझे तुम्हारा पता नहीं मालूम था, और फिर मुझे इस बात का पूरा विश्वास नहीं था कि वो रुपए तुमने ही चुराए थे।
0: किशोरी लाल, तुम मुझसे रुपए वापस ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, लेकिन मुझे इस तरह मत देखो।
1: माणिकचंद, जो कुछ मैंने सहन किया उसका कोई मुआवजा नहीं हो सकता। मैं तुमसे रुपए लेने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ तुम्हें एक बार देखने आया हूं। मैं तुम्हारा वैभव देखना चाहता था। मेरी बेटी कहती है कि तुम करोड़पति हो, ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हो। कल रात सोनल से सुना कि तुम बीमार हो, तो देखने चला है।
0: देख तो लिया किशोरी लाल।
1: देख रहा हूं माणिकचंद, वो देख रहा हूं जिसकी मैंने कल्पना न की थी। अब मैं चलूंगा।
0: नहीं किशोरी लाल, तुम अपना रुपया वापस ले लो और अपने अभिशाप से मुझे मुक्त कर दो। मुझे मुक्त कर दो, तब जाना।
1: किस किस के अभिशाप से मुक्त होते फिरोगे माणिकचंद? तुम अभिशाप को गलत समझ रहे हो। तुम्हारे ऊपर मेरा अभिशाप नहीं है, अभिशाप रुपए का है।
0: किशोरी लाल, मुझे माफ कर दो।
1: माणिकचंद, तुमने मेरे साथ कोई अपराध नहीं किया। तुम बेकार में मुझसे माफी मांग रहे हो। कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा मैंने कभी, उसी का दंड मुझे मिला और मैंने वो दंड भुगत दिया है। और आज मेरे मन में कोई ग्लानि नहीं, कोई संताप नहीं। सोनल बेटे की डॉक्टरी और मीनल की प्रोफेसरी अच्छी चलती है, और दोनों ईमानदार कर्तव्य परायण इंसान है। मेरे पास कोई अभाव नहीं, कुछ नहीं। मेरे जीवन में मेरी पत्नी है, मेरा सुख दुख उनका सुख दुख है। ये क्या कम है?

0: मैं भगवत भजन करता हूँ और मैं तुमसे कहीं अधिक सुखी हूँ।
1: तुम झूठ बोल रहे हो किशोरी लाल, झूठ बोल रहे हो।
0: तुम्हारी सुख शांति रुपए के पिशाच ने तुमसे छीन ली है, तुम्हारा संतोष उसने नष्ट कर दिया। उस दिन जब तुम 10 लाख रुपया चुरा कर लाए थे, तब तुमने समझा था कि तुम रुपया खा गए, लेकिन तुमने बहुत गलत समझा था, बहुत गलत। तुमने रुपया नहीं खाया था, रुपया तुम्हें खा गया। रुपया तुम्हें खा गया मानिक चंद, रुपया तुम्हें खा गया।
1: किशोरी लाल, रुपया मुझे खा गया?
0: हाँ मानिक चंद, रुपया तुम्हें खा गया। तुम अपनी जिंदगी को देखो, तुम में ममता नहीं, दया नहीं, प्रेम नहीं, भावना नहीं। तुम्हारे अंदर का इंसान मर चुका है, आज तुम्हारे अंदर रुपए का पिशाच घुस गया है। तुम्हारा परिवार साथ होकर भी तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे रुपए के पिशाच के कंधे पर चढ़कर सब ऐश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी चिंता किसी को नहीं। रुपया तुम्हें खा गया है
1: किशोरी लाल,
0: रुपया तुम्हें
1: किशोरी लाल, किशोरी लाल, तुम्हें खा गया, रुपया तुम्हें खा गया। रुपया मुझे खा गया।
2: रुपया तुम्हें खा गया। अभी आप भगवती चरण वर्मा का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। माणिक चंद की भूमिका में थे नीरज शर्मा, किशोरी लाल योगेंद्र टिक्कू, डॉक्टर सोनल कोठारी वीणा होरा, मैनेजर कीमती आनंद, मदन राजेश आहूजा, रानी सुनीता ठुकराल और नर्स की भूमिका में थी कुमकुम जैन। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक थे विनोद कुमार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमाइनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक

0: हरमाइनी ने आज राजधानी विक्टोरिया में आपसी सहयोग की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और डिजिटल सहयोग सहित कई क्षेत्रों में समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशेल्स हिंद महासागर को साझा विरासत मानते हैं और इसकी सुरक्षा, स्थिरता तथा समृद्धि दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है। सेशल्स के साथ यूपीआई लागू करने का समझौता भी हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय के एक नए अवतार में भारत का भाग्य गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परम्परा को फिर से जीवित किया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया है कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के अनुरोध के बाद जारी किया गया है जो निजी टूर ऑपरेटर्स के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। और लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप ए में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार। कुछ गीत साथियों मौसम की तरह होते हैं, कभी ठंडी हवा बनकर सुकून देते हैं दिल को और कभी गर्मी की तेज तपिश का एहसास भी करा जाते हैं। और कभी कभी यूं भी होता है कि किसी पुरानी याद की तरह चुपचाप दिल के करीब आ बैठते हैं और फिर वहीं पे रहते हैं, कभी जाने का नाम ही नहीं लेते। सदाबहार गीतों की यही खूबसूरती है, वक्त चाहे जितना बदल जाए, इन गीतों के एहसास हमेशा

नए से लगते हैं, अपने से लगते हैं। आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही सदाबहार की आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ हूं मैं नूपुर। गीत पहुंच रहा है आप तक महेंद्र कपूर साहब की आवाज में, फिल्म बहारे फिर भी आएंगी।

0: an institute of national importance under the Ministry of Education, Government of India, has invited online applications from eligible Indian nationals for recruitment to various non-teaching positions, including registrar, librarian, medical officer, assistant librarian, executive engineer civil, and technical assistant civil engineering. The posts are available through direct recruitment and on deputation, with pay levels ranging between level 6 to level 14 as per the 7 CPC. Online applications can be submitted till 30th June 2026. While the last date for receipt of hard copies application is 15th July 2026. Detailed eligibility criteria, vacancy details and the application procedures available on the official website. Kindly do refer to www.nits.ac.in. I repeat, it is www.nits.ac.in. Pawan Hans Limited, India's largest helicopter company under the Ministry of Civil Aviation, has announced recruitment for various positions on regular and contractual basis. The organization plays a crucial role in offshore operations, aerial services, disaster management, tourism and connectivity to remote regions across the country. Vacancies include assistant, HR and administration, junior technical assistant, quality, junior engineer civil, CAMO assistant, station in charge and trainee technician. The recruitment offers excellent opportunities for professionals aspiring to build careers in the aviation and aerospace support sectors. Interested candidates can apply online through the careers section of the company's website by 10th July 2026. And the website is www.pawanhans.co.in. I repeat, it is www.pawanhans.co.in. Yantra India Limited, YIL. A defence public sector undertaking under the Ministry of Defence, Government of India, has invited applications for one post of Assistant Executive, Finance and Accounts and two posts of Secretarial Assistant on a fixed-term contractual basis at its corporate headquarters, Nagpur. The Assistant Executive, Finance and Accounts post is reserved for OBC candidates and carries a remuneration of 45,000 to 55,000 rupees per month. The secretarial assistant post is open to retired central government employees from the secretarial cadre or with remuneration based on the last pay drawn as per government norms. The last date for submission of applications is 15 days from the publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility conditions and application procedures available on the official website. Kindly do refer to www.ddpdoo.gov.in. Northeast Frontier Railways NFR has invited applications against the Scouts and Guides quota for the year 2026-27. A total of 12 vacancies have been notified, including 2 posts in Level 2 and 10 posts in Level 1 as per the 7 CPC. Eligible candidates must possess the prescribed Scouts and Guides qualifications, including President Scout Guide, Rover Range or Himalayan Wood Badge certifications, and should have remained active in the movement during the last 5 years. The age limit ranges between 18 to 30 years for unreserved candidates, with relaxations applicable for reserved categories. The last date for submission of applications is 19 July 2026. While candidates residing in remote areas such as Jammu and Kashmir, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Lahore and Spiti may apply up to 29 July 2026. Detailed information and application procedures available on the official NFR website. For details, do refer to www.nfr.indianrailways.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, पाइप फिटर, स्ट्रक्चरल फिटर, फिटर स्ट्रक्चरल, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, ICTSM, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग, पेंटर जनरल, पाइप फिटर, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्राम असिस्टेंट, वुडवर्क टेक्नीशियन और वेल्डर। ये रिक्तियां वर्ग क और वर्ग ख दोनों के लिए हैं। वर्ग ग की रिक्तियां हैं रिगर और वेल्डर। अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट mazgaondocs.in। वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं करियर अनुभाग में अप्रेंटिस पर उपलब्ध नियम और विनियम। NTPC लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। विजिटिंग कंसल्टेंट डेंटल और विजिटिंग कंसल्टेंट ENT। विजिटिंग कंसल्टेंट्स की नियुक्ति 6 महीने की अवधि के लिए होगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार सीधे साक्षात्कार के लिए दिनांक 6 जुलाई 2026 को प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच विंध्या अस्पताल NTPC विंध्याचल जिला सिंगरौली में उपस्थित हो सकते हैं। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अग्रणी महापत्तनों में से एक है। ये प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक प्रबंधक ड्रेजर टग्स और सहायक प्रबंधक फ्लोटिंग क्राफ्ट्स। संपूर्ण विज्ञापन, आवेदन पत्र और अन्य विवरण के लिए देखिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.deendayalport.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 1:15 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। परिक्रमा में आपका स्वागत है और आज के सफर में आपके साथ हूँ मैं चारू सक्सेना और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हाय अभिषेक।
2: हेलो चारू, हाउ आर यू?
1: या फाइन अभिषेक। देखो श्रोताओं को हम बता दें कि इस आधे घंटे के कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नज़र और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
2: Absolutely. Hello and a very warm welcome to all our listeners. Tune in to Parikrama on Akashvani Gold on 100.1 megahertz. And with me today is my co-host Charu Saxena. Well, listeners, the FIFA World Cup football is underway. And this, of course, is a once every 4 years spectacle that unites the globe. And most of us are staying up late to

0: watch the live matches and others are catching up on the match highlights. So, Charu, here are three reasons why you should watch this World Cup. Well, firstly, it offers unmatched national or team pride. Secondly, it offers many historic moments that transcend sports. And lastly, it is a rare opportunity to see the world's absolute best players compete at the highest level of international competition. And Charu, speaking of players here, are six players to watch out in this World Cup. Kylian Mbappe from France, who's regarded as one of the most explosive and lethal forwards of the game. Then there's Vinicius Junior from Brazil, known for his dribbling skills. From England, we have Harry Kane, the talismanic striker, an incredibly prolific goal scorer. Then, of course, is Erling Haaland from Norway, who is a physical and technical marvel with tremendous raw power and finishing ability. And then the two next-generation talents, Jude Bellingham from England, who is a complete midfielder, and Lamine Yamal from Spain, who has fearless creativity and maturity beyond his years. So, Charu, six standout footballers, and listeners, you should watch close, whom your listeners should watch closely in this World Cup. And Charu, we have lots coming up for our listeners in the program, but first we begin with the news headlines at this hour. Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies with focus on indigenous defense production, highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country.
1: आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा ना करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया.
0: Indian Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation level talks in Victoria.
1: सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा.
0: Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other.
1: और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा.
0: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about PM's Mann Ki Baat program. Well, Charu, every month millions of Indians tune in to Mann Ki Baat, not just to hear an address from the Prime Minister, but to discover inspiring stories from every corner of the country. Stories of ordinary people doing extraordinary things of innovation, tradition, service and community spirit that often go unnoticed.
1: Abhishek, देखो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश को संबोधित किया और उन्होंने ऐसी कई शानदार कहानियां साझा की जो भारत की तरक्की और लोगों की भागीदारी की ताकत को दिखाती है.
0: Yes, Charu, can a nation become stronger only through missiles and machines or only through industries and investments? Or does its real strength lie in the hands of people who choose to do the right thing every single day? Well, today let's take a journey through stories that prove one simple truth, that when 140 crore Indians move together, even the impossible begins to look possible.
1: बिल्कुल, पता है अभिषेक, देखो कुछ flights यात्रियों को ले जाती हैं. तो कुछ कार्गो को और कुछ फ्लाइट्स ऐसी भी होती हैं जो पूरे देश की उम्मीदों को लेकर उड़ती हैं. किसी विमान के उड़ान भरने का देश की तरक्की से क्या लेना देना है. असल में बहुत कुछ, क्योंकि जब इस महीने मेड इन इंडिया C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी तो ये सिर्फ एक सफल टेस्ट नहीं था बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और मजबूत कदम था.
0: But Charu, India's success this month wasn't limited to the skies. It also echoed across the seas. And recently, three impressive naval platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodak, and INS Agra, joined the Indian Navy. And the most fascinating part is that everything from the design to the construction is completely indigenous. Now, think about how far we have come. There was a time when building such advanced defense systems seemed like a distant dream. But today, they are becoming a reality.
1: बिल्कुल, देखो जून का महीना भारत के लिए जश्न मनाने का एक और कारण लेकर आया है. जब भारत ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और भारतीय उद्योग जगत द्वारा मिलकर विकसित की गई स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, आज हमारे समुद्र और हमारे आसमान में एक बात समान है, वो है कि वो दोनों ही एक ऐसे देश की कहानी कहते हैं जो ज्यादा मजबूत, ज्यादा आत्मविश्वास से भरा और ज्यादा आत्मनिर्भर हो रहा है।
0: Yes, and if I ask you, Charu, to think of what is one gift that India has shared with almost every country in the world without charging a single rupee, no, it's not software, it's not spices, it's not Bollywood, it's actually yoga.
1: Bilkul.
0: And this year's International Yoga Day became a global celebration, wasn't it?
1: Bilkul. Dekho, duniya bhar mein 2500 se zyada jagahon par yog karyakram hue aur desh mein bhi karodon logon ne school, parkos, stadiumon mein aur sarvajanik jagahon par apni mat bichhai. सूरज उगने के समय अपने आसपास के पार्क के बारे में सोचिए, बच्चे स्ट्रेचिंग कर रहे थे, माता पिता बैलेंस बनाने वाले पोज करते हुए हंस रहे हैं और दादा दादी शांति से ध्यान में बैठे हैं। यही योग की खूबसूरती है और यही सभी के लिए है। इस बहाने लोग आपस में मिलते हैं और हेल्थ का भी ख्याल होता है।
0: एब्सोल्युटली चारू, एंड मोरओवर इंडिया आल्सो डोमिनेटेड द वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप इन अहमदाबाद, विनिंग एन इनक्रेडिबल 114 मेडल्स, इंक्लूडिंग 102 गोल्ड मेडल्स एंड अ प्राउड moment indeed. Now let me ask you something, Charu. Can patriotism look like skipping an unnecessary foreign trip, sharing your right to work, or using the metro, or choosing local products? At first glance, these seem like small personal decisions, but together they can become national strength.
1: बिल्कुल, देखो पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वो बिना जरूरत सोडा ना खरीदें। ये बात तो वाकई बहुत ध्यान देने के देखे, जहां तक हो सके विदेश यात्रा टाल दें, कार पुलिंग अपनाएं और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। और एक बहुत अच्छी बात हुई, लोगों से बात मतलब लोगों ने मन की बात मानी, जो उन्होंने कहा उसे करने की पूरी कोशिश की। परिवारों ने नया सोना खरीदने के बजाय पुरानी ज्वेलरी को रिसाइकल करने का फैसला किया। एक ही ऑफिस जाने वाले दोस्तों ने अलग अलग ना जाने के बजाय साथ यात्रा शुरू की। कई लोगों ने बस और मेट्रो सेवाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो पहले नहीं करते थे।
0: एब्सोल्युटली चारू, एंड हियर्स अनदर इंस्पायरिंग स्टोरी। एंड इन महाराष्ट्रस नांदेड डिस्ट्रिक्ट, द पेटकर फैमिली क्वाइटली अरेंज्ड एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर अराउंड 3500 विलेजर्स। नो हेडलाइंस, नो पब्लिसिटी, just compassion. And the government too continues extending this safety net. And under the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, accidental insurance worth 2 lakh rupees is available for just 20 rupees a year, and that's less than the price of a packet of chips.
1: पता है, देखो 58 करोड़ से ज्यादा भारतीय पहले ही इसमें शामिल हो चुके हैं और इसी तरह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सिर्फ 436 रुपए के सालाना प्रीमियम, यानी रोजाना लगभग अभिषेक 1.5 रुपए पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है। अब आइए एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कई समस्याएं ऐसी हैं जिससे समाज जूझता है, जैसे कि हम कभी अंधविश्वास कर लेते हैं। जैसे भाई, क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, भाई आज ऐसा मत करो, वो पक्षी अशुभ है या उस पेड़ पर भूत का साया है? तो ये सब बातें बहुत होती है क्योंकि इंसान की सोच में शामिल हो
0: जाती है। I'll tell you why, Charu, because we all know that fear spreads quickly, but facts don't. Now, here's an inspiring story from Assam. The rare Hargila bird was once considered inauspicious. People even cut down trees where it nested. Then came biologist Purnima Devi Barman, and instead of arguing, she educated. She explained science, she involved local women, and slowly misconceptions disappeared. Thousands of women joined hands to protect the bird and proudly calling themselves the Hargila Army.
1: और देखिए, आज इन लेडीज की वजह से इस पशु की कीमत बढ़ी है, मतलब लोगों ने मानना शुरू किया है। अब चलिए बात करते हैं खेलों की। जरा सोचिए, एक फुटबॉल का मैदान है जहां 5 साल के छोटे छोटे बच्चे पूरे जोश के साथ गेंद के पीछे भाग रहे हैं। कुछ गिरते हैं, कुछ हंसते हैं और कुछ गोल करते हैं, लेकिन हर बच्चे का कोई ना कोई सपना होता है। नागालैंड में नागालैंड बेबी लीग के जरिए ठीक यही हो रहा है, जहां 5 साल तक की उम्र के बच्चों को फुटबॉल से परिचित कराया जा रहा है। एक चैंपियन को दूसरों से क्या अलग बनाता है, ये नहीं कि उन्होंने शुरुआत कहां से की, बल्कि अभिषेक ये कि उन्होंने शुरुआत करने का फैसला किया।
0: Absolutely, Charu. And not only that, India's culture is also traveling far beyond its borders. The Dominican Republic has only a small Indian community, yet a group of Spanish-speaking locals has formed a team called the Brahma Kamal Dominicana, and they are learning Vedic literature, reciting ancient mantras, and embracing India's traditions with incredible dedication. Now, isn't it amazing, Charu? And sometimes people thousands of kilometers away value our heritage so deeply that it reminds us to value it even more.
1: अभिषेक, कभी आपने ऐसा पुल देखा है जो स्टील या सीमेंट का ना हो

0: बल्कि जीवित पेड़ों की जड़ों से बना हो। बताओ। बताती हूँ, मेघालय। मेघालय में ये बिल्कुल समझिए कि मेघालय में आपका स्वागत है और यहाँ प्रकृति और इंसानी सब्र मिलकर कुछ जादू बनाते हैं।
1: एक्चुअली चारू, मेघालय इज नोन एज द एबोड ऑफ द क्लाउड्स।
0: ओके, बट यहाँ जो मशहूर लिविंग रूट ब्रिजेस, जीवित जड़ों वाले पुल को बनने में कई दशक लग जाते हैं, और हैरानी की बात यह कि आम पुलों के उलट ये समय के साथ और मजबूत हो जाते हैं। भारत ने अब इन अद्भुत पुलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव रखा।
1: एंड फॉर आवर लिसनर्स, हियर इज वन फाइनल स्टोरी। कैन अ डिस्कार्डेड प्लास्टिक बॉटल बिकम समथिंग वैल्यूएबल अगेन? मोस्ट ऑफ अस वुड प्रोबेबली से नो, बट द वुमेन ऑफ ब्योरा, मध्य प्रदेश, प्रूव्ड अदरवाइज। दे कलेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट एंड कन्वर्टेड इनटू इको ब्रिक्स, giving a new look to public spaces and a new purpose to what was once considered useless.
0: बिल्कुल। गणेश उत्सव से पहले श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, ताकि त्यौहार पर्यावरण के अनुकूल बने और स्थानीय कारीगरी को बढ़ावा मिले। अपने संबोधन के आखिर में प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि बारिश की एक भी बूंद बर्बाद ना होने दें। उन्होंने नागरिकों से कैच द रेन अभियान को मजबूत करने और जल संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बनाने का आह्वान किया।
1: सो टू रैप अप अ डिस्कशन ऑन द पीएम्स मन की बात टुडे, चारू, इफ देयर इज वन मैसेज दिस स्टोरीज लीव अस विद, इज दिस: द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज नॉट शेप्ड बाय अ हैंडफुल ऑफ पीपल, इट इज शेप्ड बाय मिलियंस ऑफ एवरीडे इंडियंस मेकिंग थॉटफुल चॉइसेस, solving problems, preserving traditions and dreaming bigger than ever before. And that is the greatest strength, that is the greatest pride, and that is how India doesn't just rise, it rises together.
0: और अभिषेक, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। देखिए, झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक हुनर के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। राज्य के 11 और महत्वपूर्ण उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिल गया है। एक रिपोर्ट।
2: रेडियो फरमाइशों के लिए दुनिया भर में मशहूर कोडरमा का झुमरी तलैया अब अपनी एक खास मिठाई के लिए विश्व मानचित्र पर चमकेगा। ये मिठाई है केसरिया कलाकंद, जो GI टैग पाने वाला झारखंड का एकमात्र खाद्य पदार्थ बन गया है। 60 के दशक में विभाजन की त्रासदी झेलकर पाकिस्तान से आए हंसराज और मुल्कराज भाटिया परिवार ने इस हुनर की नींव रखी थी।
3: सबसे फर्स्ट कलाकंद हम लोगों ने यहाँ पर बनाया और जो कि इतना फेमस हुआ कि फॉरेन तक गया, और उसके बाद में हम लोग 30-40 साल तक दुकान चली है। GI टैगिंग हमको मिल रही, बहुत ही खुशी हुई है और हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। उस समय का दूध बहुत ही आज से गाढ़ा बोलिए, अच्छा बोलिए, उस समय 4-5 किलो में 1 किलो कलाकंद तैयार हो जाता था। इसमें चीनी, केसर, पहले सादा कलाकंद बनता था, उसके बाद केसरिया जब शुरू हुआ, केसर पड़ने लगा, पिस्ता पड़ता था और गुलाब जल पड़ता है। ये बनाने का प्रोसेस है और इसको कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है तैयार होने में।
2: झारखंड की कला सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है। हजारीबाग की लगभग 4000 वर्ष प्राचीन धातु ढलाई कला डोकरा आर्ट को भी GI टैग क्लब में शामिल किया गया है। मिट्टी, मोम और पीतल को पिघलाकर अद्भुत मूर्तियां बनाने वाले झारक्राफ्ट सेंटर के हस्तशिल्पी इस फैसले से बेहद उत्साहित हैं।
4: GI टैग मिल गया तो देश विदेशों तक है हमारे इस क्राफ्ट की पहचान जाएगी, झारखंड का नाम रोशन होगा और भी आगे बढ़ेगा। मल्हार जाति से आर्टिजन जो ये काम करते हैं वो बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पर झारक्राफ्ट में ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस आर्टिजन को लग रहा है GI टैग मिल गया है तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा हमारा, तो इससे लगता है कि डोकरा क्राफ्ट और ऊपर जाएगा। मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने थोड़ा देखा इन कारीगरों को।
2: इस बार GI सूची में कुचाई सिल्क, बांस शिल्प, जादू पटुआ पेंटिंग और आदिवासी आभूषणों को भी जगह मिली है। वर्ष 2019 तक राज्य के पास सिर्फ सोहराय खोवर पेंटिंग को GI टैग प्राप्त था, जो अब उद्योग विभाग के विजन से 12 हो चुका है। इससे स्थानीय कारीगरों को कानूनी सुरक्षा और आर्थिक मजबूती मिलेगी। परिक्रमा के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी और हजारीबाग से गौरव प्रकाश के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
1: The Andhra Pradesh government has drawn up an ambitious plan to transform Vishakhapatnam into a model green city through a series of sustainable development initiatives. The focus will be on increasing green cover, reducing pollution, promoting clean energy and encouraging eco-friendly transport across the city. We have more from a correspondent.
5: As part of its vision to

0: Develop Visakhapatnam as a model green city. The Andhra Pradesh government will transform Andhra University into a model net zero campus and a global hub for environmental studies and sustainability. The plan envisages increasing the green cover on the university's 450-acre campus from the present 25% to 50% through large-scale plantation drives. Solar panels will be installed on campus buildings, while a biodiversity park will also be developed. The projects include scientific solid waste management, waste to energy and biogas plants, and systems for recycling and reusing wastewater. Electric bicycles will also be introduced to promote clean mobility within the campus, and a dedicated team of professors will oversee the university's transition to a net zero campus. The government has also planned focused measures to reduce pollution in areas surrounding the Visakhapatnam port and major industrial zones. Dedicating cycle track will be developed across the city to encourage eco-friendly transport and healthier lifestyles. Chief Minister N. Chandrababu Naidu said, the government aims to increase Andhra Pradesh green cover to 50% and develop Visakhapatnam as a model city for sustainable urban growth through renewable energy, environmental conservation and modern green infrastructure. Allu Murali for Parikrama, Akashwani News, Visakhapatnam.
1: जी हाँ, बता दें महाराष्ट्र के पुणे जिले के ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों आलंदी और देहू से हर साल निकलने वाली पंडरपुर की वारी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है और ये दोनों पालकियां 21 दिन की यात्रा के बाद आषाढ़ी एकादशी से एक दिन पहले पंडरपुर पहुंचती हैं और पंडरपुर की वारी की 700 साल से भी ज़्यादा पुरानी परंपरा है। पूरे राज्य से लाखों वारकरी पंडरपुर में कृष्ण के रूप में विराजमान भगवान विट्ठल से मिलने के लिए विठू नाम का जाप करते हुए सैकड़ों मील का सफर करते हैं। भजन, कीर्तन और रिंगण इस यात्रा के मुख्य आकर्षण हैं। इस ऐतिहासिक परंपरा का दर्शन हमारे पुणे संवाददाता से।
2: संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पालकी यात्रा का इतिहास सिर्फ धार्मिक परंपरा का इतिहास नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र के सांस्कृतिक, सामाजिक और लोक जीवन का चलित दस्तावेज है। संतों के समय में पालकी समारोह की कोई औपचारिक संकल्पना नहीं थी। वारकरी, ताल मृदंग, वीणा, भगवा झंडा और संतों की पादुकाएं या यादगार चीजें लेकर पंढरपुर की ओर पैदल निकल पड़ते थे। गांव में रुकना, रात में भजन कीर्तन, सुबह हरिनाम की धुन और फिर यात्रा। यात्रा इतनी सादगी से होती थी। कोई रथ नहीं, कोई नायक नहीं, कोई तय मुकाम नहीं, कोई प्रशासनिक इंतजाम नहीं। विट्ठल का नाम ही एकमात्र सहारा था। संत तुकाराम महाराज के वैकुंठ के जाने के बाद उनके छोटे बेटे चिरंजीव नारायण महाराज ने वारी का नेतृत्व संभाला। उन्होंने वारकरियों को संगठित किया और वारी को अधिक नियमित और अनुशासित रूप दिया। वारकरी परंपरा के कुछ जिक्रों के अनुसार शुरू में कुछ समय के लिए वारी दोनों संत परंपराओं के बीच एकता की भावना के साथ की जाती थी। इसलिए ज्ञानोबा तुकोबा का संयुक्त आह्वान वारकरी संप्रदाय की आध्यात्मिक एकता का प्रतीक बन गया। वारी सिर्फ पंडरपुर की धार्मिक यात्रा नहीं है, ये महाराष्ट्र के लोगों की एक जैविक परंपरा है। परिक्रमा के लिए मनोज क्षीरसागर, पुणे।
1: और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था।
3: Argentina star Lionel Messi has become the first player in history to score in 7 consecutive World Cup games. The 39-year-old scored with a free kick after coming off the bench as Argentina won 3-1 against Jordan. It was Messi's 6th goal of the 2026 World Cup as he leads the Golden Boot race by 2 goals. Giovanni Lo Celso and Lautaro Martinez scored the other 2 goals for Argentina as they finished the Group J campaign with 3 wins from 3.
1: हाँ जी अभिषेक, देखिए अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और फिर बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
4: We remember freedom fighter and former Prime Minister of India, Pamulapurthy Venkata Narasimha Rao, who was born on the 28th of June 1921 at Karimnagar, Hyderabad. He is often referred to as the father of Indian economic reforms.
5: P.V. Narasimha Rao, popularly known as P.V., studied in Osmania University.

0: University, Hyderabad, Bombay University and the Nagpur University. He was part of the Vande Mataram movement in the late 1930s in the Hyderabad state. Along with his distant cousins, Pamulapurthy Sadasiv Rao, Raja Narendra and Devulapalli Damodar Rao, P.V. Narasimha Rao edited a Telugu weekly magazine called Kakatiya Patrika in the 1940s. Both P.V. Narasimha Rao and Sadasiva Rao contributed articles under the pen name Jaya Vijaya.
1: After independence, Rao joined politics and held many important portfolios. P.V. Narasimha Rao became the Chief Minister of Andhra Pradesh in 1971 and implemented land reforms and land sealing acts strictly.
0: He also secured reservation for the so-called lower castes in politics during his tenure. He was elected to the Lok Sabha in 1977 and handled several diverse portfolios, most significantly home, defence and foreign affairs.
1: P.V. Narasimha Rao became Prime Minister of India in 1991 and successfully led the liberalisation of the Indian economy. The reforms opened up the Indian economy to foreign investment, reformed capital markets, deregulated domestic business and reformed the trade regime.
0: The impact of these reforms may be gauged from the fact that total foreign investment in India grew from $132 million in 1991-92 to $5.3 billion in 1995-96. The measures continue to impact the influx of foreign portfolio investment in India and have helped India become a strong global economy.
1: P.V. Narasimha Rao had special interest in Indian philosophy and culture, writing fiction and political commentary, learning languages, writing poems in Telugu and Hindi. He spoke 17 languages.
0: Rao suffered a heart attack on the 9th of December 2004 and died 14 days later at the age of 83.
2: और अभिषेक, आज जयंती है निशानेबाज जसपाल राणा का जी. उनकी अभी कुछ दिन पहले 12 जून को इनका निधन हुआ. निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा सिर्फ 49 वर्ष के थे. राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे. जसपाल राणा ने मनु भाकर को निशानेबाजी में प्रशिक्षित किया और वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने में मदद की. उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. उनका जन्म 28 जून 1976 को भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी में हुआ था. जसपाल राणा के साथ ही तमिलनाडु के सलेम जिले के रहने वाले पैरा ओलंपिक हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलू का भी जन्मदिन इसी दिन होता है. उन्होंने रियो डी जेनेरियो में हुए 2016 समर पैरा ओलंपिक खेलों में पुरुषों की हाई जंप T42 कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व किया और फाइनल में गोल्ड मेडल जीता. खेल में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने मरियप्पन को पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान दिए. इसके बाद 2020 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला.
3: यस, एंड वी आल्सो रिमेंबरिंग प्रोफेसर प्रशांत Chandra Mahalanobis, who passed on this day in 1972. He was a world-renowned Indian scientist, physicist and applied statistician, widely revered as the father of Indian statistics. He transformed statistics from an abstract academic subject into a powerful practical tool for governance, macroeconomic planning and nation-building in newly independent India. Mm-hmm. His birth anniversary on June 29th is celebrated annually as National Statistics Day in India.
2: और पता है उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वेल्टन मेडल पुरस्कार भी दिया गया था, जबकि 1945 में रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो नियुक्त किया था. वे आज़ादी के पश्चात नवगठित मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार बने. वो आपने अभी बताया ही है. औद्योगिक उत्पादन की तीव्र बढ़ोतरी के जरिए बेरोजगारी समाप्त करने के सरकार के प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने योजनाएँ बनाई. प्रधानमंत्री नेहरू ने कृषि और बाढ़ नियंत्रण में उनकी मदद से कई प्रयोग किए. सरकार को बाढ़ नियंत्रण में अप्रत्याशित सफलता मिली और उनका सबसे बड़ा योगदान उनका सैंपल सर्वे है, जिसके आधार पर आज बड़ी बड़ी नीतियां और योजनाएं बनाई जा रही हैं.
3: यस, एंड ए के लोहिता दास, पॉपुलरली नोन एज लोही, वाज अ हाईली सेलिब्रेटेड इंडियन स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर एंड प्लेराइट हु लेफ्ट अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन मलयालम सिनेमा. born on May 5, 1955, and having passed away on June 28, 2009, he spent over two decades crafting some of the most emotional, realistic, and

0: character driven stories in Indian film history.
1: आज हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा उपन्यासकार अमर गोस्वामी की पुण्यतिथि है। वे मनोरमा और गंगा जैसी देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं से लंबे समय तक जुड़े रहे थे। अमर गोस्वामी साहित्यिक संस्था वैचारिकी के संस्थापक भी रहे। उन्होंने कई साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन किया। अमर गोस्वामी ने एक प्राध्यापक के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। महिलाओं की बहुचर्चित पत्रिका मनोरमा में उन्होंने बतौर उप संपादक अपनी सेवाएं प्रदान की। उनकी मुख्य रचनाएं हैं इस दौर में हम सफर, महुए का पेड़, धरती पुत्र, बाहुबली, अपनी अपनी दुनिया, कल का भरोसा, भूल भुलैया आदि।
0: यस एंड आल्सो चारू विशाल डाडलानी वाज बोर्न ऑन दिस डे। इज अ प्रोमिनेंट इंडियन प्लेबैक सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट एंड टेलीविजन पर्सनालिटी। इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वन हाफ ऑफ द प्रीमियर बॉलीवुड म्यूजिक प्रोडक्शन डुओ विशाल एंड शेखर एंड द फ्रंटमैन ऑफ द पायनियरिंग Indian indie rock band Pentagram. Let's go ahead and listen to one of his hit tracks.

0: आज कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कन्नड़ कवि डॉक्टर चिन्नवीरा कनावी की जयंती है। उन्हें भावनाओं के कवि के तौर पर जाना जाता था, जो अलग अलग भावों में तालमेल बैठाने में माहिर थे। देखो अभिषेक, डॉक्टर कनावी की कविताओं का पहला संग्रह काव्याक्षी 1949 में प्रकाशित हुआ था। उन्हें 1981 में उनकी रचना जीवा ध्वनि के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें कर्नाटक सरकार से राज्योत्सव पुरस्कार, पंपा पुरस्कार, नाडोजा की उपाधि और कई अन्य पुरस्कार भी मिले।
1: Yes, and also Jean Jacques Rousseau was a highly influential Genevan philosopher, writer and political theorist whose ideas profoundly shaped the age of enlightenment across Europe. His radical thoughts on human nature, governance and individual freedom laid the intellectual foundation for the French Revolution and heavily inspired the subsequent Romantic movement. And Rousseau famously agreed that humans are inherently good, free and empathetic by nature, but are corrupted by the development of civil society, civilization and private property.
0: के दिग्गज एक्टर राजीव वर्मा का भी आज जन्मदिन है और वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आज के दिन भोपाल में साल 1949 में इनका जन्म हुआ था। वो दो दशकों से अधिक समय से काम कर रहे हैं, लेकिन अब समय हमें ऐसा लगता है कि कह रहा है कि भाई बस। तो आज का परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, तो इजाजत दीजिए मुझे यानी चारू सक्सेना और मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय को।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतरराष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करे। श्री मोदी ने कहा कि भारत के दृष्टिकोण में सेशल्स का एक विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
1: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
0: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के एक समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत इसे एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
1: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमाइनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल, जितेंद्र सिंह और अन्य मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वो आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के अनुरोध के बाद जारी किया गया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। अमरीका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को होर्मुज जलडब्रू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच दो T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज बेलफास्ट में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। शुक्रवार को पहले मैच में भारत को आयरलैंड से 34 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today stated that climate action must be guided by fairness, responsibility and equity. In his special address to the National Assembly of Seychelles, Prime Minister said this is the essence of climate justice. He emphasized that Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive and where international institutions reflect contemporary realities.
1: Climate action must be guided by fairness, responsibility and equity. This is the essence of climate justice. India has sought to lead by example. Over the last decade, we have undertaken one of the world's largest expansions of renewable energy. We have championed sustainable lifestyle through Mission Life. Lifestyle for environment. Through our initiatives like International Solar Alliance, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, Global Biofuel Alliance and Ek Ped Maak Enam, a tree for mother, we have worked with partner countries to boost the green transition.
2: Mr. Modi

0: नमस्कार, आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हौसले कार्यक्रम के साथ मैं हूँ प्रियंका और मेरे साथ हैं प्रोफेसर कुसुमलता मलिक। आप वरिष्ठ प्राध्यापक हैं हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में और आप अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ भारत की। आप लेखिका हैं, रचनाकार हैं, आपने कुल 17 रचनाएं लिखी हैं जिसमें 2 नाटक, 3 काव्य संग्रह, 2 कथा संग्रह, बाकी आपकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। भारतीय विकलांग जन आंदोलनों का इतिहास एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो दिव्यांगों के इतिहास पर आधारित है, साथ ही नाटक और रंगमंच में आपकी विशेषज्ञता है। आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने इतनी सारी किताबें लिखी, आपने प्राध्यापक का पद ग्रहण किया, इसमें किस प्रकार की चुनौतियां आपके सामने आई?
1: ये तो आप जानती ही हैं और हमारे सभी श्रोता भी जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से कि जीवन इतना आसान नहीं होता और दृष्टि बाधा के कारण संघर्ष दुगना हो जाता है
0: जी।
1: और दृष्टि बाधा के साथ महिला होने के साथ वो हजार गुना हो जाता है। तो इस संघर्ष को मैं ये नहीं कहूंगी कि आप विशेष समझें, ये जीने का एक तरीका है और हर एक को जीने के तरीके अपने ढंग से निकालने पड़ते हैं। अगर समाज सकारात्मक रुख के साथ आपके साथ खड़ा होता है, सबसे पहले प्राथमिक रूप में आपका अपना परिवार, उसके बाद आपका पास पड़ोस, आपका शिक्षालय, आपका कार्यालय, तो निश्चित तौर पर आप बढ़ती चली जाती हैं। अगर वहाँ अवरोधक खड़े हो जाते हैं, समाज में जैसे कोई दृष्टिबाधित हो जाए तो ये मान लिया जाता है

0: आज भी इतनी सूचना क्रांति के बाद कि इसका जीवन अब व्यर्थ है, अब ये बोझ की तरह ही समाज पर है। तो मैं तो आज से लगभग 50 साल पहले दृष्टिबाधित हुई थी। 1975 में मेरे गांव में महामारी फैली चेचक की, और उसी में मेरी आंखें गईं। मुझे सौभाग्य मिला कि मेरे माता पिता शिक्षित थे और उन्होंने मेरे लिए प्रयास किया, विशेष रूप से मेरी माँ ने
1: जी।
0: तो दिल्ली में आई, दिल्ली यहाँ पढ़ी, तब से दिल्ली में ही हूँ आज तक, और यही सारा संघर्ष फलीभूत हुआ है। इसी जमीन ने मुझे बार बार गिरकर संभलने की चेतना दी है, और इसी जमीन ने मुझे उगकर एक बीज की तरह वृक्ष बन जाने की, छा जाने की प्रेरणा भी दी है।
1: आपके परिवार ने, आपकी माता जी ने आपको बहुत ही सहयोग किया, बहुत ही आगे बढ़ाया, लेकिन एक बच्चे के रूप में जब हम देखते हैं तो किस प्रकार का संघर्ष अनुभव किया, उसको किस तरह से आप बताना चाहेंगी?
0: देखिए, बात ऐसी है कि जब मैंने, क्योंकि सनेत्र होकर देखा था संसार को, लगभग 5.5 साल तक तो पूरा देखा था, मैं पढ़ती थी, स्कूल भी जाती थी, तो मुझे इसलिए आज भी हाथ से लिखना आता है, वो जिस तरह से गांव में लिखवाते थे। लेकिन जब एकदम मेरी आंखें बंद हो गई और मुझे दिखना बिल्कुल बंद हो गया, तो मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल था। जब मैं को बहुत क्रोध आता था, नहीं दिखता, मैं दौड़ती थी और गिर जाती थी और खून निकल जाता था, कभी नाक टूट गई, कभी माथा फट गया, कभी घुटना टूट गया, और माँ उठाती थी और मेरे को माँ के ऊपर भी गुस्सा आता था और मैं माँ को बहुत जोर से काटती थी, लेकिन माँ को समझाना नहीं आता था कि तुम्हें दिखता नहीं है इसलिए अब तुम दौड़ो मत, ऐसे छूकर चलो, ये प्रशिक्षण की बात होती है। जैसे ही विद्यालय का पता चला, अंध महाविद्यालय यहाँ पर है हमारा शंकर रोड पर, तो माँ मुझे लेकर आई और मेरा प्रवेश वहाँ हुआ। उसके बाद जब मैंने देखा कि सारी लड़कियाँ छू छू कर देखती थी कि कोई नई लड़की आई है, तो बच्चा जब उसको इतने सारे लोग छुएंगे तो डरेगा, तो मैं बहुत डर गई थी और मैं डर कर छुप गई दरवाजे के पीछे। तो मैं सारी रात, आप मानिए कि मैं एक दरवाजे के पीछे बैठी रही डर के मारे, इतनी आवाजें थी वहां, आवाजों से डर, ऊपर से बच्चों की छुअन से डर, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि जहां मुझे छोड़ गए मुझे क्या करना है। तो सुबह जब मैं सो गई दरवाजे के पीछे ही, तो उन्होंने दरवाजा जोर से खोला तो मेरा अंगूठा उसके नीचे आ गया, दरवाजे के नीचे। तो फिर मेरी माँ को बुलाया गया, वो अंगूठे में स्टिचेस लगे, तब मेरी माँ ने उनको कहा कि मुझे भी यहीं पर रहने दो, मैं बच्ची की देखभाल कर लूँगी थोड़े दिन और ये एडजस्ट हो जाएगी तो फिर मैं उसके बाद देख लूँगी। तो वहाँ मेरी माँ ने 3 महीने रहकर सेवा की सब बच्चों की, और माँ ने समझाया मुझे कि तुम्हें यहाँ पढ़ना है, कैसे सीखना है चीज़ों को। मेरी माँ ने खुद ब्रेल सीखी मेरे लिए, क्योंकि उस जमाने में ब्रेल प्रेस से इतनी पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती थी कि सबको उपलब्ध हो सके। अब पूरी क्लास में वही एक किताब होती थी जो मैं लिखकर लाती थी गर्मी की छुट्टियों में, सारे सब्जेक्ट्स की किताबें मैं लिखकर लाती थी केवल मैथ्स को छोड़कर, और वही किताब आप मानिए हमें पढ़ने के लिए 1-1 घंटा मिलती थी। तो इस तरह के दौर से हम लोग संघर्ष करके बड़े हुए हैं, लेकिन ईश्वर ने कमिटमेंट अंदर दिया, उसी की प्रेरणा से, माँ बाप के आशीर्वाद से और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से जीवन संवरता चला गया। संघर्ष बहुत होता है समाज में। जब मैं आई उसके बाद रोजगार की बात आती है, हायर एजुकेशन के लिए मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया और मैं टॉपर रही हूँ अपने कॉलेज की, ऑलराउंडर बेस्ट स्टूडेंट रही हूँ 3 साल तक, और दिल्ली विश्वविद्यालय की 5 साल तक मैं बेस्ट डिबेटर रही हूँ। हमारे जमाने में डिबेट बहुत होता था और इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट भी होता था। तो ऐसा कोई कॉलेज नहीं है दिल्ली विश्वविद्यालय का जिसका प्रथम पुरस्कार मैंने ना लिया हो, लेकिन मुझे ये तो नहीं मालूम था कि पुरस्कार लेना एक अलग बात है और रोजगार लेना दूसरी बात है। जब रोजगार की लड़ाई शुरू हुई प्रियंका, तो ये बात बनी कि जहां भी मैं जाती थी वो ये कह देते थे कि अरे आपका नाटक और रंगमंच है, आप दृष्टिबाधित होकर नाटक और रंगमंच कैसे कर सकती हैं, कैसे आप नाटक और रंगमंच को समझ सकती हैं, ये तो एक विजुअल आर्ट है। फिर मैं उनको समझाती थी जो मैं अपने श्रोताओं को भी बताना चाहूंगी, आपकी दृष्टि काम नहीं करती, दृष्टि के पीछे कुछ और है, वो दिमाग है, आपका मस्तिष्क है। अगर आपका मस्तिष्क दुरुस्त है तो आप बारीक से बारीक ध्वनि को आप अच्छे से अच्छे रंग की समीक्षा कर सकते हैं, कलर्स को भी समझ सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज का एक आधार है, इस सृष्टि में निराधार कुछ नहीं है। उसके आधार को समझने के लिए मस्तिष्क के विश्लेषणात्मक क्षमता की जरूरत है। तो ये रहा बड़ा मुश्किल रहा, 12 साल तक लगभग 200 इंटरव्यू मैंने दिए, तब मेरा परमानेंट हुआ। तो ये एक यात्रा थी नकार की, लेकिन मेरे भीतर माँ ने हमेशा से बचपन से एक चीज भरी थी कि तुम जब सर्वोत्तम ग्रहण करोगी, सर्वोत्तम तुम्हें पाना है, तब तुम्हें सामान्य माना जाएगा। इसलिए तुम ये मत सोच लेना कि तुम पास हो गई तो ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो तुम्हें सर्वोत्तम को पाकर तुम सामान्य गिनी जाओगी। इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना है। एक बच्चा अगर एक पुस्तक पढ़ता है, अगर 5 पहाड़े याद करता है, तो तुम्हें उससे 10 गुना अधिक करना है, 20 गुना अधिक करना है। तो यही मेरा मूल मंत्र रहा, और मैंने हमेशा सनेत्र साथियों के साथ भी पढ़ते हुए ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, पीएचडी और एमफिल के दौरान हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखा। और जितनी भी पत्रिकाएं आती थी, मैं कोशिश ये रहती थी कि अपने रीडर से उन पत्रिकाओं का वाचन हमेशा करवाऊं, और उनमें जो स्पेसिफिकेशंस कुछ हैं, जो स्पेशलाइज चीज़ें हैं, उनको मैं नोट डाउन करूँ और लिख कर रखूँ अपने लिए, रिसर्च के लिए।

0: इतनी लंबी संघर्ष यात्रा आपने बताई अपनी शिक्षा से लेकर रोजगार पाने तक की, इसके बाद आप यहाँ तक नहीं रुकी, आप एक लेखिका भी हैं, लेखन कार्य में भी आप स्थापित हैं। इस क्षेत्र में स्थापित होना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है, आपने किस तरह से इसको भी मैनेज किया, साथ में आपने लेखन कार्य को भी जारी रखा और इतनी सारी रचनाएं आपकी आई?
1: ओ गालिब, कहते ना दर्द जब हद से बढ़े तो दवा हो जाता है, तो वो दवा है लेखन। तो जब मैं देखती थी कि कितनी नकारात्मक स्थितियां, समाज का कितना एटीट्यूडनल बैरियर्स मेरे सामने खड़े हैं, और मेरे सामने ही नहीं बल्कि मेरे जैसे पूरे तमाम समाज के सामने खड़े हैं, जो हाशिए का समाज है उसके सामने खड़े हैं, तो वो अपने आप लेखन की प्रेरणा देते हैं। मैंने जो सृजनात्मक लिखा है वो अधिकांशतः महिलाओं और विकलांगता विमर्श पर ही लिखा है, स्त्री विमर्श और बाल विमर्श और विकलांगता विमर्श पर ही लिखा है जो सृजनात्मक है। तो पहला नाटक जो लिखा मैंने, कारा कुंती की लिखा, कि कुंती की कारा यानी जेल, स्त्री की जेल कैसी होती है ना, उसके मन मस्तिष्क में नहीं होती, उसकी दीवारें समाज बनाता है ना। तो स्त्री जब कहा जाता है ना, सिमोन द बुआर कहती हैं कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, तो ये वो है नाटक। और दूसरा नाटक जो है मेरा वो लुई की सुई, तो लुई ब्रेल पर है कि लुई ब्रेल ने उस जमाने में ब्रेल का आविष्कार किया बड़े बड़े वैज्ञानिकों के समान, लेकिन उनको स्वीकृति नहीं मिली। आप जानिए बेटा कि उनको ब्रेल को उनके खुद के विद्यालय में सारे अध्यापक विरोध करते थे कि ब्रेल खटखट ध्वनि करती है, इसमें क्या कोई पढ़ लिख सकता है, तो ब्रेल की खटखट ध्वनि में पढ़ा नहीं जा सकता उनके अनुसार, जो कि एक बहुत बड़ा चमत्कार था। जहां आपको खाली ओरली सिखाया जाता था, पढ़ाया जा, कितना पढ़ सकता है कोई आदमी स्मरण शक्ति से,
0: बिल्कुल
1: है ना। तो आप भी जब अक्षर बनाती हैं तो वो मस्तिष्क में भी बनती है उसकी आकृति, ऐसे हम ब्रेल में जब लिखते हैं तो वो अक्षर की एक आकृति मन में उभर जाती है, मन में बस जाती है ना। तो भाषा का संस्कार बिना लिपि के नहीं आ सकता, और लिपि को बनाने वाले इतने बड़े आविष्कारक को वो नकार झेलना पड़ा कि उनकी उन्होंने जो तैयार की थी पुस्तकें, जो कलम और स्लेटें बनाई थी, वो वहाँ के निर्देशक डुफाओं ने तमाम जला दी, पूरा जला दिया कि कुछ बचे ही ना। तो वो विद्यार्थी थे, उनके साथी थे, जिन्होंने कहा कि ब्रेल हमारी धमनियों में है, हमारी नसों में है, हमारे खून में है, आप बाहरी आवरण को जला सकते हैं लेकिन वो सुरक्षित रहेगी। तो उस पर दूसरा नाटक मैंने लिखा, लुई की सुई। और बाकी तो समीक्षात्मक किताबें हैं, सृजनात्मक मेरे काव्य संग्रह है, उसमें भी डिसेबिलिटी पर भी हैं कविताएं बहुत सारी।
0: आप हमारे श्रोताओं को अगर अपनी एक कोई छोटी कविता सुना दें।
1: हाँ, मैं थोड़ा सांश सुना देती हूँ। मैं बहुत छोटा शिशु हूँ, चाहता हूँ साथ चलना, तुम मुझे उंगली थमाना, गिर पड़ूं तो बाह पकड़ना, मैं बहुत नन्हा शिशु हूं, चाहता हूं बात करना, बैठ कर पास तुम्हारे, तुम मेरी दर्पण आंखों का हर प्राकृत अंदाज समझना, मैं बहुत छोटा शिशु हूं, चाहता हूं पास आना, चाहता हूं एक सुंदर सा घरोंदा मैं बनाना, बैठकर जिसमें सभी हम बात कर सकें उसकी, जो कहीं पर खो गया है तुमसे मुझसे होकर बाहर, मैं बहुत नन्हा शिशु हूं, चाहता हूं बात करना, फुसफुसाहट बुदबुदाहट सुर्ख गुलाबी पंखरियों की, कह नहीं पाएगी सब कुछ तुम मेरी दर्पण आंखों का हर प्राकृत अंदाज समझना, तुम मेरी गतिहीन देह का हर थिरकन का तार समझना, मैं बहुत छोटा शिशु हूँ, चाहता हूँ बात करना।
0: बहुत मर्मस्पर्शी रचना है आपकी। अगर आप कहें तो हम आपको आपकी पसंद का कोई एक गीत सुनवा दें।
1: किशोर दा का गीत है, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के।

0: समय हो चला है कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: देखिए, युवाओं को मैं संदेश देना चाहती हूँ क्योंकि मैं युवाओं के बीच में ही रहती हूँ। तो आज की युवा में एक त्वरा मैं देखती हूँ कि वो बहुत जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड है। वो संघर्ष करे बिना रिजल्ट पाना चाहता है, तो वो बहुत मुश्किल है उसके लिए। उनको अगर रिजल्ट मिल भी जाता है तिकड़म से, तो वो रस नहीं होता उसमें, वो सूखा फल मानिए। मैं हमेशा ये समझाती हूँ कि वो रसहीन फल समझिए, सूखा फल किसी ने आपको दे दिया। तो वो संघर्ष करें, और संघर्ष अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने समय और समाज के साथ मिलकर संघर्ष करें। क्योंकि मैंने तो दिल्ली विश्वविद्यालय का विद्यार्थी परिषद का संघर्ष भी देखा है। मैं खुद प्रेसिडेंट रही हूँ दौलतराम कॉलेज की, तो विद्यार्थी जीवन में तो हम लोग लेफ्ट राइट नहीं होते थे, हम विद्यार्थी होते थे विद्यार्थियों के प्रतिनिधि और विद्यार्थियों के लिए। तब ये नहीं सोचते थे कि ये कौन से रिजीम का विद्यार्थी है, इसके लिए ये काम किया जाए कि नहीं। हम लोग दौड़ पड़ते थे सबके लिए करने के लिए। तो वही भावना विद्यार्थियों में आनी चाहिए, क्योंकि विद्यालय और विश्वविद्यालय ही ऐसे स्थान है जहां राजनीति दिशा ग्रहण करती है, और राजनीति की दिशा अगर बिगड़ जाए तो फिर मुश्किल है देश को संभलना। इसलिए यही हमारे जो युवा हैं अपने देश को दिशा दे सकते हैं, क्योंकि यहीं से आलोचनात्मक शक्ति मिलती है, यहीं से संघर्ष की पावर मिलती है, और यहीं से समाज को संभालने की ताकत मिलती है। तो ये जरूरी है कि वो अपने समय को और अपने समाज को समझते हुए, अपने आप को पूर्वाग्रहों से मुक्त करते हुए एक सीधी लड़ाई लड़े। और सीधी लड़ाई लंबा रास्ता हो सकता है, लेकिन जिस तरह से वो फलीभूत होती है, वो फल का आस्वादन देती है, वो जीवन भर आस्वादन देती है।
0: तो हौसले कार्यक्रम में आज हमारी अतिथि थी प्रोफेसर कुसुमलता मलिक, वरिष्ठ प्राध्यापक हिंदी विभाग और हिंदी की लेखिका रचनाकार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आई और आपने अपने संघर्ष की और अपनी सामने आने वाली चुनौतियों की इतनी विस्तृत जानकारी हमारे श्रोताओं को दी।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से कार्यक्रम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और आकाशवाणी तो गांव-गांव तक पहुंचता है, आज भी जिस तरह से आकाशवाणी की पहुंच है वैसी पहुंच किसी की नहीं है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए, बहुत बहुत

0: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
1: पूर्वोत्तर डायरी।
0: श्रोताओं, आज के पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम की शुरुआत भी हम कर रहे हैं पद्म सम्मान की विभूतियों की कहानी से। और 2026 में पद्म सम्मान प्राप्त विभिन्न शख्सियत पूर्वोत्तर से संबंध रखती हैं। पूर्वोत्तर की कई शख्सियत के बारे में हमने पिछले संस्करण में आपके साथ चर्चा की। आज हम बात करने जा रहे हैं कविंद्र पुरकायस्थ के योगदान की। स्वर्गीय कविंद्र पुरकायस्थ को 2026 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और उन्होंने सार्वजनिक सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। असम में विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों को सुदृढ़ करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और सामाजिक और सार्वजनिक कार्यों में उनका योगदान आज भी स्मरणीय है। तो आइए कविंद्र पुरकायस्थ की कहानी सुनते हैं।
2: स्वर्गीय श्री कविंद्र पुरकायस्थ को जनसेवा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया और असम के सामाजिक और जनहित के कार्यों में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सरकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने और समाज के विकास व लोगों के कल्याण से जुड़े कई प्रयासों में योगदान दिया। उनकी ईमानदारी, नेतृत्व और समर्पण के कारण उन्हें हर वर्ग के लोगों का सम्मान मिला। भारत सरकार ने उनके योगदान को देखते हुए

0: हुए गणतंत्र दिवस 2026 पर घोषित पद्म पुरस्कारों में उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श और कार्य आज भी जनसेवा, समाज के विकास और प्रशासन से जुड़े लोगों को प्रेरणा देते हैं। यह सम्मान असम और समाज के लिए उनके अमूल्य योगदान को सच्ची श्रद्धांजलि है। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं निशा साहू, आकाशवाणी समाचार।
1: श्रोताओं, पूर्वोत्तर के सभी राज्य अपनी जैव विविधता और प्रकृति के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए हम सभी पर्यटक भी पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वहां की जो सुंदरता है, प्राकृतिक संपदा को संजोए रखने की जो परंपरा है, वो वहां के राज्यों को एक नया रूप देती है। सिक्किम भी इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहां जैव विविधता और प्रकृति के संरक्षण को लेकर जो पहल की जाती रही है उससे राज्य बहुत सुंदर और आकर्षक है। तो सिक्किम के एक गांव की हम आपको आज एक पहल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां उन्होंने ऑर्किड के संरक्षण को लेकर बहुत से महत्वपूर्ण काम किए हैं। तो आइए हमारे संवाददाता दिलीराम दुलाल की ये रिपोर्ट सुनते हैं।
2: वनस्पति शोधकर्ता प्रमोद राय के नेतृत्व तथा स्थानीय युवा स्वयं सेवकों के सहयोग से यह पहल विज्ञान, पारंपरिक ज्ञान और जन सहभागिता का सफल संगम बन गया है। वर्ष 2021 से चलाए गए विभिन्न अभियान के दौरान सैकड़ों स्थानीय ऑर्किड पौधों को बचाकर उपयुक्त वृक्षों पर स्थापित किया गया और प्रत्येक परिवार तक पहुंचाया गया। इस प्रयास ने न केवल गांव की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाया बल्कि ऑर्किड के पारिस्थितिक महत्व के प्रति भी लोगों को जागरूक किया। ऑर्किड और उनके आश्रय वृक्षों का संरक्षण सिक्किम की विशिष्ट जैव विविधता की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है तथा प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण भी बन रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वनस्पति शोधकर्ता प्रमोद राय ने इस 3 वर्षीय संरक्षण यात्रा के दौरान आई चुनौतियों तथा भविष्य में इस पहल की संभावना पर अपने विचार साझा किया।
3: पिछले 3 वर्षों के दौरान सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक लोगों को ऑर्किड के प्रति सोच को बदलना था क्योंकि अधिकांश ग्रामीण बड़े और आकर्षक ऑर्किड जो होता है जैसे सिम्बिडियम हाइब्रिड उस तरह के फूल से परिचित थे, जबकि हमारा ध्यान स्थानीय एपिफाइटिक ऑर्किड जो पेड़ के तने में होते हैं उस प्रजातियों पर था जिनमें से कई के फूल बहुत छोटे और कम आकर्षक और कम समय तक टिकता है। लोगों को इनके महत्व को समझाने के लिए लगातार हमने जागरूकता कार्यक्रम और नियमित बातचीत की आवश्यकता पड़ी। एक अन्य चुनौती यह थी कि कई लोग इस पहल से सीधे आर्थिक लाभ का अपेक्षा करते थे जबकि संरक्षण के लाभ देर से ही होता है और तुरंत दिखाई नहीं देते। फिर भी निरंतर जनसंपर्क और 17 समर्पित स्थानीय युवाओं के सहयोग से हम लोगों का विश्वास जीतने में सफल रहे और गांव के प्रत्येक परिवार का भागीदारी सुनिश्चित कर सके हम। मेरा मानना यह है कि यह पहल जैव विविधता संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि श्री से सिक्किम का एक सब ट्रॉपिक क्षेत्र में स्थित है जहां ऑर्किड का अनेक प्रजातियां पाई जाती है। साथ ही नामची जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल है जो नजदीक होने के कारण इनमें इको टूरिज्म के बढ़ावा देने की भी काफी हम संभावनाएं देखते हैं। इसके साथ ही ऑर्किड स्थानीय सांस्कृतिक और परंपराओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए ले सकते हैं हम ये डेंड्रोबियम मस्कैटम, इसके तने को उपयोग हम जो किरात समुदाय द्वारा पारंपरिक आभूषण जिसको धजुरा बोलता है बनाने के लिए किया जाता है काम। इसलिए यह पहल केवल जैव विविधता के संरक्षण तक सीमित नहीं है बल्कि पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को भी आने वाला पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
2: इस अभियान का सांस्कृतिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऑर्किड का संबंध लंबे समय से राय और लिंबू समुदाय की परंपराओं से जुड़ा रहा है। स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण के साथ इस विरासत को पुनर्जीवित कर सिरिसे ने यह साबित किया है कि सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। आज यह गांव सामुदायिक गौरव, जैव विविधता संरक्षण और सतत पर्यटन विकास का एक प्रेरणादायी हिमालयी मॉडल बन चुका है। मैनक चटर्जी के साथ आकाशवाणी समाचार गांतोक से दिलीराम दुलाल।
1: श्रोताओं, उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आपसे बात कर रहे हैं जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत में जन्म लिया और

0: और पूर्वोत्तर भारत में ही नहीं बल्कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा। अपनी शहादत से, स्वतंत्रता आंदोलनों में अपने योगदान से उन्होंने ये दिखाया कि किस तरह से दूरस्थ इलाकों में भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। और ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया, तो पूर्वोत्तर भारत भी इसी श्रेणी में है। आज हम बात कर रहे हैं कनकलता बरुआ के बारे में। कनकलता बरुआ वो नाम है जिन्होंने असम में जन्म लिया और छोटी सी अवस्था में अंग्रेजों के साथ विद्रोह करके अपनी जान गंवाई और देश के लिए शहीद हुई। तो आइए ये विशेष रिपोर्ट आपको हम पूर्वोत्तर डायरी में सुनवा रहे हैं।
1: भारत के स्वाधीनता संग्राम की कथा उन असंख्य साहसी युवाओं की कहानी है जिन्होंने अपने जीवन से बड़ा राष्ट्र को माना और बलिदान को कर्तव्य समझा। इसी पावन संघर्ष में एक नाम है कनकलता बरुआ, असम की वह वीर बालिका जिसने मात्र 17 वर्ष की आयु में तिरंगे को अपने सीने से लगाकर शहादत

असम का गुहपुर क्षेत्र घने जंगलों, हरे भरे खेतों और अपनी सांस्कृतिक गरिमा के लिए जाना जाता है। यहीं 22 दिसंबर 1924 को कनकलता का जन्म हुआ। वे बचपन से ही गंभीर, दृढ़ संकल्पी और आत्मसम्मान से भरी थी। उनका परिवार साधारण था, पर संस्कार गहरे थे। कम आयु में ही माता पिता का साया उनसे छिन गया, पर उन्होंने जीवन को निराशा में नहीं डूबने दिया। उनका मन स्वतंत्रता की उस अग्नि से आलोकित हो गया था जो उस समय पूरे देश में जल रही थी। असम में उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का जनाधार तेजी से बढ़ रहा था। अंग्रेजी शासन द्वारा अत्यधिक कर वसूली, पुलिस अत्याचार और सांस्कृतिक दमन से जनता त्रस्त थी। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन की पुकार जब पूरे देश में गूंजी तो असम भी उससे अछूता नहीं रहा। इसी वातावरण में गोहपुर में सक्रिय स्वतंत्रता सेनानियों ने युवाओं को संगठित करना शुरू किया। कनकलता ने इसी समय मृत्यु बहिनी नामक महिला स्वयंसेवी संगठन में भाग लिया। यह संगठन स्वतंत्रता संघर्ष में प्रतिरोध, अनुशासन और निडरता का प्रतीक था। कनकलता को तिरंगे से विशेष प्रेम था। उन्होंने कहा था, ये झंडा केवल कपड़ा नहीं बल्कि ये हमारी अस्मिता और हमारे भविष्य की

1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजी सरकार ने दमन कार्रवाई और तेज कर दी। कई नेताओं को बंदी बनाया गया। ऐसे में जनता ने स्वयं नेतृत्व संभाला। गोहपुर में निर्णय हुआ कि तिरंगा को लेकर गोहपुर थाने पर प्रतीकात्मक रूप से ध्वज फहराया जाएगा। इस दल का नेतृत्व युवाओं को सौंपा गया और तिरंगा धारण करने की जिम्मेदारी स्वयं कनकलता ने ली। 20 सितंबर 1942 की सुबह हाथों में तिरंगा, आंखों में विश्वास और मन में अटूट साहस लिए युवाओं का जत्था गोहपुर थाने की ओर बढ़ा। पुलिस ने चेतावनी दी, आगे मत बढ़ो वरना गोली चल जाएगी, पर कनकलता रुकी नहीं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, ये तिरंगा इस धरती पर अवश्य लहराएगा, यदि आवश्यक हुआ तो मेरे प्राण पहले जाएंगे, ये ध्वज बाद में नीचे आएगा। उनका ये वक्तव्य भीड़ के मन में ध्वनि की तरह गूंज गया। वो आगे बढ़ी

ने गोलियां चला दी। कनकलता ने अंतिम क्षणों में भी ध्वज को अपने सीने से कसकर पकड़े रखा। वह गिर पड़ी पर तिरंगा गिरने नहीं दिया। उसी क्षण पास खड़े मुकुंद काकोती ने ध्वज को थामा पर वे भी अंग्रेजी गोलीबारी का शिकार हुए। इस प्रकार 17 वर्ष की अल्पायु में कनकलता बरुआ ने अपने प्राणों के साथ तिरंगा राष्ट्र को समर्पित किया।

उनकी शहादत सिर्फ बलिदान नहीं थी, ये एक संदेश था। ये संदेश था कि स्वतंत्रता उन युवाओं और युवतियों के विश्वास और बलिदान से सींची गई थी जिनके मन में भारत बसता था। असम की धरती सदियों से स्वाभिमान और साहस की भूमि रही है। यहाँ अक्काम खिलंग, मोइनांगो, पीका युद्ध और अनेक लोकवीरों की स्मृति जीवित है। इसी परंपरा की अमर ज्योति थी कनकलता। उनका जीवन ये सिखाता है कि देशभक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं है। ये भावना जब व्यक्ति के हृदय में जागती है तब वह साधारण नहीं रहता, वह इतिहास बन जाता है। आज गोहपुर में उनका स्मारक है, विद्यालयों और संस्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। हर वर्ष उनके बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। पर सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है कि आने वाली पीढ़ियां ये समझें कि स्वतंत्रता की रक्षा निरंतर जागरूकता, साहस और एकता से होती है। कनकलता बरुआ की कहानी हमें ये भी स्मरण कराती है कि स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान पूर्वोत्तर भारत ने केवल समर्थन नहीं दिया बल्कि अपने प्राणों की आहुति भी दी। इस क्षेत्र की वीरता भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का अभिन्न अध्याय है। कनकलता ने तिरंगे को अपने प्राणों से सींचा। उन्होंने दिखा दिया कि राष्ट्र प्रेम जब हृदय में बसता है तब आयु छोटी नहीं आत्मा विशाल हो जाती है। उनका नाम आज भी वही ध्वनि लेकर उभरता है, असम की बेटी, भारत की शान, अमर वीरांगना कनकलता बरुआ महान। पूर्वोत्तर डायरी के लिए

0: त्रिपुरा के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि त्रिपुरा हमारे देश का किस तरह से एक अभिन्न राज्य है और यहाँ की संस्कृति, परंपरा, कला, खान पान और यहाँ की जीवन शैली किस तरह की है। तो आइए सुनते हैं त्रिपुरा के बारे में ये खास विवरण।
1: त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा सबसे छोटा राज्य, अपनी अनूठी सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य विविधता और परंपराओं का एक ऐसा मेल है जो हर किसी को आकर्षित करता है। त्रिपुरा का नाम संस्कृत के त्रिपुर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है तीन शहरों का राज्य। ये राज्य कभी त्रिपुरी राजवंश का हिस्सा था, जिन्होंने लगभग 500 वर्षों तक यहाँ शासन किया। सन 1949 में त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना और तब से ये अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं।

0: त्रिपुरा की पहचान यहाँ की आदिवासी जनजातियों से भी जुड़ी है। यहाँ कुल 19 आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें त्रिपुरी, रियांग, जामतिया और चकमा प्रमुख हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा, परंपरा, पोशाक और जीवन शैली है, जो राज्य को एक सांस्कृतिक रंगमंच बनाती है। इन जनजातियों के त्योहार, नृत्य और संगीत त्रिपुरा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। त्रिपुरा की कला और हस्तशिल्प भारत भर में अपनी अनूठी शैली और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। बांस और बेत से बने उत्पाद जैसे टोकरियाँ, फर्नीचर और सजावट का सामान त्रिपुरा की शिल्प कला की अनमोल धरोहर है। यहाँ के कारीगर अपनी कला में माहिर हैं और हर वस्तु को हाथ से बनाते हैं, जो इसे खास बनाता है। त्रिपुरा का हथकरघा उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की रेशमी और सूती साड़ियाँ, खासकर रिसा और रिगनाई, न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय हैं। त्रिपुरा के लोक संगीत और नृत्य यहाँ की आत्मा है। यहाँ का होजागिरी नृत्य रियांग जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वे मिट्टी के बर्तन और दिए लेकर अद्भुत संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। ये नृत्य फसल कटाई के बाद खुशी और उत्सव के अवसर पर किया जाता है। गौरिया नृत्य भी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इन नृत्यों में दिखने वाली ऊर्जा और जीवंतता त्रिपुरा की संस्कृति का प्रतिबिंब है। त्रिपुरा का ऐतिहासिक महत्व इसकी वास्तुकला और स्मारकों में भी झलकता है। उज्जयंत महल, जो अगरतला में स्थित है, त्रिपुरा के राजाओं का शाही निवास था। इस महल की वास्तुकला, बगीचे और भव्यता इसे त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाते हैं। नीर महल, जो रुद्रसागर झील के बीच में स्थित है, राज्य का एकमात्र महल है। ये महल त्रिपुरा के शाही वैभव और संस्कृति की झलक देता है। त्रिपुरा का प्राकृतिक सौंदर्य इसे स्वर्ग के समान बना देता है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़ियाँ और झरने प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। सिपाहीजला वन्यजीव अभयारण्य और रोवा वन्यजीव अभयारण्य जैसे स्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन अभयारण्यों में पक्षियों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा ऊनाकोटी एक रहस्यमय स्थल है, जहाँ पहाड़ियों पर विशाल शिव मूर्तियाँ और शिलालेख हैं। इनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और ये स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए खास है। त्रिपुरा के खानपान में भी इसकी सांस्कृतिक विविधता का प्रभाव साफ दिखाई देता है। यहाँ का मोस्टिंग सेवा, जो टमाटर की चटनी है, बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा बांस के अंकुर की करी और बांगुई चावल त्रिपुरा के पारंपरिक व्यंजन हैं। रियांग जनजाति की पोर्क डिशेस और फिश स्टू भी यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में शामिल हैं। यहाँ के खाने में ताजगी और स्थानीय मसालों का खास स्वाद होता है, जो हर किसी को पसंद भी आता है। त्रिपुरा के त्योहार और मेले यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। खारची पूजा, जो 14 देवताओं की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गरिया पूजा, जो आदिवासी जनजातियों के फसल कटाई से जुड़ा त्योहार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गा पूजा, गंगा सप्तमी और कई अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन त्रिपुरा की विविधता और एकता को दर्शाते हैं। त्रिपुरा आज के समय में विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगरतला, राज्य की राजधानी, अब स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और परंपरा का अद्भुत मेल है। यह छोटा सा राज्य अपनी अनोखी पहचान और विविधता के लिए जाना जाता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो त्रिपुरा जरूर आएं और इसकी खूबसूरती और संस्कृति को करीब से महसूस करें। ये राज्य न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है जो इसे जानने और देखने की चाहत रखता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्राची प्रिया।
1: पूर्वोत्तर राज्यों को खेलों का इतिहास बहुत पुराना है। आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में खेला जाने वाला पोलो शताब्दियों से मणिपुर में खेला जाता रहा है और आज भी इसे इस राज्य में खेलने की परंपरा है। इसी तरह से तमाम ऐसे खेल हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न जनजातियों द्वारा आज भी खेले जाते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराया है। बहुत सारे पदक हमारे देश के लिए उन्होंने जीते हैं। तो आइए एक विस्तृत आपको रिपोर्ट सुनवाते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के खेलों की रोचक यात्रा पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों के परंपरागत खेलों के बारे में और साथ में सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में जिसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उत्तर पूर्व भारत, जिसे हम भारत का रत्न भी कह सकते हैं, न केवल अपनी संस्कृति, परंपराओं और भाषाई विविधताओं के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के लोग खेलों के क्षेत्र में भी भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। यहाँ की मिट्टी में ऐसी सादगी और कठोरता है जो खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। यहाँ के पारंपरिक खेल आज भी गाँव कस्बों में जीवित है और वहीं से निकलते हैं ऐसे खिलाड़ी जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का परचम लहराते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में विविध पारंपरिक खेल देखने को मिलते हैं, जो स्थानीय संस्कृति, त्योहारों और जीवन शैली से गहराई से जुड़े हैं। असम में पारंपरिक खेलों का प्रमुख उदाहरण है दोंधी बियो, जो दो टीमों के बीच खेले जाने वाला एक तेज गति वाला खेल है। वहीं कबड्डी और गिल्ली डंडा जैसे खेल ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक खेल है सगोल कांगजेई, जिसे आधुनिक पोलो का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यहाँ के लोग सदियों से इस घुड़सवारी खेल को खेलते आए हैं। इसी राज्य से पोलो का अंतर्राष्ट्रीय सफर शुरू हुआ। थांगता और सरित सरक मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट्स हैं, जिनमें शारीरिक क्षमता, लयबद्धता और मानसिक संतुलन की जरूरत होती है। यूबी लकपी मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है, जो रग्बी जैसा होता है, लेकिन इसमें तेल से लिप्त नारियल का उपयोग गेंद की तरह किया जाता है। ये खेल खासकर त्योहारों पर खेला जाता है और इसके पीछे धार्मिक महत्व भी है। मेघालय में जटरा और वाईकुपर जैसे पारंपरिक खेल देखे जाते हैं, जो पारंपरिक समुदायों के बीच आपसी सहयोग और संतुलन को बढ़ावा देते हैं। यहाँ आर्चरी यानी तीरंदाजी बहुत लोकप्रिय है, विशेषकर तेल शिला नामक खेल, जिसमें दैनिक जीवन की कुशलता झलकती है। मिजोरम में इंटर विलेज फुटबॉल टूर्नामेंट आज भी पारंपरिक गौरव का विषय रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किट्टल और सुपेक जैसे खेल खेले जाते हैं, जिनमें शरीर के लचीलेपन और तीव्रता की परीक्षा होती है। नागालैंड में खो खो और सेसे जैसे पारंपरिक खेल युवाओं को न केवल शारीरिक रूप से दक्ष बनाते हैं, बल्कि सामुदायिक भावना भी सिखाते हैं। नागा रेसलिंग यहाँ का एक अत्यंत लोकप्रिय खेल है, जो ताकत, संतुलन और तकनीक पर आधारित होता है। अरुणाचल प्रदेश में एपटानी जनजाति का डीलो खेल और मिशमी जनजाति का कट्टा फाइटिंग आज भी पारंपरिक मेलों में दिखते हैं। यहाँ के बोंग गेम्स और लोकल एथलेटिक्स स्पर्धाएं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में खेले जाते हैं, जहाँ ऑक्सीजन की कमी के बावजूद खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ खेलते हैं। त्रिपुरा में मुकना और थांगुर जैसे कुश्ती आधारित खेल स्थानीय युवाओं में खासे लोकप्रिय है। बम्बा और नटुआ जैसे खेल भी विभिन्न जनजातियों में खेले जाते हैं। सिक्किम में याक रेसिंग और थोड़गे जैसे खेल पारंपरिक त्योहारों का हिस्सा हैं। सिक्किम की ऊंचाई और कठोर मौसम के बीच ये खेल खिलाड़ियों की मानसिक और शारीरिक क्षमता की परीक्षा लेते हैं। ये पारंपरिक खेल न केवल सांस्कृतिक पहचान के वाहक हैं, बल्कि खेल भावना, अनुशासन और परिश्रम के बीज भी बोते हैं। यही कारण है कि आज इन राज्यों से निकलकर कई युवा खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर कर रहे हैं। उत्तर पूर्व भारत के खिलाड़ी अब किसी भी खेल मंच पर केवल भाग लेने नहीं जाते, बल्कि पदक जीत कर लौटते हैं। इस क्षेत्र की मेहनती और अनुशासित जीवन शैली ने यहाँ के खिलाड़ियों में एक विशेष मानसिक दृढ़ता पैदा की है, जो खेलों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उत्तर पूर्वी भारत के युवाओं में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना की, जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य स्कूली और कॉलेज स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षण, पोषण, कोचिंग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में खेलो इंडिया केंद्र खोले गए हैं। अकेले मणिपुर में 2023 तक 30 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र खोले जा चुके हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत कई उत्तर पूर्वी खिलाड़ियों को सीधे आर्थिक सहायता मिल रही है। मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और जेरेमी लाल रिनुंगा जैसे खिलाड़ी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय युवा संसाधन केंद्र के माध्यम से भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। मणिपुर सरकार ने राज्य खेल नीति 2020 को लागू किया है, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, सरकारी नौकरी और छात्रवृत्ति दी जाती है। मिजोरम सरकार ने स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। मिजोरम में फुटबॉल के लिए मिजोरम प्रीमियर लीग शुरू की गई है। असम सरकार ने 2023 में मिशन टैलेंट हंट की शुरुआत की थी। गुवाहाटी में सरू सजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एथलेटिक्स, तैराकी, शूटिंग और फुटबॉल के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। नागालैंड सरकार ने यूथ एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स कार्यक्रम चलाया है। कोहिमा में नागालैंड ओलंपिक्स का आयोजन अब नियमित रूप से हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान लागू किया है। वहीं त्रिपुरा सरकार की खेलो त्रिपुरा पहल और सिक्किम सरकार के या गेम्स फेस्टिवल पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। पूर्वोत्तर भारत में भारतीय खेल प्राधिकरण के कई क्षेत्रीय केंद्र भी कार्यरत हैं। इम्फाल और गुवाहाटी के केंद्र वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी और फुटबॉल के लिए प्रमुख माने जाते हैं। जहां एक ओर संसाधन सीमित है, वहीं दूसरी ओर लगन असीमित है। यही कारण है कि भारत की खेल नीति में अब उत्तर पूर्व एक केंद्रीय स्थान ले चुका है। पूर्वोत्तर डायरी डेस्क के लिए सरफिरोजी।

श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम में सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमसे जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए। अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में। अनुमति दें, नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
1: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
0: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
1: President Armani and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4

0: बिलियन पीपल ऑफ इंडिया।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today stated that climate action must be guided by fairness, responsibility and equity. In his special address to the National Assembly of Seychelles, Prime Minister said this is the essence of climate justice. He emphasized that Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive and where international institutions reflect contemporary realities.
3: Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive. We both seek a world where international institutions reflect contemporary realities. We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively, and fairly.
2: Mr. Modi said Seychelles occupies a special place in India's vision for the Indian Ocean and that conviction is stronger than ever. He said the Indian Ocean does not separate India and Seychelles but connects the two countries. He addressed that it will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation.
3: Our vision is captured in the idea of Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent, and we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region.
2: Prime Minister said it is a special honor to stand before everyone as the first Indian Prime Minister to address the National Assembly. He also thanked President and the people of Seychelles for honoring him with Seychelles' highest distinction, the Guardian of the Blue Horizon, earlier in the day. Union ministers Amit Shah, S.

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल। जी हां, शाम का वक्त है और वक्त हो चला है 6:11:14। देखिए, शाम का वक्त है और ये जो समय होता है ये आज क्योंकि रविवार है तो अपने परिवार के साथ बैठकर बहुत सारी मस्ती आप कर रहे होंगे। ज़रूर चाय का वक्त तो हो ही चुका है, तो बिना किसी बहुत सारी बातों के आइए पहले शाम की शुरुआत करते हैं। चाय की चुस्की भरिए और किशोरदा की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

जी हाँ, आने वाला पल तो जाने वाला है, लेकिन इसके लिए आपके जीवन में जो पल अभी वर्तमान में चल रहा है उसे मत भूलिए, क्योंकि पल और ये जिंदगी और ये जो सफर है जिस पर हम सभी चल रहे हैं बहुत मुश्किल से मिलता है।

0: बलं विधाय भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना देशस्य नागरिकाणां प्रति कार्तज्ञ भावं ज्ञापितम्। यतोहि जनैः स्वर्णक्रयणं विदेशयात्रा च किञ्चित् कालं यावत् स्थगिता। सेशेल्स देशस्य विक्टोरिया नगरे आयोजितायाः प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तायाः अनन्तरं भारत सेशेल्स देशयोर् मध्ये स्वास्थ्यं वित्तं समेत्य अंतरिक्षादि विविध विषयेषु महत्वपूर्ण सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि अभवन्। प्रशासनेन भारतीय नागरिकाः संचेतिताः यत् ते सर्वेषाम् आवश्यकानां यात्रापत्राणां पूर्तिकया विना कैलाश मानसरोवर यात्रां न आरभेरन्। पश्चिम एशिया देशे सुरक्षा स्थितिः तीव्र गत्या अपक्षीयते, यत्र संयुक्त राज्य अमेरिका ईरानः उभावपि परस्परं नूतनानि सैन्य आक्रमणानि अकुरुताम्। अपि च आईसीसी महिला T20 विश्व कप स्पर्धा मालिकायां भारतीय महिला दलम् अद्य लंडन नगरे ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्ट। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य सविशेषं प्रत्यपादयत् यत् भारतेन जून मासे वैमानिकी क्षेत्रे एका महती सफलता अर्जिता, यत्र स्वदेश निर्मितस्य मेक इन इंडिया C-295 सैन्य परिवहन विमानस्य प्रथमं परीक्षण उड्डयनं सफलतापूर्वकं सुसंपन्नम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनान् संबोधयन् प्रधानमन्त्रिणा इयं सूचना प्रख्यापिता यत् सम्प्रति एतादृशानि 44 विमानानि भारतदेशे एव विनिर्मीयन्ते।
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है।

0: ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदिना गदितं यत् देशे अन्ये केचन महत्वपूर्णाः प्रयासाः विधीयन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे देहल्यां स्थितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा साइंस इत्यादिषु आधुनिक विषयेषु बीटेक पाठ्यक्रमस्य शुभारंभं विदधाति।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी सहर्षम न्यगादीत यत् अद्य भारतीय संस्कृतिः विश्वस्मिन् हि विश्वे प्रसरति। श्री मोदी गौरवान्वितः अस्ति यत् भारतेन अस्मिन् मासे देशस्य सुरक्षायाः आत्मनिर्भरतायाः च क्षेत्रे महती सफलता समर्जिता। सः कोलकाता नगरे आयोजितम् एकं नौसेना संबंधी कार्यक्रमं संबोधितवान्, यत्र INS दुनागिरी, INS संशोधक, INS अग्रयश्च भारतीय नौसेनायाः क्षेत्रे समाविष्टाः। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति।
0: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: मोदिना अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य अपि उल्लेखो विहितः। तेन अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन प्रतियोगितायाः विषये कथितं यत् अस्यां भारतेन 2,100 स्वर्ण पदकैः सह आहत्य 14,100 पदकानि विजितानि। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यत् राष्ट्रनिर्माणे जनसहभागितायाः शक्तिः भारतस्य कृते एका महती सम्पत्तिः वर्तते।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: अनेन सहैव श्रीमोदिना प्रोदीरितं यत् आगामी गणेशोत्सवाय गणपति बप्पा भगवतः प्रतिमा अनिवार्य रूपेण अस्यैव देशस्य मृत्तिकायाः भवेत्, सा च स्थानीय कुम्भकारैः शिल्पिभिः विनिर्मिता स्यात्। तेन मूर्ति निर्मातारः अपि अनुरुद्धाः यत् ते मृण्मय मूर्तीणां निर्माणाय एव प्राथमिकतां दद्युः। स्वीय सम्बोधनस्य चरमे सोपाने प्रधानमन्त्रिणा जल संरक्षणस्य विषये च बलं प्रदत्तम्। तेन कथितं यत् वर्षाजलस्य एकैकोऽपि बिन्दुः संरक्षणीयः वर्तते। श्रीमोदिना विशेषरूपेण गदितं यत् जल संरक्षणार्थं कैच द रेन अभियानस्य वेगः मन्दो न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी च अद्य अपराह्णे विक्टोरिया नगरे द्विपक्षीय वार्ताम् अकुरुताम्। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सहयोगस्य सम्पूर्ण क्षेत्राणां समीक्षां कृतवन्तौ। सहैव पारस्परिकहितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च स्वस्व मनोगतं विनिमयी कृतवन्तौ।

0: Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Sunday, we will also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us with your mutual fund related queries, you can call us on 2331 4444 2371 0481 and 2371 7106, and of course do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है श्रोताओं, और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331 4444, 2371 0481 और 2371 7106. श्रोता, इससे पहले एसटीडी कोड भी डायल करें आज की खबरों पर चर्चा करने के लिए, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी. स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन.
2: जी, धन्यवाद.
1: श्रोताओं, तब तक आप हमें कॉल मिलाइए जब तक हम आपको सुनाते हैं हेडलाइंस.
0: थैंक यू प्राची. Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to skies. Indian Seychelles sign agreements in various fields including agriculture and finance. And in bullion market, gold and silver prices extend losses last week.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत समुद्र से लेकर आकाश तक तेजी से सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है. भारत और सेशेल्स ने कृषि और वित्त समेत कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, और पिछले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई.
0: And before we begin the program, here is an important piece of announcement for our listeners. The

0: Views and opinions expressed by our experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आज आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित करते हुए बताया कि जून में भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की जब मेड इन इंडिया C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की।
2: ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी की ताकत भारत के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव को देखते हुए जब उन्होंने देशवासियों से कुछ बातों पर ध्यान देने का आग्रह किया तो एक बार फिर ये जनभागीदारी देखने को मिली।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। इनका नाम है जगदीश और ये है नोएडा से। जगदीश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए। जगदीश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
0: Till the time there seems to be some kind of a technical issue here and we will get back to Jagdish as and when that issue is resolved. In the meanwhile, Sneha, let's begin with, you know, we heard the Prime Minister, Mr. Modi, today talking about how India has achieved major success in the aviation sector in June. So when, you know, and this is defense, he also spoke about the defense sector. So from an investor's point of view, what would you say about, you know, the defense sector, how important or how can, you know, how rosy is the picture right now for the defense sector?
3: Right. Before we talk about from an investor standpoint, I would say from an Indian standpoint, such, you know, evolutions are always welcome and should be looked at that way. Now, coming to your personal finance aspect, as you know, it is often seen that every new development adds up to every kind of portfolio or stock related to that particular company, yes, sector, segment, and that is where the role of having a diversified portfolio kicks right in. So stay invested in, you know, categories like multi-cap, flexi-cap to get hands on every kind of development that is that our nation is making way for you, because having ownership to such companies actually gives you that kind of feeling that, you know, you are also getting a part of a share in that particular development.
0: And you're part of the progress that the country is making.
3: Absolutely.
1: Aur is beech Delhi se hamare saath Yogesh jud rahe hain. Yogesh ji, karyakram mein aapka abhinandan. कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: जी जी, आप सभी को नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि जैसे अक्सर लोग ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ दो लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं, क्या म्यूचुअल फंड के अंदर भी ऐसे ज्वाइंट अकाउंट खोला जा सकता है जिसमें दो पैन कार्ड से दो इन्वेस्टर एक ही फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, और उस पर अगर वो खुले रखे तो उस पर टैक्सेशन किस तरह का लागू होता है? दूसरा मेरा सवाल ये है कि SBI स्मॉल कैप फंड इससे बड़े परेशान हो गए, इसका क्या करा जाए? इसको भी रखिए कि इसको फिक्स कर दें या इसको होल्ड करें?
3: जी योगेश जी, जहाँ तक आपका पहला सवाल की बात है कि ज्वाइंट अकाउंट हम खोल सकते हैं नहीं म्यूचुअल फंड्स में, तो हम बिल्कुल खोल सकते हैं। आप जब AMC के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक्चुअली आपको ऑप्शन देता है कि आप सिंगल होल्डिंग चाहते हैं, मतलब जिसमें एक ही पर्सन का नाम रहता है, या फिर आप ज्वाइंट होल्डिंग चाहते हैं जिसमें आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ऐड कर सकते हैं। और जो आपका दूसरा सवाल है SBI स्मॉल कैप के बारे में, तो इस फंड का कुछ दो तीन साल से प्रदर्शन थोड़ा ढीला रहा रहा है, अपने बेंचमार्क को बीट करने के लिए इसको थोड़ी मुश्किलें हो रही है, मेरा

0: सजेशन ये रहेगा कि अगर आप इसमें SIPs कर रहे हैं तो आप उनको जरूर पॉज कर दीजिए और इंश्योर करिए कि आपके स्मॉल कैप एलोकेशन का सिर्फ यही एक हिस्सा नहीं है, आप दूसरा भी एक स्मॉल कैप पोर्टफोलियो, दो स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज में अपनी एलोकेशन को डिवाइड करिए जो आप इसमें कर रहे थे। इंश्योर यही करना चाहिए कि ये फंड एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है काफ़ी इन्वेस्टर्स की जर्नी में, बिकॉज इसका प्रदर्शन पहले के टाइम पे अच्छा रहा है। हर एक अच्छे फंड का बुरा वक्त आता है, इसका बुरा वक्त थोड़े लंबे समय तक चल गया है, तो इसलिए इन्वेस्टर्स का पेशेंस भी काफ़ी टेस्ट हो गया है। तो हमें अपने लेवल पे यही करना चाहिए कि हम इसमें और इन्वेस्ट ना करें और दूसरे स्मॉल कैप्स की तरफ देखें।
1: स्नेहा, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू नो दैट इफ यू हैव अ जॉइंट, इफ यू आर इन्वेस्टिंग जॉइंटली इन अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, व्हाट आर द रूल्स फॉर टैक्सेशन?
0: एज फार एज माई नॉलेज गोज इन terms of the holding aspect impacting any kind of taxation, I feel that does not really interfere with if you are making a capital gain from a particular mutual fund. अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं, आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहे हैं, तो जो आपका टैक्स का रेट रहता है वो 12.5%
1: नहीं, मेरे ख्याल से ये जानना चाहते थे कि अगर दो लोग मिलकर एक, जैसे मैं फर्स्ट अगर होल्डर हूँ, मेरे साथ कोई और सेकंड होल्डर है, तो जब टैक्सेशन होगा तो आई थिंक दैट इज ऑलवेज फॉर द फर्स्ट पर्सन की लायबिलिटी, राइट? ओके, लेट्स टेक द कॉल फ्रॉम आवर नेक्स्ट कॉलर। सुभाष हैज जॉइंड अस फ्रॉम फरीदाबाद। सुभाष, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी नमस्ते, सवाल पूछे।
2: मैडम, मैं ये पूछना चाहता था कि ये FIIs को गवर्नमेंट ने कुछ ये कैपिटल गेन टैक्स में रिबेट दिया है अभी, तो ये मैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं दे रही रिबेट ये कैपिटल गेन टैक्स में?
0: सुभाष जी, इसका जवाब तो आपको गवर्नमेंट से ही लेना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पर एक एस्पेक्ट आपके दिमाग में डालना चाहूँगी कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये रिबेट के माध्यम से वो और पैसा हमारे मार्केट में रहते हैं, इसका फ़ायदा डायरेक्टली एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर्स को ही होता है, हमारे नेशन को ही होता है। इसलिए कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी फ़ायदेमंद रहते हैं, कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे इक्विटी टैक्सेशन की, तो उसमें 1.25 लाख के बियॉन्ड ही आप पे टैक्स लगता है। अब ये वाले जो एस्पेक्ट्स हैं ये एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए हैं, और कुछ ऐसे ही बेनिफिट्स आप बाहर के इन्वेस्टर्स को भी देते हैं ताकि वो हमारी ही बढ़ोतरी में एक तरीके से
3: साझेदार बने।
0: बिल्कुल।
3: मुंबई से हमारे साथ रत्नाकर जुड़ रहे हैं। रत्नाकर जी, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: हेलो, गुड इवनिंग मैडम। मेरा सवाल है कि ये जो महिंद्रा मैनुलाइफ फ्लेक्सी कैप फंड है, वो मेरे पास मोर देन 3-4 ईयर से है, 4 साल हो गए, तो उसमें 8% प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे केस में जो 4-5 साल हो गए और 8-9% प्रॉफिट है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड से बाहर होना, रिडक्शन करना अच्छा रहेगा क्या? ये एक सवाल है। और दूसरा, डिफेंस फंड में, डिफेंस के कौन से म्यूचुअल फंड है उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? थैंक यू।
1: Before Sneha, you answer this question, let me just share with all our listeners that do remember, listeners, that we do not answer company-specific, mutual fund-specific, you know, questions. If you have a generic question regarding mutual funds in general, then yes, of course, do share your questions with us. But we will not be giving you answers for specific mutual funds. So I think, Sneha, you can hear answer. You saying that if they have invested in a fund for about 3-4 years and they're getting a profit between 8-9%, you know, so what is the how to proceed further?
0: राइट। सो अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट में हैं फॉर 3-4 ईयर्स और आपको प्रॉफिट, हम यहाँ बात कर रहे हैं 8% का, 8% ऐसे ही नहीं मिल जाता है, आप उसमें लगे रहते हैं तभी आपको वो मिलता है। तो रत्नाकर जी से मेरी सलाह ये रहेगी कि जब भी कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जहाँ पे आपके अकॉर्डिंग 4 साल ही हुए और आपको जो रिटर्न चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो अगर वो पैसा आपको चाहिए नहीं तो बिल्कुल आप उस फंड में बने रहिए या फिर उस इन्वेस्टमेंट में बने रहिए, क्योंकि फ़ायदा बढ़ता तभी है जब आप उसको ज्यादा समय देते हैं। तो अगर उस पैसे की आवश्यकता नहीं है तो आप उसमें लगे रहिए। और जैसे हम जनरली बात करते हैं कि बस इतना इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी टाइप ऑफ फंड आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ी एलोकेशन ना बन जाए, क्योंकि फिर उसके उतार चढ़ाव का एक बहुत भारी आपके पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट रहता है। सो उससे जरा हमें बचना चाहिए।
1: इन्होंने वैसे डिफेंस पर्टिकुलर डिफेंस फंड्स की भी बात की थी, बट आई थिंक यू कैन टेल हिम अबाउट हाउ whether it's the right time and you know like we were discussing at the beginning of the program for defense right. mutual funds
0: so ratnakar ji aap isko is nazariye se dekh sakte hain ki jo ek category hoti hai diversified investments ki jis jaise flexi cap ya multi cap categories in categories mein defense

0: स्टॉक्स का एक्सपोजर फंड मैनेजर अपने अपने नॉलेज के हिसाब से रखते ही हैं, तो उनमें आपको ऑलरेडी ये एक्सपोजर्स मिलते ही हैं। बट अगर आपका एक बिलीफ है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में आप ज़्यादा एलोकेशन रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में आपको हर थीम हर सेक्टर के लिए एक्सपोजर मिल जाता है। बट बात वहीं आ जाती है कि डाइवर्सिफिकेशन का ज़रा हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी टाइप की कोई भी सेक्टर या थीम स्पेसिफिक एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो को ओवरटेक ना कर ले, तो हम उसे 5-10% ही रखें।
1: सारा खेल यहाँ कंपाउंडिंग का है।
0: बिल्कुल।
1: आगे बढ़ते हैं, नितिन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार।
2: मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम बैंकों में अपना एफडी कराते हैं, तो वहाँ हमारे ये सजेशन देते हैं कि हम आपकी मीटिंग करा देते हैं म्यूचुअल फंड वालों से, तो वहाँ भी सेफ रहेगा और एफडी तो सेफ रहती है, तो आपकी राय से क्या हमें म्यूचुअल फंड में एंट्री कर लेनी चाहिए? बैंक के ब्रांचों के मीटिंग से हमें समझाएंगे कि आप ऐसा करिए ऐसा करिए, कितना बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में और एफडी में तो बैंक में तो।
0: जी नितिन जी, आपने जो सवाल पूछा है ये मेरे हिसाब से हर इंडियन का सवाल होता है, क्योंकि हमारी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पेरेंट्स भी जो करवाते हैं ना, वो हमेशा एक फिक्स डिपॉजिट ही रहता है कि बैंक में ये वाला जो पर्सन है हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे एक फेस अटैच्ड होता है। और फिर एफडी जिस टाइप का प्रोडक्ट है जो आपको एक फिक्स्ड इनकम या रिटर्न दे देता है, उसका आपको एक फायदा दिखता है। तो मेरा कहना ये रहेगा, जब तक आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक छोटे रिटर्न के लिए सेटल हो रहे हैं और आप एम कर रहे हैं कि मतलब आप इसी में ही अपनी खुशी या फिर अपना वेल्थ जनरेशन का एस्पेक्ट देख रहे हैं। बट फायदेमंद ये रहता है कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट लिंक्ड होता है, अब वहाँ पे फायदा भी होता है नुकसान भी होता है, इसलिए बेटर ये रहता है कि हम छोटे छोटे SIP के माध्यम से ये वाले काइंड ऑफ एक्सपोजर्स अपने पोर्टफोलियो में बिल्ड करें। अब व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग वाया अ बैंक ब्रांच, तो हमें आप बिल्कुल वो मीटिंग करिए, बट इंश्योर बस इतना करना होता है कि वो आपको एक यूलिप नहीं बेच रहे हैं, तो आपको जो भी वो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं या जो भी फंड के नाम दिखा रहे हैं, आप ये उनसे बिल्कुल डायरेक्टली पूछिए कि क्या ये यूलिप है। इसका फायदे का सौदा जो एक्चुअली होता है वो बैंक्स के लिए होता है, हमारे लिए नहीं होता है। तो आप बस इतना इंश्योर करिए दैट यू आर नॉट फॉलिंग फॉर अ फंड जिसके साथ साथ वो आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे आप जो चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए नहीं आ रहे हैं, आप यहाँ पे आ रहे हैं कि आप एक डेट काइंड ऑफ प्रोडक्ट में थे विच इज FD। अब आप चाह रहे हैं कि आप डेट के बियॉन्ड जाएं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स में हम हाइब्रिड फंड्स कहते हैं। तो जब वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि आप हमें अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के एक दो फंड से शुरुआत करवाइए, और आप इंश्योर करिए कि वो आपको वही वाले फंड्स दे रहे हैं, बिकॉज यूलिप्स जो होती हैं वो आपको एक ही तरीके की गारंटी देती है कि कुछ तो वो आपको इंश्योरेंस भी दे देंगे, इन्वेस्टमेंट भी दे देंगे, जब जरूरत आती है तब आपको नहीं पता कि ये दोनों आपको मिल सकते हैं या नहीं, क्योंकि इनमें एक तरीके का लॉक इन रहता है जो एक मिनिमम 5 साल का रहता है। इसके बहुत वेरिएंट्स आ चुके हैं, अलग अलग तरीके के लॉक इन आ चुके हैं, हो सकता है आप मिड इन्वेस्टमेंट वो निकाल पाएं। बट कहने की बात बस इतनी है, जब भी कोई दो चीज़ों को जबरदस्ती मिक्स किया जाता है ना, तो जब उसकी असली में जरूरत होती है वो आपको पता नहीं है कि मिल सकती है या नहीं। तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स आप इंश्योर करिए वो आपको दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि हम जब इन स्टॉक्स की ओनरशिप लेते हैं तब आपको लगता है कि आप नेशन की डेवलपमेंट का पार्ट हैं, तो हाइब्रिड फंड से शुरुआत करिए आप।
3: जी, लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। विमला इज कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली। विमला, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, म्यूचुअल फंड में जो यूनिट्स को फ्रीज करके लॉक करने का ऑप्शन आया है, उससे सेफ्टी कितनी बढ़ जाएगी?
3: अपना सवाल आप प्लीज रिपीट करेंगे। आप कह रही हैं कि म्यूचुअल फंड में एक लॉक इन पीरियड है, उससे हमारी सेफ्टी कितनी बढ़ेगी? आई थिंक दैट इज द जिस्ट ऑफ व्हाट शी इज सेइंग, दैट देयर इज सम काइंड ऑफ अ लॉक इन म्यूचुअल फंड्स ऑप्शन, एंड देन शी वांट्स टू नो कि whether you know it's it increases it's a safer it basically as an investor is it good for her an investor.
0: So Vimla ji, agar hum aapka sawal sahi samajh paaye hain ki aap janna cha rahi hain ki lock in se kitna fayda rehta hai, to mutual funds mein ek hi category hai jahan pe lock in currently exist karta hai, jise tax saving ELSS category kaha jata hai. Lock in is particular category mein aapko help karta hai ki aap जब मार्केट गिर रही है, आपने इसमें पैसे डाले हुए हैं, तो आप डर के मारे उसे निकाल ना लें। तो एक जब डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं आप, तो एक इनमें ELSS में 3 साल

0: लॉक इन रहते हैं और ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स रहते हैं, तो 3 साल के लिए इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छा टाइम पीरियड माना जाता है. एक्चुअली वो 5 या बियॉन्ड होता है, बट कम से कम आप 3 साल के लिए भी अगर लगे रहते हैं तो ये लॉक इन आपको डिसिप्लिन में हेल्प करता है.
1: जयपुर से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ रहे हैं. जितेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: मैडम, दो प्रश्न है. एक तो जैसे क्लिक एनर्जी कोई फंड आया हुआ है, मतलब फंड लगाए मोतीलाल ओसवाल ने क्लीन एनर्जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं.
1: और फंड विशेष जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा
2: उसमें. मैं महिंद्रा मनु लाइफ में एक दूसरा मल्टी कैप और अलग फंड हाउस में लेना चाहते हैं, तो ठीक है क्या? तो अगर ठीक है तो बता
3: दें. जी जी, जितेंद्र जी, आपके एक तो सवाल में हमारे पास शोर बहुत आ रहा था. दूसरी बात, जैसे भी हमने कार्यक्रम में शुरू में बताया था कि हम स्पेसिफिक फंड्स से जुड़े सवालों के हम जवाब नहीं दे सकते हैं. अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बात जनरल करनी है तो आप दे सकते हैं. वैसे जनरली इफ आई जस्ट आस्क यू वन क्वेश्चन, यू नो स्नेहा, दैट बिफोर वी टेक द नेक्स्ट न्यूज, दैट व्हाइल वी टॉकिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यू नो देयर आर सम पीपल हु बिलीव दैट when the markets are low, that's the right time to enter. Some people feel that when the markets are at peak, they will give you better return. What is your opinion on that?
4: और मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है वो एक तरीके से शेयर बाजार की तरह वो उसे उसी नज़र से देखते हैं कि हमारा पैसा डूब जाएगा. तो उस पर ये जो मिथ्या है, स्नेहा आप इसे भी इस पर भी से पर्दा उठाइए.
0: जी,
3: तो स्नेहा सवाल जरूर करता, बट इसके बीच हमारे साथ दूसरे एक श्रोता जुड़ गए हैं. दीपक इज कॉलिंग फ्रॉम सोनीपत. दीपक, प्लीज वेलकम टू मार्केट मंथ, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
5: मैम गुड इवनिंग. मैम
3: जी गुड इवनिंग, सवाल पूछें.
5: मैम मेरा सवाल है, मेरे कुछ पैसा डेप्ट म्यूचुअल फंड में पड़ा है, SBI लिक्विड फंड में, 15-1 लाख रुपए है, और मेरी 4 SIP चल रही है. SBI में ही एक स्मॉल कैप है, एक कॉन्ट्रा है, एक निफ्टी 50 है, और एक और कौन सी है, मतलब मिड कैप में है, फ्लेक्सी है एक. ठीक है, तो एक तो मेरा सारा का सारा ये जो चल रहा है ये SBI के फंड हाउस में से ही चल रहा है, तो एक तो एक कितना सेफ है, और 3,000 की एक गोल्ड और सिल्वर में भी चल रही है, तो एक कितना सेफ है मेरे लिए, और इसमें मैं क्या चेंज कर सकता हूँ अगर मुझे करना हो तो, सारा SBI फंड हाउस में ही है.
0: बिल्कुल दीपक जी, मुझे आपकी परेशानी आपके प्रश्न में ही दिख रही है कि आपको खुद पता है कि आप एक्चुअली एक ही AMC में इन्वेस्टेड हैं. अब क्योंकि आप सोचिए कि इससे डर आपको ऑलरेडी है, इसलिए इसका जवाब इसी में है कि आप और एक दो AMCs में इन्वेस्ट करें ताकि आपका ये जो डर है वो कम हो पाए. और कभी ऐसा होता है कि कुछ AMC लेवल ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर उनके सारे ही इक्विटी फंड्स अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट पोर्टफोलियो में एक ऐसा हो जाता है कि आपको काफ़ी निराशाजनक एक्सपीरियंस हो जाता है. जबकि ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स का एक्सपीरियंस लंबे समय में हमने देखा है कि अच्छा ही रहता है, आप अपने गोल्स उससे अचीव कर पाते हैं. तो मेरा आंसर यही रहेगा आपके लिए, या सजेशन यही रहेगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स जिसमें जो AMC आप SBI कह रहे हैं उसके बियॉन्ड भी कुछ AMCs में इन्वेस्ट करें. अब वो आप अगर आपके पास सरप्लस है आप नया फंड का चुनाव करके कर सकते हैं, या फिर जो आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उसमें अपनी SIPs पॉज करके वो पैसा अपने किसी और फंड में डाल सकते हैं.
3: राइट,
4: अपने सवाल पर वापस लौटते हैं अनुभव
3: जी. जरूर,
4: मैं और अनुभव आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि किस तरीके से ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो शेयर मार्केट की तरह नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में जिनकी फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, जो रोज़मर्रा में नहीं जान पाते हैं इन चीज़ों को, उन्हें ये लगता है कि हम अगर इसमें निवेश करेंगे तो शायद हमारा पैसा डूब जाए. लेकिन म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से अलग है शेयर मार्केट से और किस तरीके से उसी में समाहित है, ये भी आप हमें बताएं.
0: बिल्कुल, तो वो किस तरीके से अलग है वो उसके नाम में ही हो जाता है कि वो कह रहे हैं एक तरीके का म्यूचुअल सामूहिक फंड है ये, जिसका मतलब ये हो जाता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स एक ही फंड में रहकर डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाते हैं. यहाँ पे मैं इक्विटी फंड्स की बात कर रही हूँ. तो वाइल आप इन्वेस्टेड हैं शेयर बाजार में, बट आप इस तरीके से इन्वेस्टेड हैं कि आप एक ही कंपनी के उतार चढ़ाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हो जाता है कि जब कोई एक कंपनी नीचे जा रही है आपका सारा पैसा नहीं डूब रहा है, क्योंकि फंड ने एक ही कंपनी में ना करके डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स की ओनरशिप आपको दी हुई है, और ये मिलती भी आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट के थ्रू है वाया फंड मैनेजर. तो इस तरीके से हम डिफरेंट हो जाते हैं.
4: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं
3: जी. लेट्स टेक द नेक्स्ट न्यूज. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स पैट्रिक हर्मिनी हेल्ड बायलैटरल टॉक्स इन विक्टोरिया दिस आफ्टरनून. बोथ लीडर्स रिव्यूड द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन

0: exchanged views on regional and international issues of mutual interest. Several agreements were exchanged in a range of fields, including agriculture, finance, space, and health. Addressing the joint press meet, Prime Minister Modi said both India and Seychelles will continue to explore new opportunities for the industries of the two countries. He added that work will also be done to enhance connectivity between the two nations. Prime Minister Modi said digital technology is an effective medium to bridge the distance between the two countries. He said India's successful experience in digital public infrastructure will be shared with Seychelles. He expressed happiness that today an MOU is being signed to implement UPI in Seychelles.
1: और भोपाल से हमारे साथ शंकर जुड़ रहे हैं. शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: नमस्ते मार्केट मंत्री टीम. नमस्ते नेहा मैडम. मैम, ये एक्टिव मोमेंटम फंड, व्हाई आर दे डूइंग सो वेल? क्या इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए? स्मॉल कैप की जगह अभी थोड़ा इससे लगाएं. एक्टिव मोमेंटम फंड इसी दौरान अच्छा करेंगे, क्योंकि कुछ स्टॉक बढ़ते रहते हैं, कुछ स्टॉक नहीं बढ़ते हैं, तो उसमें वो अच्छा कर रहे हैं, या फिर हर टाइम में जैसे मार्केट बढ़ने की तरफ चलने लगा है, FII का पैसा आने लगा है, तो उसमें भी वो अच्छा करेंगे, या फ्लेक्सी कैप की तरफ ही ध्यान दें, या थोड़ा सा पैसा एक्टिव मोमेंटम फंड जैसे मोतीलाल का है उसमें लगाया जाए, या कोटक के भी एक्टिव मोमेंटम फंड, इसके बारे में बताइए प्लीज. थैंक यू.
3: सर, जहाँ पे भी ये शब्द आ जाता है मोमेंटम, तो उसमें एक तरीके का उतार चढ़ाव का जो एस्पेक्ट होता है ना, वो बिल्ड हो जाता है, क्योंकि मोमेंटम फंड्स यूजुअली उनमें इन्वेस्ट करते हैं, इस टाइप की स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं कि जो स्टॉक वो बिलीव कर रहे हैं कि अब रैली ही करेगा, और ऑलरेडी रैली कर चुका है और अब आगे रैली ही करेगा, तो इसका यूज केस इस तरीके से हो जाता है कि जब मार्केट इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के फेवर में नहीं है, ऐसा कोई स्टॉक आपको नहीं मिल पा रहा है, उस टाइम पे आपको जो एक रेड दिखता है अपने पोर्टफोलियो में, वो काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है. तो आपने जैसे कहा कि हम फ्लेक्सी कैप में ही इन्वेस्टेड रहें या थोड़ा सा इन फंड्स में करें, तो जैसे कि हम अभी एक पहले श्रोता को कह रहे थे कि अगर आप ऐसी किसी स्ट्रैटेजी में बिलीफ रखते हैं, तो आप इंश्योर करिए दैट योर कोर पोर्टफोलियो इज स्टिल इन डाइवर्सिफाइड यू नो फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप कैटेगरीज, और ऐसे टाइप के एक्सपोजर्स आप लिमिटेड रखें इन योर ओवरऑल पोर्टफोलियो टू अ लिमिट ऑफ 5-10%.
0: नेक्स्ट कॉलर इज वीरेंद्र फ्रॉम कर्नाटका. वीरेंद्र, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, एंड आई वुड यू नो रिक्वेस्ट यू टू कीप योर क्वेश्चन शॉर्ट.
4: मैडम
0: जी बताएं.
4: नेहा मैडम,
3: हाँ जी,
4: आई एम डूइंग SIP इन 4 म्यूचुअल फंड्स राइट नाउ. HDFC, HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज, परक परक फ्लेक्सी कैप, देन बंधन स्मॉल कैप एंड LDS मिड कैप. इज इट डाइवर्सिफाइड इनफ?
3: Right. Virendra, seems like your portfolio is quite diversified because you have a core portfolio built from flexi cap kind of categories. Even BAF is a diversified strategy, and it ensures that you get both asset classes, equity as well as debt. And while you can, you are having a satellite allocation from mid and small cap. So yeah, seems like you're good to go.
1: आगे बढ़ते हैं. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI ने जून में अब तक 53,022 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेच दिए हैं. हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में FPI की चुनिंदा खरीदारी के कारण बिकवाली का दबाव काफी कम हुआ है. इस बीच सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस महीने की शुरुआत में विदेशी निवेशकों की रुचि भारतीय बाजार में फिर से लाने के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार को मजबूत करने और ऋण बाजार को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. इस कारण जून में भारतीय ऋण बाजार में रिकॉर्ड निवेश आया है. डिपॉजिटरी डेटा के अनुसार जून में अब तक डेट जनरल लिमिट में 24,518 करोड़ रुपए का निवेश आया है. पिछले हफ्ते सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रही. सप्ताह के पहले तीन दिनों में कीमतों में गिरावट आई. सोना नवंबर 2025 के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया था, लेकिन अमरीकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों के कारण बाजार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा और सप्ताह के अंत में इसमें सुधार देखा गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना वायदा सप्ताह में 2.1% गिरकर 1,44,162 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी वायदा कारोबार में लगभग 6.5% गिरकर 2,23,472 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. कॉमेक्स में अगस्त अनुबंध वाला सोना वायदा कारोबार में सप्ताह के दौरान 3.5% लुढ़क कर लगभग $4,096 प्रति ट्राई आउंस पर बंद हुआ. वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी वायदा कारोबार में सप्ताह के दौरान लगभग 10% गिरकर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चारू सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स के राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान है और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
1: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
0: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर के द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
1: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमाइनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी मजबूती है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम

0: मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा। श्री मोदी ने लोगों से स्वर्ण खरीद से बचने, गैर जरूरी विदेश यात्रा टालने और कुछ समय के लिए कार पूलिंग की अपील की थी। उन्होंने किसानों से रसायन मुक्त कृषि अपनाने, कृषि भूमि का संरक्षण करने और प्राकृतिक उर्वरकों को अधिकतम उपयोग करने को भी कहा था। प्रधानमंत्री ने अपनी अपील का समर्थन और सहयोग करने के लिए नागरिकों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। ये कार्रवाई शुक्रवार को होर्मुज़ जलडमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। अगले ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का ये अंतिम मुकाबला है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। भारत के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताज़ा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 87 रन बना लिए। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today stated that climate action must be guided by fairness, responsibility and equity. In his special address to the National Assembly of Seychelles, Prime Minister said this is the essence of climate justice. He emphasized that Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive and where international institutions reflect contemporary realities.
2: Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive. We both seek a world where international institutions reflect contemporary realities. We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively and fairly.
1: Mr. Modi said Seychelles occupies a special place in India's vision for the Indian Ocean and that conviction is stronger than ever. He said the Indian Ocean does not separate Indian Seychelles but connects the two countries. He added that it will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation.
2: Our vision is captured in the idea of Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent, and we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region.
1: Prime Minister said it is a special honor to stand before everyone as the first Indian Prime Minister to address the National Assembly. He also thanked President and the people of Seychelles for honoring him with Seychelles' highest distinction, the Guardian of the Blue Horizon, earlier in the day. Prime Minister Modi has said that the power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, Mr. Modi said this spirit was once again evident after he appealed to citizens to adopt certain measures in view of the prevailing warlike situation in West Asia. Mr. Modi had urged people to avoid buying gold, postpone non-essential foreign travel, and use carpooling for some time.
3: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 135वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: शेखर जी, हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महीने के आखिर में होने वाला मन की बात कार्यक्रम कई तरह के विषयों को कवर करता है, तो आज के संबोधन की आपके लिए मुख्य बातें क्या थी?
2: प्रधानमंत्री ने देश के सामने कई बातें रखी, उसमें खास करके कैसा ये महीना में कई उपलब्धियां भारत को मिला है, किस तरह हमारे सुरक्षा के लिए क्या क्या नई चीजें हुई है, और साथ में जो विश्व योग दिवस जो मनाया गया जून 21 को, उसको भी उन्होंने जिक्र किया है। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि ये देश जब संकटे आते हैं किस तरह एकजुट होके हम कैसे सामना करते हैं, खास करके जब खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के बाद जिस तरह संकट पैदा हुआ, उनकी आह्वान को सुनकर किस तरह काम किया, उसको भी उन्होंने जिक्र किया है। अनुभव
1: जी, आपने जैसे कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा की बात की, जून के महीने में जो हमारी उपलब्धियां थी उनको भी गिनवाया, तो डिफेंस सेक्टर की उपलब्धियों के बारे में प्रधानमंत्री ने बात की और उन्होंने बताया कि कैसे समुद्र से लेकर आसमान तक हमारा भारत आज ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। तो सबसे पहले चलिए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
3: INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं।
1: शेखर जी, भारत की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस के लिए रक्षा क्षेत्र की जो ये उपलब्धियां प्रधानमंत्री ने बताई हैं, ये कितनी अहम हैं?
2: नौसेना को लेकर जो बातें प्रधानमंत्री ने सामने रखा, भारत नौसेना के जो आज आत्मनिर्भरता किस तरह बढ़ती जा रही है, खास करके 3 जहाजे जो फ्लीट में शामिल किया गया, उसमें डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सारा कुछ देश के अंदर ही हुआ है। वैसे ही C-295 यानी मेड इन इंडिया वाला जो एयरबस का फ्लाइट है, उसका मेडन फ्लाइट हुआ है और अभी 40 सच यानी 40 वैसे विमान बन रहे हैं। साथ में जो हमारी एरोस्पेस सेक्टर है, उसपे कैसे मीडियम स्केल स्मॉल इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस किस तरह उसपे शामिल हो रहे हैं
1: जी,
2: और जिसकी वजह से आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे हैं, और साथ में हमारी जो डिफेंस रिसर्च है उसका भी कैसे आगे हो रहा है मामला, जिसको इन्होंने बताया है।
1: शेखर जी, देश में स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की बातों में जो दो पहलू थे, एक का तभी आपने जिक्र किया कि इससे कैसे MSME सेक्टर को फायदा हो रहा है और जो रोजगार की जो मौके हैं वो बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने संबोधन था उसमें एक बात और जो भरकर आई, वो थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा मिल रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं?
2: देखिए, जब डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की लक्ष्य रखकर

0: भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उस प्रोजेक्ट्स पे हम देख रहे हैं कि डिफेंस मामले में प्राइवेट सेक्टर को शामिल किया जा रहा है, यानी जितने नए नए जो फैक्ट्रीज आ रहे हैं जिसमें प्राइवेट अपने कैपिटल लगा के और डिफेंस लैब के साथ ज्वाइंट वेंचर भी कई हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज बनेगी तो उसमें स्पेयर पार्ट्स होंगे
1: जी,
0: लोकलाइज्ड कंटेंट होंगे, ये सारी चीजें आप हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने इन्होंने शुरू कर दिया है, जिसके वजह से एक स्कोप बढ़ गया है। और आत्मनिर्भरता का असली मतलब अब वाकई हम देख रहे हैं देश में डिफेंस सेक्टर में।
1: इसके साथ ही आपने विश्व योग दिवस के बारे में बात की थी तो प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में भारत की उपलब्धियों की तारीफ की। जब प्रधानमंत्री इस तरह की उपलब्धियों की बात करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो इस तरह की जो पहचान है वो युवा एथलीटों को किस तरह प्रेरित कर सकती है?
0: जब प्रधानमंत्री ने पहले विश्व योग दिवस के लिए जो इनिशिएटिव लिए, उसके बाद विश्व भर में आप देख रहे हैं, ना केवल जून 21 तारीख को, साल भर लगातार योग का जिस प्रकार पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, सऊदी अरेबिया से लेकर चाइना तक
1: जी,
0: रशिया से लेकर साउथ अफ्रीका तक, आप देख रहे हैं कि अब विश्व भर में योग ना केवल फिटनेस है। और इस बार योग 2500 लोकेशंस पे किया गया था जून 21 तारीख को, जिसमें लोग शामिल हुए। और आपने जिक्र किया ये जो योग आसना चैंपियनशिप हुआ था जिसमें भारत को 114 मेडल्स मिली है, उसमें 102 गोल्ड मेडल्स है। और इस बार भी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने योग दिवस पर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, ये मैसेज यही था कि एज विथ फिटनेस
1: जी,
0: कि जब आपको उम्र बढ़ता जा रहा है आपकी फिटनेस भी बढ़नी चाहिए, जीवन में आपको और भी आनंद मिलेगा और फिटनेस मिलेगा, यही मैसेज था इस बार प्रधानमंत्री का योग दिवस पर।
1: श्री मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ के एक ऐसे परिवार की प्रेरणापद घटना शेयर की। उनके यहाँ एक शादी थी और उन्होंने उस मौके पर अपने गांव के लोगों के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस का इंतजाम किया और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने सरकार की दो बहुत अहम इंश्योरेंस योजनाओं का भी उल्लेख किया। चलिए पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेटकर परिवार रहता है। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपए के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपए का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं।
1: शेखर जी, सरकार की ये जो बीमा योजनाएं, ये तो एक हमने बीमा योजना के बारे में सुना, प्रधानमंत्री ने एक और बीमा योजना की भी उल्लेख किया था, तो ये बीमा योजनाएं समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? और जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ऐसी सरकारी योजनाओं की जानकारी और लोगों से साझा करना क्यों जरूरी है?
0: जो एक परिवार की जो उन्होंने बात किया पेटकर फैमिली का, जो नांदेड़ में, देखिये सब लोग अपनी शादियां धूमधाम से मनाते हैं, काफी पैसा खर्चा कर, लेकिन एक अलग प्रकार से था कि जो गरीब परिवार के लिए बीमा योजना में उनको शामिल करने के लिए जो पहला प्रीमियम देने का जो काम किया, ये इस पे बहुत बड़ी सेंटिमेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि परिवारों में कुछ ना कुछ चैलेंज आता रहता है, कभी कोई दुर्घटना, कभी लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिसीज आ जाता है तो उसके लिए भी खर्चा होता है। तो ऐसे में एक अनोखी तरह से, जो एक प्रकार से आप देख सकते हैं चैरिटी भी है, लेकिन साथ में जिस तरह सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में केवल 20 रुपए एनुअल प्रीमियम में पूरे साल का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 2,00,000 तक, जो 58 करोड़ लोगों को इन्होंने जो उपलब्धि करवाई है उसका भी जिक्र किया। और सबसे बड़ी बात, उस 58 करोड़ पे आप देख रहे हैं कि 28 करोड़ लोग जो है वो महिला है, हमारे माताएं हैं, हमारी बहनों हैं, हमारी बेटियां हैं। और अभी तक इस स्कीम में 3,700 करोड़ का असिस्टेंस दिया गया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और साथ में आप देख रहे हैं बाकी जीवन ज्योति बीमा योजना वो भी चल रहा है, जिसमें भी आप देख रहे हैं कि 2,00,000 का कवर है और प्रीमियम भी ज्यादा नहीं है, 436 है। और इसमें भी कई लोग शामिल हुए, अभी तक कम से कम 27 करोड़ लोग इसमें शामिल हुए। देखिए बीमा कवर बहुत जरूरी है, एक प्रकार से सोशल सुरक्षा है ये।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज के संबोधन में देश के पूर्वोत्तर की भी काफी चर्चा की। उन्होंने असम, नागालैंड और मेघालय में प्रकृति संरक्षण और खेलों से जुड़ी 3 पहलों का जिक्र किया। इसके अलावा भी आप प्रधानमंत्री द्वारा भारत के उस हिस्से पर ध्यान दिलाने को कैसे देखते हैं जिसके बारे में आज भी देश के बाकी हिस्सों को ज्यादा जानकारी नहीं है?

0: प्रधानमंत्री ने असम के उन क्षेत्र की बात की जहां पे पहले अंधविश्वास के कारण हमेशा एक भय रहता है, भाई ये चीजों से हमारी कोई दुर्घटना हो जाएगी, इससे कोई बैड लक आ जाएगी। ऐसे उन्होंने उस गांव की बात की जहां पे हरगिला करके एक बर्ड है जो एक प्रकार से एनवायरनमेंट को क्लीन करता रहता है। जैसे वल्चर को भी लोग कभी कभी मानते हैं कि वो एक कोई अशुभ है, लेकिन उसका भी पर्यावरण में बहुत भूमिका है। नेचर में जितने आप प्रकृति देख रहे हैं सबका कुछ ना कुछ रोल है, एक प्रकार से एक साइकिल बैलेंस करता है
1: जी।
0: तो असम में ये जो पक्षी है हरगिला, ये बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है, लेकिन लोगों को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो सारे एक प्रकार से जैसे वल्चर है, हमारी कौवा भी वही है
1: जी।
0: इसमें यहाँ पे गांव वालों ने खास करके एक बायोलॉजिस्ट की जिन्होंने जिक्र किया, पूर्णिमा देवी बर्मन, उन्होंने एक मुहिम चलाने की एक इनिशिएटिव लिया जिसमें लोगों के अंदर जो भय है, एक अंधविश्वास है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए कोई बुराई हो जाए, उस मानसिकता को बदल के उन्होंने महिलाओं से बात करके पूर्णिमा जी ने, और धीरे धीरे उन्होंने उनको एक कैंपेन में शामिल किया, जिसकी वजह से पहले जब ये बर्ड को देख के मार देते थे
1: जी।
0: आज वहां पे क्या हो रहा है, उस बर्ड की रक्षा हो रही है और जिसके वजह से अंधविश्वास खत्म हो गया और पर्यावरण का सुरक्षा बढ़ना शुरू हो गया। और ये सारे जो सृष्टि है ये सब और मनुष्य का जीवन भी, इसका भी बहुत असर पड़ता है, सुरक्षा देना भी हमारी कर्तव्य बनता है।
1: जैसे मैंने आपसे पूछा कि हमने बात की कि नागालैंड की भी उन्होंने कुछ पहल का जिक्र किया जो खेलों से जुड़ी हुई थी, और उन्होंने मेघालय में जो रूट ब्रिजेस हैं, जो लिविंग ब्रिजेस हैं, उनका भी जिक्र किया। पूर्वोत्तर एक ऐसा क्षेत्र है हमारे देश का जिसके बारे में, जैसा मैंने कहा, आज भी लोगों को बहुत कम जानकारी है। जब प्रधानमंत्री उस क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है।
0: हमें किसी को पता नहीं था कि नागालैंड में एक बेबी लीग है, यानी फुटबॉल हमने सुना है कि फुटबॉल प्रीमियर लीग है, लेकिन नागालैंड में बच्चों की एक फुटबॉल लीग है जिसमें 5 साल से लेकर 10-12 साल तक उनके एक टैलेंट को ये करने के लिए एक लीग चलती है जिसमें कई बच्चे नागालैंड में उसमें शामिल हो जाते हैं। बच्चे मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जिसकी वजह से बच्चों में अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट हुई है।
1: प्रधानमंत्री ने प्राचीन भारतीय परंपरा के बारे में भी बात की जिसे नालंदा यूनिवर्सिटी ने फिर से शुरू किया है। पहले सुनते हैं कि ये कौन सी परंपरा है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने बात की।
2: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। साथियों, भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं।
1: शेखर जी, भी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने भारत में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी की एक पहल की बात की जिससे एक हमारी प्राचीन परंपरा दोबारा चालू हुई है, और उन्होंने कई हजारों किलोमीटर दूर डोमिनिकन रिपब्लिक की एक पहल की बात की। तो अगर हम इन दोनों चीजों को देखा तो इस तरह के जिक्र से भारत की जो एक समृद्ध विरासत है, हमारी जो एंशियंट हेरिटेज है, उससे लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने में कैसे मदद मिलती है।
0: तो ये परंपरा अब रिवाइव हो रही है सरकार की मतलब कोशिश, और दूसरा प्रधानमंत्री का आह्वान, विकसित और विरासत दोनों मिलकर हमें आगे बढ़ना है। इस लक्ष्य लेकर जो बात इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की जिक्र की, खास करके शास्त्र
1: जी,
0: इसका मतलब है कि एक प्रकार से वार्तालाप यानी डायलॉग
1: जी,
0: और ये जो हमारी परंपरा रही है, तो कोई विचार हो, कोई ज्ञान हो, इसको लेकर हम आपस में डिबेट करके एक्सपर्ट्स की एक दूसरे की बात सुनकर उसका आज फिर इसके रिवाइवल हो रहा है। कि एक तो आपने नालंदा यूनिवर्सिटी की जिक्र किया, दूसरा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो है उन्होंने कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ भी काम कर रहे हैं। जैसे अभी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने बीटेक प्रोग्राम शुरू किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे,
1: बिल्कुल
0: डेटा साइंस पे। ये हमेशा माना जाता है कि संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज है जिसमें मैथमेटिकल सॉल्यूशंस, मैथमेटिक्स ये सब लेकर भी कई ये हुई है इसमें। इस तरह की जो इनिशिएटिव्स है इसका अपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
1: शेखर जी, प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम हमेशा प्रेरणादायक संदेशों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों से जुड़ी जानकारी का एक मिश्रण होता है। इसके पीछे क्या सोच है और जो हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, इसे बनाए रखना क्यों जरूरी है?
0: पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं कि ये डायलॉग हर महीने के आखिरी रविवार को जो हो रही है, एक लगता है जैसा प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत रिसर्च होता है, कई बातों को प्रधानमंत्री सामने ले आते, प्रेरणादायक वाले बातें कहते हैं जिससे बहुत लोग उसको फॉलो करके फिर अपनाते हैं उसको। मैं उदाहरण के दे सकता हूँ, आपके स्वस्थ भारत मिशन हो, या आप खादी को प्रमोट करने की बात हो
1: जी,
0: या वाटर कंजर्वेशन हो, पर्यावरण की रक्षा हो, या पशु पक्षियों को गर्मी में पानी का व्यवस्था करने का काम हो, ऐसी कई बातों को प्रधानमंत्री ने अपनी स्टाइल में, इससे बहुत लोगों को जोड़ा है। दूर दूर इलाके में जो परिवर्तन हो रहा है उसको सामने लाके एक एग्जाम्पल के तौर पर देश के सामने पेश किए हैं उन्होंने।
1: शेखर अय्यर जी, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद अनुभव जी।
3: अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 135वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल, कार्यक्रम सांझ ढले में। जी हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आज का सांझ ढले के अंदर हम उन गीतों को, उन हस्तियों को याद करते हैं जो गीत भूले बिसरे हैं, जो शायद हमारे जहन में है लेकिन रोज़ाना की ज़िंदगी में उन्हें सुनना भूल जाते हैं। तो आज का पहला गीत आपके लिए लेकर आई हूँ मैं फिल्म लेकिन से, जिसके बोल लिखे हैं गुलजार साहब ने और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। ये गीत पहले सुनते हैं, बाकी की बातें इस गीत के बाद।

0: जी हाँ, ये गीत आपने सुना फिल्म लेकिन से। आपको बता दें, इस गीत के लिए लता मंगेशकर जी को नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था और साथ ही बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का भी अवार्ड मिला था और साथ ही गुलजार साहब को भी इस लिरिक्स लिखने के लिए बहुत से अवार्ड दिए गए थे।
1: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ, दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
2: 400 से भी ज्यादा आम देखने और खरीदने का सुनहरा

0: खरीदारी का साथ।
1: 3-5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
2: जी हाँ, तो गर्मी के मौसम में अगर आप भी हैं आम के दीवाने तो जरूर जाएं इस महोत्सव में।

जी हाँ, सांझ ढल चुकी है और ऐसी सांझ ढलने के बाद ये बेहद दिल को छू जाने वाले गीत जब हमारे कानों को कानों में जब पड़ते हैं तो वाकई हमारी शाम और भी खूबसूरत बन जाती है ना।

जी हाँ, ये गीत आपने सुना फिल्म जब जब फूल खिले। सन 1965 में आई ये फिल्म लोगों के दिलों पर आज भी राज करती है। गायक थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी, और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने, और गीतकार थे आनंद बख्शी साहब। और पर्दे पर इनकी जोड़ी ने खूब कमाल दिखाया, शशि कपूर और नंदा जी ने। दोस्तों, इस गीत के भाव की अगर हम बात करें तो इसमें हर परदेसी को उड़ते हुए पंछी की तरह बताया गया है, जिसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। और बात भी ठीक है, आखिर हम सब एक परदेसी पंछियों की तरह ही तो है। आज यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे, और बस जिंदगी का ये जो सफर है इसमें हम सभी चलते जा रहे हैं। भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं, बस उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए ये जो सफर है जिंदगी का, हम उसे शायद जीना भूल जाते हैं। जी हाँ, तो मेरा छोटा सा संदेश इन गीतों के माध्यम से कि जिंदगी जिए और बहुत मेहनत करें, लेकिन आपका ये जो वर्तमान समय आपके पास है, ये जो पल आपके पास है, इसे हमेशा अपने पास संजो कर रखें।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सांझ ढली, जहां भूले बिसरे नगमे हम आप तक पहुंचाते हैं, आपको उन नगमों के करीब लेकर आते हैं। तो आज सांझ ढले कार्यक्रम में गीतों के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि कुछ गीत सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं, बल्कि वो आपकी जिंदगी की सच्चाई को बयां करते हैं, जिंदगी की सच्चाई को सिखा देते हैं। और आज के गीतों से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। पहले गीत की अगर हम बात करें, यारा सिली सिली, फिर हमने गीत सुना यादों की बारात से चुरा लिया है तुमने, बेहद खूबसूरत गीत आशा जी की आवाज में, और अंत में हमने सुना परदेसियों से ना अखिया मिलाना। तो ऐसे ही आप भी कहीं मत जाइएगा, माना हम सभी परदेसी हैं, लेकिन कार्यक्रम में बने रहिएगा। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, और उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में समाचार, और उसके बाद फिर से 8:10 कर फिल्मी सॉन्ग के साथ में मैं अंशु अग्रवाल आपके साथ में फिर से जुड़ूंगी।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन,
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चारू सक्सेना। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के एआई कार्यक्रम की सराहना की। दिल्ली मेट्रो को सार्वजनिक परिवहन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ऑपरेशनल एक्सीलेंस वर्ग में अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिल्ली सरकार जन सहभागिता को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक रविवार को स्वच्छता, यमुना सफाई और वृक्षारोपण जैसे जनहित अभियानों का आयोजन करेगी। दिल्ली की सभी झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनियों में जन सुविधा परिसर बनाए जाएंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी मजबूती है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए युवाओं को तैयार करने के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकी के बीच भारत की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहने के कार्यक्रम का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है।
7: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
6: प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 135वें कड़ी को आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारियों और भाजपा राष्ट्रीय तथा दिल्ली प्रदेश कार्यालय के कर्मचारियों के साथ सुना। वहीं दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज रोहिणी सेक्टर 8B5 स्थित वरिष्ठ नागरिक केंद्र में मन की बात कार्यक्रम को नागरिकों के साथ सुना। इस अवसर पर महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि मन की बात केवल रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि देशवासियों को जोड़ने वाला एक जन आंदोलन बन चुका है। दिल्ली मेट्रो को सार्वजनिक परिवहन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ऑपरेशनल एक्सीलेंस वर्ग में अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डीएमआरसी के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए ये पुरस्कार यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गई उसके स्मार्ट डोर टू डोर यात्रा सेवा के लिए प्रदान किया गया है। ये सेवा प्रथम और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, रियल टाइम सूचना तथा निर्बाध टिकटिंग को

0: माफ कीजिए, टिकटिंग को एकीकृत कर यात्रा को अधिक सुगम, सुविधाजनक तथा पर्यावरण अनुकूल बनाती है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली मेट्रो ने बताया कि ये सुविधा दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप के माध्यम से उपलब्ध है, जो एआई पर आधारित एकीकृत प्लेटफॉर्म है। इस व्यवस्था के माध्यम से यात्री अपने घर से गंतव्य तक यात्रा की योजना बना सकते हैं और उसकी बुकिंग कर सकते हैं। इसमें घर से मेट्रो स्टेशन तक की यात्रा, मेट्रो यात्रा तथा मेट्रो स्टेशन से अंतिम गंतव्य तक की यात्रा शामिल है। वहीं यात्रियों को पूरी यात्रा के लिए केवल एकीकृत किराए का भुगतान करना होता है। यूआईटीपी का परिचालन उत्कृष्टता अवार्ड उन सार्वजनिक परिवहन संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जो दैनिक सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन, नवाचार और प्रभाव का परिचय देती हैं। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग विधानसभा स्थित पीतमपुरा शकूर बस्ती विधानसभा के वेस्ट एनक्लेव और मुस्तफाबाद विधानसभा के महालक्ष्मी विहार में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में सम्मिलित हुई। ये सम्मेलन माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, विकास और जन कल्याण के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने विकास और जनहितैषी योजनाओं में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित यह यात्रा आज विकसित भारत के संकल्प को जन जन का संकल्प बना चुकी है। उन्होंने कहा कि इसी प्रेरणा के साथ विकसित शालीमार बाग के निर्माण का अभियान निरंतर आगे बढ़ रहा है। साथ ही बेहतर सड़कें, सुदृढ़ आधारभूत सुविधाएं, स्वच्छ परिवेश और जनहित के कार्यों के माध्यम से विकास का लाभ प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री और विकासपुरी विधानसभा से विधायक पंकज कुमार सिंह ने आज अपनी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर आयोजित प्रबुद्ध जन नागरिक सम्मेलन में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने सुशासन, गरीब कल्याण, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों पर चर्चा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार जन सहभागिता को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक रविवार को स्वच्छता, यमुना सफाई और वृक्षारोपण जैसे जनहित अभियानों का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज चिल्ला गांव स्थित यमुना घाट पर आयोजित क्लीन दिल्ली विद सीएम स्वच्छता अभियान के दौरान ये घोषणा की। इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं, स्वयंसेवकों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों के साथ मुख्यमंत्री ने श्रमदान किया। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना नदी दिल्ली की स्मृति, संस्कृति और जीवन धारा है, साथ ही इसे स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाना केवल सरकार का दायित्व नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।
3: ये नदी हमारी अपनी है, यमुना हमारी माँ स्वरूपा है और इसे हमें गंदा नहीं करना है। जब ये सफाई अभियान यहाँ करते हैं तो इससे हजारों लोगों को मैसेज जाता है कि अब तक जो हमने किया कहीं ना कहीं उसे ब्रेक लगाने की जरूरत है, यमुना को हम गंदी नहीं कर सकते।
2: उन्होंने कहा कि सरकार वैज्ञानिक, स्थायी और व्यापक स्तर पर यमुना के पुनर्जीवन के लिए निरंतर कार्य कर रही है और स्वच्छ घाट उसी संकल्प का सजीव प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित युवाओं और स्वयंसेवकों की सराहना करते हुए कहा कि समाज में जागरूकता ही सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि पूजा सामग्री, प्लास्टिक, निर्माण मलबा और अन्य कचरे को यमुना में प्रवाहित न करें और स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि पहली जुलाई को दिल्ली सरकार में ई ऑफिस व्यवस्था लागू होने का एक वर्ष पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सरकारी कामकाज अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह हुआ है, जिससे लोगों को सरकारी सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिली है। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 27 जून 2026 तक 235 विभागों और कार्यालयों के 15,748 अधिकारी और कर्मचारी ई ऑफिस प्रणाली से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ई ऑफिस व्यवस्था का दायरा और बढ़ाया जाएगा, जिससे दिल्ली में सुशासन को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने

0: कहा कि ई ऑफिस व्यवस्था के माध्यम से अब यह आसानी से पता चल जाता है कि कोई फाइल किस अधिकारी के पास लंबित है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने ई ऑफिस व्यवस्था को 3 अलग अलग श्रेणियों में विकसित किया है। पहली श्रेणी पूर्ण रूप से सरकारी विभाग के लिए, दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, आयोगों, समितियों, स्वायत्त और स्थानीय निकायों के लिए तथा तीसरी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए बनाई गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: दिल्ली विधानसभा में यूथ आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित छात्र संसद में दिल्ली के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें संसदीय लोकतंत्र के कामकाज को करीब से समझने का अनुभव मिला। दिल्ली विधानसभा ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही को देखकर, संसदीय परंपराओं को समझकर और विधानसभा परिसर का दौरा करके संवैधानिक मूल्यों और देश को मजबूत बनाने में नागरिकों की अहम भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। दिल्ली सरकार में मंत्री और भवाना क्षेत्र से विधायक रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज चांदपुर गांव में HT11KV विद्युत लाइन स्थानांतरण कार्य और चांदपुर कला के से चांदपुर खुर्द लिंक रोड के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाएं क्षेत्र में सुरक्षित और सुदृढ़ विद्युत व्यवस्था, बेहतर संपर्क मार्ग तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना को नई मजबूती प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि बवाना विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और जनहितकारी विकास कार्यों को गति देना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली की सभी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में जन सुविधा परिसर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार जो काम 11 साल में नहीं कर पाई, दिल्ली की भाजपा सरकार ने केवल 11 महीने में ही उसकी योजना बनाकर उसे लागू भी कर दिया। श्री बिधूड़ी ने ये बात आज तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़े झुग्गी कैंप इंदिरा कल्याण विहार ओखला फेज 1 में 66 लाख रुपए की लागत से बने सबसे बड़े जन सुविधा परिसर का शिलान्यास करते हुए कही। इस जन सुविधा परिसर में कुल 60 सीटें बनाई गई हैं, जिनमें से 30 पुरुषों के लिए और 30 महिलाओं के लिए। बिधूड़ी ने सबसे बड़े जन सुविधा परिसर के लिए फंड उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रवासियों की ओर से मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के प्रति आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार ने झुग्गी बस्तियों में विकास कार्यों के लिए 700 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से इन झुग्गी बस्तियों में वे तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनसे वे सुविधाजनक और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर ने जाति पंथ और ऊंच नीच से ऊपर उठकर प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि संत कबीरदास के दोहे और शिक्षाएं समाज को आज भी सही दिशा प्रदान करती हैं। मुख्यमंत्री ने ये बात आज संत कबीरदास के जन्मोत्सव के अवसर पर दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित एक भव्य राज्य स्तरीय समारोह के दौरान कही।
2: संत कबीरदास जी ने जीवन भर जात पात ऊंच नीच को छोड़ करके प्रेम, प्यार, समानता के भाव से रहने का संदेश दिया। उनके शिष्य हर समाज के थे, हर धर्म के थे।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार संत कबीर के नाम पर प्रतियोगिताएं और पुरस्कार प्रारंभ करेगी। दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में कल्याणपुरी और मंडावली से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से लगभग 1500 अवैध शराब की बोतलें बरामद की। पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। राजधानी में आज उमस भरी गर्मी के साथ तेज धूप से लोगों को दिक्कतें हुई। हालांकि दिन ढलते ही मौसम में बदलाव देखने को मिला, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम

0: उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर 0112341 0112371 0112371 0112371 0116। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के AI कार्यक्रम की सराहना की। दिल्ली मेट्रो को सार्वजनिक परिवहन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ऑपरेशनल एक्सीलेंस वर्ग में अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी?
3: हाँ।
2: नए झुमके?
3: ना,
2: पहले बचत।
3: पहले झुमके?
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि हाँ? लगाओ इंजेक्शन।
4: RBI कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशंस की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशंस और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशंस का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
6: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
5: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे राष्ट्र के रूप में उसे देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
6: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
5: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी मजबूती है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा। श्री मोदी ने लोगों से सोने की खरीद से बचने, गैर जरूरी विदेश यात्रा टालने और किसानों से जैविक खेती करने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने अपनी अपील का समर्थन करने के लिए नागरिकों का आभार व्यक्त किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर जारी है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के लिए नए रिकॉर्ड दर्ज किए। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोग की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे। फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार 11 लोगों की मौत हो गई। खबरों में बताया गया है कि ये दुर्घटना नैंसी शहर के नजदीक हुई। ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के महासचिव शेख नईम कासिम ने लेबनान और इसराइल के बीच हुए नए समझौते को खारिज कर दिया है। एक बयान में कासिम ने समझौते को लेबनान की संप्रभुता का आत्मसमर्पण बताया और दावा किया कि यह समझौता इसराइली और अमरीकी हितों को लेबनान की स्वतंत्रता से ऊपर रखता है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और मैं हूँ आपकी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल और समय हो चला है 8:11:17 और ये वक्त है फिल्मी गानों का। तो बिना किसी देरी के आइए लता मंगेशकर जी की आवाज़ से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

0: जी हाँ, ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, गुलजार साहब ने इसे बोल दिए हैं।
1: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you program Swar Dharohar based on the archival inputs of Akashvani. Ye Akashvani hai. Prastut hai Akashvani Archives ke sahyog se nirmit saptahik karyakram Swar Dharohar. श्रोताओ, एक गीत जिसने देश को एकता के सुर में बांधा, जिसने हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की ज्योति जलाई। इस महीने उसी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूरे होने की इस गौरवमयी बेला में हम भारत माता को नमन करते हुए शुरू करते हैं उस कार्यक्रम को जो हमारे सुरों, संस्कारों और संस्कृति की अमर धरोहर को जीवंत रखे हुए है।

0: नमस्कार श्रोताओ, स्वर धरोहर कार्यक्रम में मैं आशुतोष
1: और मैं निशा आपका स्वागत करते हैं।
0: श्रोताओ, संगीत केवल धुन नहीं, भावनाओं की भाषा है और भारत के संगीत इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने उस भाषा को नया आकार दिया। एक ऐसे संगीतकार जिसने भारतीय फिल्मों की धुनों को एक अलग पहचान दिलाई और सबके दिलों में जगह बनाई, इस महान व्यक्ति का नाम है अनिल कृष्ण बिस्वास।
1: आज हम उनके संघर्षों, उनके प्रयोगों और उनके योगदान के बारे में जानेंगे। वे सिर्फ संगीतकार नहीं थे, वे उस संगीत की पहचान थे जिसे पीढ़ियां नहीं भूल सकती।

0: हीरे।
1: अनिल कृष्ण बिस्वास का जन्म बारिसाल पूर्वी बंगाल में 7 जुलाई 1914 को हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। बचपन से ही वे संगीत, थिएटर और वाद्य यंत्रों, विशेषकर तबला के प्रति आकर्षित थे। बचपन में ही उन्होंने थिएटर में अभिनय करना और संगीत सीखना शुरू कर दिया था।
2: बचपन में मैं सुन सुन के बहुत गाया करता था, सुन सुन के काफी, और नकल भी बहुत कर लिया करता था। जिसको जहाँ जो खूबसूरत चीज सुनी वो नकल कर उड़ा के बैठ के गा लिया करता था। हमारे वहाँ बहुत बड़े उस्ताद माने जाते थे, खान साहब बादल का। उन्होंने सुना कि ये लड़का बहुत अच्छा गाता है, और उनके एक शागिर्द की एक चीज उड़ा के मैंने एक जगह में गाया था। उन्होंने जाके शिकायत कर दी कि देखिए साहब, ये अनिल हमारी चीज चुराता है और गाता फिरता है। तो उन्हें बहुत प्यार से बुलाया, मुझे बुलाया, कहने लगे कि आओ बेटा, तुम्हारे गंडे बनते, तुम इतने होनहार लड़का हो और तुम सीखकर गाओगे तो और भी अच्छे हो जाओगे।
1: अपनी मैट्रिक की पढ़ाई करते समय अनिल बिस्वास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और इस वजह से उनकी पढ़ाई भी ठीक से पूरी नहीं हो सकी। सन 1930 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वे आगे की गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदल कर कलकत्ता चले गए।
3: कोलकाता में शुरुआत में नाटकों के लिए संगीत रचना करके उन्होंने अपनी पहचान बनाई, फिर रंगमंच से जुड़ गए। वहाँ उन्होंने एक अभिनेता, गायक और सहायक संगीत निर्देशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने यहाँ कई मंच प्रस्तुतियों में गायन और अभिनय किया। इस समय तक वे ख्याल, ठुमरी और दादरा जैसी गायन शैलियों में पारंगत हो चुके थे। अनिल बिस्वास ने गजलों के बारे में बताते हुए कहा था,
2: 4 किस्म से गजलें गाई जाती हैं। जो लोग पढ़ते हैं वो तरन्नुम नुमा पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे अदायगी के साथ में जिसे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जैसे जिसको कहते हैं वो गाते हैं, और फिर कव्वाल लोग गजलों को एक खास अदा से कहते हैं, और कुछ लोग उसको इमोशनल ढंग से कहते हैं। ये चारों किस्में मैं आपको एक एक

ये गाया ये जो पढ़ने वाला है, जिन्होंने गजल लिखी है ये कोई खूबसूरत तरीके से तरन्नुम में पढ़ते हैं वो इस तरह से पढ़े। इसके बाद आया ट्रेडिशनल, जो लोग गाय की ढंग से

0: अनिल दाने हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग कंपनी के साथ भी गीतकार, गायक और संगीतकार के रूप में काम किया। वहाँ कुंदन लाल सहगल और सचिन देव बर्मन भी काम करते थे। बाद में उन्हें प्रसिद्ध कवि काजी नजरुल इस्लाम के साथ काम करने का भी मौका मिला। इससे वे संगीत निर्देशक हिरेन बोस की नजर में आए और उनके ही कहने पर 1934 में बंबई चले गए।
1: जब प्लेबैक सिंगिंग ने भारतीय सिनेमा में अपना कदम रखा ही था, तब अनिल बिस्वास ईस्टर्न आर्ट सिंडिकेट में जुड़े। उन्होंने बाल हत्या और भारत की बेटी के लिए संगीत बनाया। उन्होंने फिल्म धर्म की देवी में बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिया, अभिनय किया और गाया भी। 1936 में वे सागर मूवी टोन से जुड़ गए। अनिल दाने उस्ताद करीम खां के गायन से प्रेरणा लेकर अपने तरीके से एक गीत की रचना की थी। आइए सुनते हैं वो गीत।

0: इस गाने में आपको वो सरगम ही आता है,
1: सा।
0: इस जगह को देखिए अपने तरीके से,

श्रोताओं, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सन 1937 में महबूब खान की फिल्म जागीरदार ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रमुख संगीतकार के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने कई प्रमुख फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें वतन, अली बाबा और रोटी शामिल हैं। सन 1943 में आई फिल्म

0: किस्मत में भी इन्होंने संगीत दिया और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही।
1: 3 साल तक ये फिल्म चलती रही। उस वक्त भाई असल में ये लता, ये रफी, ये लोग थे नहीं, मगर हमारे पास उस वक्त ऐसे बड़े अच्छे कलाकार थे। आमिर बाई कर्नाट की मरहूम जो गुजर गई है, मेरी बहन उनका नाम मिसेस पारुल घोष, वो गाया करती थी। राजकुमारी करके एक आर्टिस्ट हुआ करती थी। मर्दों में उस न्यूटर से साइकिल निकला था, मराठी फिल्मों में से बहुत सारे लोग निकले थे। आमिर भाई ने सारे ही गाने गाए थे, मेरी बहन ने एक गाना गाया था जो फोक म्यूजिक पे था, और दूसरे सारे गाने जो है ना वो आमिर भाई ने गाया था। तो

0: इस फिल्म में अशोक कुमार और मुमताज शांति ने अभिनय किया था। इस फिल्म का गाना दूर हटो ऐ दुनिया वालों आज भी देशभक्ति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।
1: इसी फिल्म का एक और गीत धीरे धीरे आरे बादल भी एक क्लासिक गीत बन गया। अनिल विश्वास ने पार्श्व गायकों जैसे मुकेश और तलत महमूद को भी प्रमुख गीतों को गाने का मौका दिया और लता मंगेशकर के करियर को भी बढ़ावा दिया। लता मंगेशकर ने आकाशवाणी को दिए गए एक साक्षात्कार में बताया था कि कैसे अनिल विश्वास ने उन्हें गाने में सही तरीके से सांस लेने की तकनीक सिखाई।
2: मैंने अनिल दा के साथ बहुत गाने गाए हैं और बहुत अच्छी तरह से सिखाते थे और कैसे क्या होना चाहिए, किस तरह सांस लेनी चाहिए, छोड़नी चाहिए, ताकि माइक में सांस की आवाज ना आए जो आती है लोगों की, तो वो मुझे उन्होंने सिखाया। और बैठे रहते थे, एक एक छोटी छोटी बातें समझाते थे, अच्छा लगता था बहुत, और प्यार से मेरे साथ बात करते थे जैसे कोई घर का ही हो।
1: सन 1946 में अनिल विश्वास ने बॉम्बे टॉकीज छोड़ दिया और स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया। अपनी पत्नी आशा लता विश्वास के वैरायटी पिक्चर्स के तहत उन्होंने फिल्मों में संगीत दिया। 1960 के दशक में सिनेमा का संगीत तेजी से बदल रहा था और अनिल दा ने संगीत से संन्यास लेने का निर्णय लिया और वे दिल्ली आ गए।
0: दिल्ली में 1963 में अनिल विश्वास ने ऑल इंडिया रेडियो में राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक का पद संभाला। 1975 तक वे आकाशवाणी दिल्ली में सुगम संगीत के प्रमुख निर्माता रहे। इसके बाद उन्होंने दूरदर्शन की पहली प्रमुख टीवी श्रृंखला हम लोग के लिए संगीत तैयार किया और 1991 तक फिल्म प्रभाग के लिए कई वृत्त चित्रों का संगीत रचा। अनिल दा ने सुगम संगीत यानी लाइट म्यूजिक के बारे में क्या बताया था, आइए सुनते हैं।
3: जो लाइट म्यूजिक जो ये नाम इसको दिया गया है, ये आजकल का नाम है। पहले भी हमारे पास आवाम के दिल बहलाने के लिए बहुत सारी चीजें हुआ करती थी जिसे लाइट म्यूजिक के नाम से हम नहीं पुकारते थे। देहाती यानी फोक म्यूजिक जो है ना, जैसे हमारे स्टेज के म्यूजिक हुआ करते थे, जो हजार थिएटर के जो म्यूजिक है उसमें काफी अच्छा, खास करके मराठी थिएटरों में बहुत अच्छे संगीतकार लोग जैसे बाल गंधर्व जैसे लोग, वो लोग शास्त्रीय संगीत को लेके इसको आगे बढ़ाते रहे। इसकी शुरुआत असल में जो बोलती फिल्म है इसी के साथ में इसकी इब्तिदा है। देखिए उन दिनों में हमारे पास प्लेबैक के लिए कोई उपाय, हमारे पास कोई साधन नहीं था, लिहाजा जो लोग उस वक्त काम करते थे फिल्मों में और जो लोग पहले से मशहूर हो चुके थे उन्हीं लोग को हीरो हीरोइन का काम करना पड़ता था। असल में ये एक बात उस वक्त जो शुरू हो गई थी कि बहुत सरल करके, बहुत सहल करके इसको तैयार किया जाए और उस पे आवाम जो है ना वो इनके साथ गुनगुनाना शुरू कर दिया और यहाँ से इब्तिदा है कि फिल्म म्यूजिक मकबूल होने लगा और सबके मन को अच्छा लगने लगा। ये जो चीज है ना, ये तो सुर में या बेसुर में कोई भी आदमी या कोई भी लड़की से गुनगुना, प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में, ये कहने के लिए कोई खास लोगों को तकलीफ नहीं हुआ करती थी। और इसी तरीके से उन लोग को मद्देनजर रखते हुए जब ये संगीत बनाया जाता था तो इसी तरीके से ये मौसिकी जो है ना ये लाइट म्यूजिक के नाम से मशहूर होने लगा।
1: श्रोताओं, करियर के अंत में उन्होंने कुछ फिल्में की जैसे महेश कौल की सौतेला भाई और मोतीलाल की छोटी छोटी बातें जिसमें मुकेश का गाना जिंदगी ख्वाब है भी था। 1986 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: 31 मई 2003 को अनिल विश्वास का नई दिल्ली में निधन हो गया।
1: श्रोताओं, अनिल विश्वास की संगीत की धारा हमेशा गूंजती रहेगी, उनका योगदान हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा।
3: प्रेम नगर में बनाऊंगी घर मैं करके सब सिंगार।
1: श्रोताओ, स्वर धरोहर कार्यक्रम में आज के लिए रिपीट। श्रोताओ, स्वर धरोहर में आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की कड़ी में वाचन स्वर था निशा और आशुतोष का, आलेख था दीपा कुमारी का और प्रस्तुति सहयोग था डिंपल का। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया था अनुराग उपाध्याय और विशाल ने। कार्यक्रम के निर्माता थे आशुतोष कुमार।
1: यू आर लिसनिंग टू द वीकली प्रोग्राम स्वर धरोहर बेस्ड ऑन द आर्काइवल इनपुट्स ऑफ आकाशवाणी। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
2: आप सुन रहे थे आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में खेलों की दुनिया का तमाम लेखा जोखा लेकर शक्ति सिंह के साथ आज मैं हूं नवीन सक्सेना। नमस्कार शक्ति।
4: नमस्कार नवीन।
3: शक्ति, आज किन किन खेल खबरों पर हमारी नजर रहेगी?
4: नवीन, अगर आज की बात की जाए तो क्रिकेट में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें अपने अपने अहम मुकाबले खेल रही हैं, जहां भारतीय पुरुष टीम इस समय आयरलैंड का सामना कर रही है, वहीं महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला जारी है। और नवीन, बैडमिंटन की बात करें तो किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं।
3: और शक्ति, सिर्फ बैडमिंटन के कोर्ट से ही नहीं बल्कि वॉलीबॉल के कोर्ट से भी शानदार जीत की खबर आई है, जहां भारत ने इतिहास रचते हुए 1986 के बाद पहली बार किसी एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीत लिया है। और वहीं फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले तय हो गए हैं और आज रात दो मुख्य मुकाबले खेले जाएंगे और इन पर भी हम चर्चा करेंगे।
4: जी बिल्कुल नवीन। और टेनिस के प्रेमियों के लिए भी हमारे पास एक अच्छी खबर है, जहां कल से साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन शुरू होने जा रहा है, जिसके मुख्य मुकाबले कल से खेले जाएंगे और 4 वर्षों के बाद सेरेना विलियम्स वापसी करती हुई कोर्ट पर नजर आएंगी।
3: तो अगले 15 मिनट तक मैं और शक्ति आपको लिए चलेंगे खेलों की दुनिया पर, बने रहिए हमारे साथ। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस समय मुकाबला जारी है और मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का भारत ने फैसला किया है। और इस समय ताजा खबर क्या है
4: नवीन? अगर ताजा स्कोर की बात की जाए तो भारत ने इस समय 19 ओवर और 3 गेंदे हो चुके हैं, 3 गेंदों का खेल बचा है और भारत ने 3 विकेट खोकर के 154 रन बना लिए हैं। और ये इस ग्रुप का और इस पूरे विश्व कप के जो ग्रुप स्टेज है उसका आखिरी मुकाबला है जो खेला जा रहा है,
3: और सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी ही होगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि भारतीय टीम बहुत स्लो अंदाज में खेल रही है शक्ति।
4: जी नवीन, कहा जा सकता है, लेकिन शायद मन में ऐसा भी होगा कि क्यों ना इस एक सेफ गेम को दिया जाए और एक 170 तक के टारगेट के करीब टीम नजर आ रही है।
3: जिस तरह से भारतीय टीम ने शुरुआत की थी, मुझे लग रहा था कि सुपर ओवर में भारत तेजी से खेलेगा, लेकिन वहां पे बहुत धीमी शुरुआत हुई और भारत के 2 विकेट ही गिरे थे, लेकिन उसके बावजूद भी रन गति में कोई तेजी नहीं आई। और अब बात करते हैं, बेलफास्ट में भारत और आयरलैंड के बीच मैच चल रहा है, दूसरा टी20 क्रिकेट मैच है, जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत की स्थिति इस समय अच्छी नहीं है। ताजा समाचार यह है कि 7वां ओवर इस समय चल रहा है, 46 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, लेकिन भारत के 4 विकेट भी जो हैं गिर चुके हैं। और इससे पहले आयरलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए थे।
4: जी बिल्कुल नवीन, और बेहद निर्णायक मुकाबला है भारत के लिए एक हद तक देखा जाए, जो कि पहले मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था आयरलैंड की टीम से। और इस मैच में अगर देखा जाए, भारतीय टीम की बात की जाए, तो भारत ने प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम में बदलाव किए हैं और सुयश शेगड़े और प्रिंस यादव डेब्यू करते नजर आए। प्रिंस यादव ने अपने पहले मैच में आज 3 विकेट हासिल किए हैं नवीन।
3: और प्रिंस यादव राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, 140 किलोमीटर की स्पीड है, लेकिन आज पूरे जो खेल प्रेमी थे, यूं कहें कि क्रिकेट प्रेमी थे, जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी थे, वो देखना चाहते थे वैभव सूर्यवंशी को, लेकिन थोड़ी निराशा हाथ लगी।
4: कह सकते हैं काफी हद तक निराशा रही होगी, क्योंकि काफी दर्शक मैदान में पहुंचे थे, उम्मीद थी कि पहले मैच में मौका नहीं मिला, दूसरे मैच में वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, लेकिन शायद इंतजार और बढ़ गया है। हो सकता है कि इंग्लैंड में डेब्यू करते हुए नजर आए वैभव नवीन।
3: और जिस तरह से शक्ति ने बताया, प्रिंस ने अपने डेब्यू मैच में ही 3 विकेट लिए हैं। घरेलू क्रिकेट में वो दिल्ली के लिए खेलते हैं, आईपीएल की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ उनका अनुबंध है। और श्रेयस हेगड़े

0: बात करें तो ऑलराउंडर है, मुंबई के लिए खेलते हैं और आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं। बहरहाल इन पे हम लगातार नजर रखे हैं क्रिकेट पे कि क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ चलेगा। बहरहाल ताजा समाचार यह है कि 48 रन बोर्ड पर लग चुके हैं और 4 विकेट जो है वो गिर चुके हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं फीफा फुटबॉल विश्व कप की ओर। 2026 फीफा फुटबॉल विश्व कप, आज देर रात से नॉकआउट मुकाबले शुरू हो जाएंगे। राउंड ऑफ 32 के 16 मुकाबले होंगे। पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच होगा और यह मुकाबला रात 12:30 बजे से लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेला जाएगा। शक्ति क्या कहते हैं?
1: नवीन कह सकते हैं कि वो चरण जहां से जो टीम मैच जीतेगी वो आगे बढ़ेगी और जो टीम हारेगी उसके बैग पैक होंगे और वापस अपने स्वदेश की वापसी होगी। और दक्षिण अफ्रीका आज जो है ग्रुप ए में जिसने 3 मैचों में 4 अंक हासिल किए थे वो एक मुकाबला खेलेगी, जबकि कनाडा भी ग्रुप बी में 3 मैचों में 4 अंकों के साथ यहां पर पहुंची है, अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर थी, तो एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। और अब तक इन दोनों टीमों ने कोई भी मैच हारा नहीं है इस टूर्नामेंट में देखा जाए तो।
0: जी, और शक्ति फीफा विश्व कप में दोनों ही टीमों के बीच अहम मुकाबला है और इससे पहले 2007 में इनके बीच एकमात्र इंटरनेशनल एक फ्रेंडली मैच खेला गया था और इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से जीत दर्ज की थी।
1: जी बिल्कुल, अगर राउंड ऑफ 32 की बात चल रही है तो हम बताते चलें कि 2 मुकाबले खेले जाने हैं आज, जहां पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच होगा। ये मैच देर रात 12:30 बजे शुरू होगा। वहीं कल रात 10:30 पर ब्राजील और जापान आमने सामने होंगे। तो सुनते हैं दक्षिण अफ्रीका बनाम कनाडा और ब्राजील बनाम जापान के मुकाबलों पर ये खास रिपोर्ट।
2: कनाडा ने ग्रुप स्टेज में अपने अभियान की शुरुआत बोस्निया के खिलाफ 1-1 के ड्रॉ से की। दूसरे मैच में स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से हरा दिया। हालांकि आखिरी मुकाबले में टीम ने कतर को 6-0 के बड़े अंतर से हराकर नॉकआउट में एंट्री पाई। उधर दक्षिण अफ्रीका को कप्तान और गोलकीपर रॉनवेन विलियम्स से सॉलिड डिफेंस की उम्मीद होगी, जबकि कनाडा के लिए फॉरवर्ड जोनाथन डेविड सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी होंगे। डेविड टूर्नामेंट में अब तक 3 गोल कर चुके हैं। वहीं कल राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में जापान और ब्राजील आमने सामने होंगे। दोनों ही टीमों ने ग्रुप मैच में 7-7 गोल किए हैं और इस विश्व कप में सबसे दमदार आक्रमण करने वाली टीम है। ब्राजील के 8 में से 7 गोल विनीसियस जूनियर और मैथियस कुन्हा के जोड़ी ने किए हैं। दूसरी ओर जापान एक टीम की तरह खेला है और पूरी तरह किसी एक प्लेयर पर निर्भर नहीं है। जापान अब तक ग्रुप में कोई मैच नहीं हारा है। जापान ने 3 मुकाबले खेले जिसमें उसने 1 में जीत हासिल की और 2 ड्रॉ रहे। कल के मुकाबले में देखना होगा कि लैटिन अमेरिकी टीम ब्राजील या फिर एशियन टीम जापान, इन दोनों में से कौन किस पर भारी रहेगा। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: शक्ति, अब ग्रुप स्टेज में वो स्टेज आ चुकी है कि जब आपको करो या मरो है। अगर आप जीतेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हारेंगे तो बैक पैक है आपका। इससे पहले आज सुबह बहुत ही शानदार मुकाबले हुए जहां पे खेल रहे थे लियोनेल मेसी ने अपने शानदार करियर में एक बार खास उपलब्धि हासिल की है और उन्होंने आज डलास स्टेडियम में ग्रुप स्टेज मुकाबले में अर्जेंटीना ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और जॉर्डन को 3-1 से हरा दिया। और इस मुकाबले में मेसी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में उतरे थे और फ्री किक पर एक उन्होंने शानदार गोल किया था। और शक्ति, इस गोल के साथ ही वो 7 विश्व कप मुकाबलों में लगातार गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: जी बिल्कुल, और ये 2022 के कतर विश्व कप के क्वार्टर फाइनल से सिलसिला शुरू हुआ था। मेसी जब भी उतरते हैं कोई रिकॉर्ड उनकी नजर में होता है, गोल्फ कोस्ट उनकी नजर में होता है और गेंद हमेशा टीम की जीत की स्क्रिप्ट लिखते हुए नजर आती है नवीन।
0: और शक्ति, 39 साल के इस मेसी को दूसरे हाफ में जब मैदान में उतारा गया और उन्होंने आते ही अपना जादू बिखेर दिया। तमाम फुटबॉल प्रेमी इस समय मेसी का जादू देख रहे हैं, लेकिन उस जादू को उन्होंने मिस किया था। मुझे याद है जब ग्रुप के मुकाबले हो रहे थे जब उन्होंने पेनल्टी किक मिस किया, बहुत निराश किया था उन्होंने।
1: जी बिल्कुल, थोड़ी निराशा थी लेकिन कह सकते हैं कि उसकी कसर यहां पे पूरी कर दी। सब्स्टिट्यूट बन के आए थे और एक शानदार गोल टीम के लिए।
0: फुटबॉल के मैदान से अब हम आपको लिए चलते हैं सीधा बैडमिंटन के कोर्ट पर, बात किदांबी श्रीकांत की। और शक्ति, किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं और आज सेमीफाइनल मुकाबले में जापान की युदाई ओकुमोटो को उन्होंने हराया। सुनते हैं प्राची की ये रिपोर्ट।
3: विश्व के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने इस साल के अपने पहले फाइनल में जगह बना ली है। 33 वर्षीय श्रीकांत ने चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ओकीमोटो को 1 घंटे 12 मिनट तक चले सेमीफाइनल मुकाबले में 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। ओकीमोटो ने 11-17 से पिछड़ने के बाद गेम पॉइंट हासिल किया था, जिसके बाद श्रीकांत ने शानदार वापसी करते हुए पहला गेम जीत लिया। इसके बाद ओकीमोटो ने पलटवार किया और दूसरे गेम 21-15 से अपने नाम करते हुए मैच बराबरी पर ला दिया। तीसरे और निर्णायक गेम में भी रोमांच बना रहा। श्रीकांत की 10-5 की शुरुआती बढ़त के बाद ओकीमोटो ने स्कोर 12-12 से बराबर किया। मैच के अंतिम क्षणों में श्रीकांत ने सूझबूझ दिखाते हुए गेम 21-19 से अपने नाम किया। अब फाइनल में उनका सामना चीनी ताइपे के सुलियांग से होगा। वहीं 19 वर्षीय रौनक चौहान का शानदार अभियान सेमीफाइनल्स में समाप्त हो गया। उन्हें सुलियांग से 21-17 और 21-19 से हार का सामना करना पड़ा। महिला सिंगल्स में देविका सिहाग का सफर भी सेमीफाइनल में डेनमार्क की क्रिस्टोफरसेन से मिली हार के साथ समाप्त हो गया। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बैडमिंटन कोर्ट से चलते हैं वॉलीबॉल कोर्ट की तरफ। नवीन, क्या खुशखबरी लेकर के आए हैं?
0: वहां से एक शानदार खबर आ रही है कि भारत ने एक बार फिर एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी।
1: जी बिल्कुल, भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहरीन पर 3-1 से जीत दर्ज की।
0: और शक्ति, ये इतिहास ही है जब भारत ने कांस्य पदक जीत लिया है वॉलीबॉल में। हालांकि हम उतने टॉप क्लास प्लेयर या उतने टॉप क्लास टीम नहीं है, लेकिन अब उन तमाम खेलों में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं जहां पे हम थोड़ा सा पीछे रह जाते थे। और जानते हैं, ये भारत ने इस प्रतियोगिता में पिछले 40 वर्षों का पहला पदक है। इससे पहले भारत को सेमीफाइनल में इंडोनेशिया से हार का सामना करना पड़ा था और भारत ने ग्रुप स्टेज में सभी 5 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की थी। एक और शानदार खबर हमारे पास आ रही है। भारत ने स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न में 2026 विश्व रोइंग कप में इतिहास रच दिया है। लक्ष्य और उज्जीवाल कुमार सिंह की भारतीय जोड़ी ने इस प्रतियोगिता में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। और शक्ति, एक रोमांचक मुकाबला था जिसमें लाइटवेट पुरुष डबल्स स्कल्स फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए हांगकांग और नीदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और ये जीत भारतीय रोइंग के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। और शक्ति, यहां चलते चलते अपने श्रोताओं को यह भी बता दें कि विश्व रोइंग कप इस खेल की प्रमुख वार्षिक प्रतियोगिता में से एक है और विश्व रोइंग चैंपियनशिप की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अब आपको लिए चलते हैं टेनिस की ओर।
1: जी बिल्कुल, टेनिस की बात की जाए, टेनिस के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में से एक विंबलडन कल से शुरू होने जा रहा है और इस दौरान दुनिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी इस खिताब के लिए लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब के कोर्ट पर जोर आजमाते नजर आएंगे। और इस वर्ष का तीसरा ग्रैंड स्लैम है जो कि ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन के बाद खेला जा रहा है। नवीन,
0: और इस टूर्नामेंट का एक मुख्य आकर्षण जो है शक्ति, वो है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स की ग्रैंड स्लैम में वापसी होगी और वहीं लोगों की नजर अपने 8वें विंबलडन खिताब के लिए कोर्ट पर उतर रहे नोवाक जोकोविच पर भी होगी। फ्रेंच ओपन के विजेता अलेक्जेंडर ज़वरेव भी फेवरेट्स की लिस्ट में शुमार हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और सेरेना विलियम्स की बात की जाए, 2022 का यूएस ओपन उसके बाद अब नजर आएंगी इस विंबलडन के लिए कोर्ट पर। और वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन को और ऑस्ट्रेलिया की उभरती खिलाड़ी माया जेंचेन से उनका मुकाबला होगा। अगर विलियम्स आगे बढ़ती है तो दर्शकों को वो मैच भी देखने को मिल सकता है तीसरे राउंड पर, जहां इगा स्वियातेक के सामने विलियम्स होंगी।
0: तो सुनते हैं सरफिरोजी की रिपोर्ट की क्या कुछ वो बता रखी है इस बारे में।
4: विंबलडन के लिए मुख्य ड्रॉ की घोषणा कर दी गई है। 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर को मेन्स सिंगल्स में एक ही हाफ में रखा गया है। जोकोविच चीन के वो यिबिंग के खिलाफ मुकाबले के साथ अपना अभियान शुरू करेंगे। उम्मीद है कि दूसरे दौर में उनका सामना स्टेफानोस सित्सिपास या ह्यूगो गैस्टन से होगा। वहीं विश्व नंबर एक और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर अपने टूर्नामेंट की शुरुआत सर्बिया के मियोमीर केकमनोविच के खिलाफ करेंगे। अगर दोनों खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं तो संभव है कि सिनर और जोकोविच के बीच एक जबरदस्त सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं पूर्व यूएस ओपन चैंपियन डेनिल मेदवेदेव के रूसी खिलाड़ी के क्वार्टर फाइनल प्रतिद्वंद्वी होने की संभावना है। मेदवेदेव अपने टूर्नामेंट की शुरुआत साल 2017 के फाइनलिस्ट मारिन सिलिच के खिलाफ करेंगे। मेंस ड्रॉ के दूसरे हाफ में फ्रेंच ओपन चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव बेल्जियम के अलेक्जेंडर ब्लॉकक्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। उधर महिला वर्ग के ड्रॉ की बात की

0: जाए तो स्वियातेक अमरीकी टेलर टाउनसेंड के खिलाफ मुकाबले के साथ अपना अभियान शुरू करेंगी। ड्रॉ में घरेलू पसंदीदा एम्मा रादुकानू भी शामिल हैं, जो विंबलडन में अपने खिताब का बचाव एंटोनिया रुजिक के खिलाफ शुरू करेंगी। नाओमी ओसाका का सामना एल्सा जैकमो से होगा, जबकि कोको गॉफ के सामने तमारा कोरपांच होंगी। मीरा एंड्रीवा का सामना मैग्डा लिनेट से होगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: शक्ति, अब वक्त बिल्कुल इजाजत हमें नहीं दे रहा है और चलते चलते हम अपने लिसनर्स को बता दें कि भारत ने 171 रन का टारगेट दिया है T20 विश्व कप में महिलाओं के। और आज के इस अंक में बस इतना ही। कैसा लगा हमें जरूर लिख भेजें, sportscan.air@gmail.com। बहरहाल मुझे और शक्ति को दें इजाजत, नमस्कार।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में UPI भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
2: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा।

0: इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इलेडी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने का एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू ओरिजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे थे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्सों सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के 4 जवान मारे गए थे। फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत के तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 85% बुजुर्ग थे। बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 7 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं। इससे पहले आयरलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए। वहीं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर में 3 विकेट पर 154 रन बना लिए थे। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 170 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घटना में 14 लोग मारे गए। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉकआउट चरण की शुरुआत आज रात अमेरिका के कैलिफोर्निया में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच मुकाबले से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद सागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशन की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन के लिए राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी की सेशल्स की जनता का आभार व्यक्त किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल, डॉ जितेंद्र सिंह और अन्य मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आप

0: का फिर स्वागत है। भारत ने आज कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राजनीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के 4 जवान मारे गए थे। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज होर्मुज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण अरामको ने शुक्रवार को लगभग 4 महीने बाद खाड़ी में स्थित अपने रास तनूरा टर्मिनल पर फिर से कच्चे तेल की लोडिंग शुरू की थी। मंत्रालय ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर जारी है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
1: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर जुर्माना दोगुना करने का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि प्रौद्योगिकी कंपनियां इस प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण की शुरुआत आज रात से हो रही है। पहला मैच दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में राउंड ऑफ 32 के पहले मुकाबले में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्बिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सऊदी अरब में रास तनूरा में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 14 लोग मारे गए। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉकआउट चरण की शुरुआत आज रात अमेरिका के कैलिफोर्निया में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच मुकाबले से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Amrit Bhushan with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. New Delhi rejects Islamabad's allegations over recent incident in Karachi, terming them baseless. In Saudi Arabia, 14 people killed in a helicopter crash in Ras Tanura. Europe continues to experience record-breaking heat wave. France reports over 1,000 deaths. In FIFA World Cup, the knockout stage is set to begin tonight with South Africa taking on Canada at California, US. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
3: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले आवर विजन इज टू मेक Indian Ocean into an ocean of opportunity.
2: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space, and health. Prime Minister Modi expressed happiness that an MOU has been signed to implement UPI in Seychelles.
3: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है
2: Prime Minister said the India-Seychelles partnership in the health sector has stood the test of time. He said the MOU signed on Jan Aushadhi today will help provide quality and affordable medicines to the people of Seychelles. Addressing the gathering, Seychelles President Hermini said maritime security in the Indian Ocean region remained central to bilateral ties, with the two countries reaffirming their commitment to counter piracy, drug trafficking, illegal fishing and cross-border crime.
4: A particularly significant milestone is the groundbreaking inauguration of the Professional and Technical Education Center. This India-assisted project will equip Seychellois youth with world-class vocational training, strengthening our capacity building. My deepest gratitude to Prime Minister Modi for this transformative initiative.
2: On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles President conferred the prestigious honour on Prime Minister Modi. The distinction has been awarded to Prime Minister Modi in recognition of his green leadership, his efforts towards advancing the interests of developing countries, and his long-standing commitment to promoting the blue economy, climate action, the sustainable management of ocean resources, and the developmental aspiration of small island developing states. Prime Minister dedicated the honour to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Speaking on the occasion, Prime Minister said both India and Seychelles seek a world where development is more inclusive and international institutions reflect contemporary realities, reaffirming their commitment to advancing the interests of the Global South.
3: Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive. We both seek a world where international institutions reflect contemporary realities. We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively, and fairly.
2: Mr. Modi said that India's vision is captured in the idea of Mahasagar, which recognizes that our futures are interconnected and interdependent.
3: Our vision is captured in the idea of Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent, and we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region.
2: The Prime Minister said it is a special honor to stand before everyone as the first Indian Prime Minister to address the National Assembly. He also thanked President and the people of Seychelles for honoring him with Seychelles' highest distinction, the Guardian of the Blue Horizon. Mr. Modi

कर 30 मिनट हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका स्वागत है। प्रोग्राम हर श्रृंगार आपके साथ, मैं विकास, नमस्कार।

जी बाहर तो पता नहीं कि चांद मुस्कुरा रहा है या नहीं मुस्कुरा रहा, लेकिन स्टूडियो में बैठकर मैं जरूर मुस्कुरा रहा हूँ। और मेरे मुस्कुराने की वजह यह है कि आज हर सिंगार में बात मैं थोड़ी सी पहेली से शुरू करना चाहता हूँ। आज बात करेंगे दो पतंगबाजों की, जिन्होंने न सिर्फ कई पतंग साथ उड़ाई बल्कि हमारा और आपका दिल भी उड़ा लिया। तो अब पहेली क्या है? पहेली ये है कि जहां जहां अभी आप मेरी इस बातचीत को सुन रहे हैं, वहां से बैठे बैठे आपको थोड़ा सा काम करना है। काम ये करना है कि आपको अंदाजा लगाना है कि कौन थे ये दो पतंगबाज और जिन्होंने साथ में मिलकर पतंगे न सिर्फ उड़ाई बल्कि कहते हैं कि एक दूसरे ने अपनी अपनी छतों पर पतंग उड़ाते उड़ाते गाना भी इंजॉय किया, यानी गाते हुए पतंगे उड़ाई। हिंट के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि दोनों ये जो नाम है हिंदी सिनेमा में मशहूर गायक रहे, काफ़ी सम्मानित और हमारे और आपके दिलों में घर करने वाले।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हुए हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार। जी मैं भूला नहीं हूँ, मुझे वो दो नाम बताने हैं जिनके बारे में मैंने आपसे सवाल पूछा था। आपको पता है कि ये जो दो नाम मैंने पूछे हैं ना आपसे, वो पार्श्व गायन के महारथी माने जाते हैं, यानी ऐसे प्लेबैक सिंगर जिनके नामों के बिना उस दौर के संगीत को अधूरा माना जा सकता है। और देखें तो असल में ये बहुत बड़े पतंगबाज भी थे। अब आप कहेंगे कि नाम तो बता नहीं रहा, तब से गोल गोल बातें बता रहा है, तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों ने शायद अंदाजा भी लगा लिया होगा कि ये दो नाम कौन से हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये दो नाम थे रफी साहब और मन्ना दा, यानी मन्ना डे। पार्श्व गायन में फेमस होने के बावजूद पतंगबाजी इन दोनों का प्रिय शगल रहा। जी ये दोनों के दोनों एक तरह से एक दूसरे के पड़ोसी थे और अपनी अपनी छतों पर जब भी इन्हें खाली वक्त मिलता तो पतंगबाजी किया करते। यहाँ तक कि मन्ना डे खुद को प्रोफेशनल पतंगबाज मानते और अपनी छत पर पतंग उड़ाते हुए बेबाक अंदाज में गाया करते। कहते हैं कि मन्ना डे को रफी साहब की पतंग काटने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी।

जी बात क्योंकि मन्ना दा की चल रही है तो एक चीज और भी दिलचस्प है जानना। जी वो ये कि मन्ना दा अगर स्टूडियो में हमें ना मिलते तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं हमें पहलवानी करते नजर आते। असल में कुछ साल पहले यानी स्टूडियो में आने से कई साल पहले मन्ना दा अखाड़े में पहलवानी करते नजर आते थे। मन्ना दा के चाचा प्रसिद्ध गायक केसी डे रहे और उनके दोस्त थे यतेंद्र चरण गुहा जो पहलवानी जानते थे। एक दिन वे मन्ना दा से टकराए और उन्होंने पूछा क्या करते हो। मन्ना दा ने कहा कि जी मैं पढ़ता हूं। ये सुनकर यतेंद्र चरण

बुआ जी ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन साथ में क्या करते हो? मन्ना डे ने कहा कि जी मैं कबड्डी, गिल्ली डंडा, क्रिकेट वगैरह खेलता हूँ। हैरान होकर यतेंद्र जी ने कहा कि व्यायाम नहीं करते? ये सवाल सुनकर मन्ना दा थोड़ा सा रुके और रुक कर बोले, यही तो व्यायाम है, और क्या व्यायाम करूँगा। ठीक है, यतेंद्र चरण गुहा ने थोड़ा सोचा और कहा कि कल से तुम मेरे अखाड़े पर आना और कुश्ती लड़ना। दूसरे दिन से ही जो है मन्ना दा उनके अखाड़े पर जाने लगे और कुश्ती में पारंगत हो गए। इतना ही नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर पहलवान के तौर पर फाइनल तक पहुंचे।

प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार और थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, लेकिन समाचारों के बाद एक बार फिर जुड़िएगा हम ही से यानी FM गोल्ड के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां

0: हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
0: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
0: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

जी कुछ रिश्ते होते ही ऐसे हैं जिनसे कई दफा हम चाहते न चाहते हुए भी शिकवा नहीं कर पाते। कुछ रिश्ते बारिश की बाद जो मिट्टी से खुशबू उठती है ना, उसकी तरह होते हैं। नजर नहीं आते मगर पूरी रूह में उतर जाते हैं।

किसी से शिकायत रहना या किसी से शिकायत करना भी दिलचस्प होता है। शिकायतें भी कह सकते हैं कि अजीब होती हैं, जिससे होती हैं उसी के लौट आने की उम्मीद भी साथ लाती है। और शायद तभी किसी ने कहा कि गिला भी तुझसे बहुत है मगर मोहब्बत भी, गिला भी तुझसे बहुत है मगर मोहब्बत भी। वो बात अपनी जगह है और ये बात अपनी जगह।

11:30 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz के साथ जुड़े हुए हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है गीत मेरे मन मीत। आपके साथ मैं विकास। रफी साहब की ये प्यारी सी मखमली सी आवाज और इस आवाज को भुला पाना शायद इस जन्म में हम में से बहुत से लोगों के लिए मुमकिन ना हो, क्योंकि ये आवाज रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, हमारे दिल को हल्की हल्की थपकी सी होती है ना, जिससे हमें उस खामोशी के पल में भी सुकून मिलता है, कुछ ऐसा ही एहसास करा जाती है। और यकीन मानिए किसी को भूलना इतना आसान भी नहीं होता। कुछ कुछ इसे ऐसा कह सकते हैं कि किसी किताब से एक पन्ना फाड़ देने जैसा भी नहीं होता। ये तो पूरी किताब पढ़कर भी उसे एक सफ़े पर बार बार लौट जाने जैसा लगता है।

फिल्म का नाम रहा अनुभव। 1972 की ये फिल्म थी और अगर आप में से कुछ लोगों ने इस फिल्म को देखा हो तो आपको याद होगा कि ये फिल्म कितने सारे जज्बात लिए हुए थी। एक एक परत दर परत जैसे रिश्ते हमारी आंखों के आगे खुलते रहते हैं। फिल्म का संगीत इस कहानी को आगे बढ़ाता है। संगीत की बात करूं तो इस फिल्म में संगीत रहा कानू रॉय का, और जिन लोगों ने इस फिल्म को ना देखा हो तो जरूर इस फिल्म का नाम कहीं पर नोट कर लीजिए और यकीन मानिए आपको शायद दिल को छूने वाली ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। फिल्म का नाम है अनुभव। ग्यारह बजकर 40 मिनट होने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हुए हैं आप। आपके साथ मैं विकास और प्रोग्राम चल रहा है गीत मेरे मनमीत।

दुलारी फिल्म का ये गीत है। दुलारी आई थी 1949 में और देखिए वक्त 2026 का है, लेकिन संगीत कभी नहीं मरता। पुराने गीत अपनी खूबसूरती के चलते हमारे जहन में यूं ही बसे रहेंगे, इस वादे के साथ कि विकास आपसे फिर दोबारा कभी न कभी जरूर मिलेगा। रखिएगा आप अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग ले रहे हैं। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और

0: ये प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दवाओं, शल्य चिकित्सा के सामान और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताओं के मामले में 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक डॉ वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उप नियंत्रक लेखा नीरज चोपड़ा शामिल हैं। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। बेलफास्ट में आयरलैंड ने भारत को दूसरे 2020 क्रिकेट मैच में बड़ा उलटफेर करते हुए 1 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of 2 Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, Mr. Modi addressed a joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
0: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
2: The two countries exchanged several agreements in a range of fields including agriculture, finance, space and health. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. On the sidelines of the Seychelles visit, Prime Minister Narendra Modi met with Mauritius Prime Minister Dr. Naveen Chandra Ramagulam. The two leaders discussed

ये जानना कि तुम जानते हो कि जानना क्या होता है, ये जानना कि तुम जानते हो कि जानना क्या होता है, धीरे धीरे ये समझना है कि तुम्हारी उंगलियों के बीच जो खाली जगह है वो हाथ थामने के लिए है।

11 मिनट और 12 सेकंड शुरू हो चुका है प्रोग्राम निशिगंधा। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज़ के साथ।

वैसे आज खिड़की के बाहर मौसम कुछ ऐसा ही है, यकीन ना हो तो झांक कर देख लीजिए। अगर आप मुझे किसी खास शख्स के साथ सुन रहे हैं तो उनका हाथ थाम लीजिए, और अगर वो आपसे दूर हैं तो महसूस कीजिए उनकी मौजूदगी को, क्योंकि सफ़र वही जो साथ में तय किया जाए और मंजिल वही जो दिल तक पहुंचे। अगला गीत आप ही के लिए, लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: फरमाना।
1: जब तैयारियां इतनी जोरों शोरों से है तो आना तो पड़ेगा ही। मैं तो आ गई हूँ और आप भी जल्दी से जुड़िए मेरे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, क्योंकि हाँ, हम जुड़ते हैं दिल से दिल तक। वैसे ही आंखों आंखों वाली बातचीत भी कमाल की होती है ना। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा चेहरा है जिसकी पलकों के उठने और गिरने से आपकी सुबह और शाम होती है, तो ये अगला गीत उसी के लिए। अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में आप ही के लिए।

जैसे इश्क में ऐसा ही होता है, जब मोहब्बत मुकम्मल होती है तो फिर उस इंसान के सामने सारी कायनात फीकी लगने लगती है। कहते हैं कि चांद में भी दाग होता है, लेकिन जब हमें किसी से बेइंतहा मोहब्बत होती है तो वही इंसान सबसे हसीन, सबसे मुकम्मल लगता है। अगर आप भी किसी की यादों से घिर आए हैं जिसके सामने चांद की रोशनी भी फीकी लगती है, तो ये अगला गीत उसी के नाम, अगला गीत रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में।

हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। किसी की तरबियत का है करिश्मा, ये आंसू मुस्कुराने लग गए हैं। कहानी रुख बदलना चाहती है, कहानी रुख बदलना चाहती है, नए किरदार आने लग गए हैं। हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:40 और 18 सेकंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा सुन रहे हैं आप। और अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

0: आप जानते हैं मोहब्बत की आखिरी हद क्या होती है? मुझे लगता है कि आखिरी हद वो है जहां आप अपने वजूद से ज्यादा सामने वाले की जिंदगी की दुआ करने लगते हैं। कहते हैं जब हम किसी से ऐसी शिद्दत वाली मोहब्बत करते हैं ना, तो अपनी सांसें भी उनकी अमानत बन जाती है।
1: मुकेश जी का नाम आते ही बहुत सी यादें भराती हैं। मुकेश जी के साथ मेरे बहुत प्रोफेशनल रिलेशंस बहुत देर से नहीं थे, लेकिन इमोशनल रिलेशंस बहुत ज्यादा थे। मुझे एक दुख है कि मैं उनको बहुत देर से मिला। इतने बड़े सिंगर, इतने महान कलाकार।

सभी अपनी जिंदगी में ना जाने कितने ख्याल देखते हैं, सोचते हैं। उनमें से कुछ ख्याल पूरे होते हैं और कुछ अधूरे ही छूट जाते हैं, है ना। ख्याल एक ऐसा परिंदा होता है जो वक्त और फासलों की बंदिशों को नहीं मानता। हम सभी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी ऐसे शख्स का इंतजार जरूर करते हैं जिससे मिलने के बाद लगता है कि सफर अब मुकम्मल हो गया। कोई ना कोई एक चेहरा ऐसा जरूर नजर आता है या लगता है कि हाँ, ये वही चेहरा है जो मेरी अधूरी नज्म के लिए मुकम्मल है।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 1 बजे सुनेंगे आप समाचार। अब से फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया।

0: सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज में अमेरिका के कैलिफोर्निया में राउंड ऑफ 32 के शुरुआती मैच में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच मुकाबला जारी है। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi participated as a chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of 2 Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, Mr. Modi addressed a joint press meet after delegation-level talks with Seychelles' President Patrick Hermini in Victoria. Mr. Modi said, India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said, India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke saath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
1: The two countries also exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space, and health. On the occasion, PM Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Later in the day, PM Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Mr. Modi reached Victoria on Saturday on a 3-day visit to the East African island nation. On the sidelines of the Seychelles visit, PM Modi met with Mauritius PM Dr. Navin Chandra Ram Gulam. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They also reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Both leaders reaffirmed

मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 11 सेकंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गीत सुहाने एक ऐसा प्रोग्राम जहां इतिहास और स्मृतियों से संगीत हमें आवाज़ देता है। तो चलिए फिर इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं 1950 की कालजयी फिल्म के गीत से, जिसे आवाज़ दी है तलत महमूद और शमशाद बेगम ने।

पहली नजर में मोहब्बत को अगर बयां करना हो तो शायद गाना यही होगा। अभी हम सुन रहे थे तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाज में 1950 की कालजई फिल्म बाबुल से ये गीत आपने सुना। संगीत था नौशाद साहब का और गीतकार थे शकील बदायूनी। और अब अगला गीत रफी साहब और लता जी की आवाज में।

हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार और रोमांटिक फिल्मों में से एक। संगम से सुन रहे थे आप ये गीत रफी साहब और लता जी की आवाज में। संगीत शंकर जयकिशन साहब का और गीतकार थे हसरत जयपुरी। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था राज कपूर साहब ने और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1964 में। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर, वैजंती माला और राजेंद्र कुमार ने। फिल्म संगम की कहानी तीन दोस्तों के यानी कि राज कपूर, वैजंती माला और राजेंद्र कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। ये फिल्म दोस्ती, प्रेम और त्याग को बहुत ही भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत करती है। और अब अगला गीत आप तक पहुंच रहा है लता जी और मुकेश की आवाज़ में।

अभी आपने सुना फिल्म आस का पंछी से ये सदाबहार गीत मुकेश और लता के आवाज में। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1961 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था मोहन कुमार ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला ने। ये फिल्म जो है वो युवा के सपनों को लेकर, उसकी जिम्मेदारियों को लेकर, उसके संघर्ष को लेकर बनाई गई थी और इस फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और बोल लिखे थे यानी कि गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। और अगर हम हसरत जयपुरी साहब की बात करें तो वो हिंदी सिनेमा के उन गीतकारों में से एक रहे जिन्होंने अपनी सरल और सहज भाषा से हिंदी गीतों को लोकप्रियता दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अब अगला गीत लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज में, फिल्म ब्लैक कैट से। संगीत है एन दत्ता का और गीतकार हैं जानिसार अख्तर साहब।

अजसम्झ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:38 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। गीत सुहाने एक ऐसा प्रोग्राम जहां हमें संगीत इतिहास और स्मृतियों से आवाज देता है। गीत अब तक पहुंच रहा है अगला फिल्म मधुमती से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

1958 में आई फिल्म मधुमती से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत था सलील चौधरी का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था बिमल रॉय ने और कहानी लिखी थी ऋत्विक घटक ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी वैजयंती माला और दिलीप कुमार ने। सहायक भूमिका में नजर आए थे प्राण और जॉनी वॉकर। इस फिल्म की कहानी आनंद यानी कि दिलीप साहब के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे मधुमती यानी कि वैजयंती माला से प्यार हो जाता है और उनके संघर्ष को और चुनौती को इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरती

से और एक नए अंदाज में पेश किया गया है। और अब आप तक पहुंच रहा है अगला गीत आशा जी और मुकेश की आवाज में।

फिल्म का नाम मोहब्बत इसको कहते हैं, और आवाज थी आशा जी और मुकेश की, संगीत खयाम का, और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। ये फिल्म 1965 में आई थी, और अभी जो गीत आपको हमने सुनवाया वो गीत पिक्चराइज किया गया था शशि कपूर और नंदा पर। और अब अगला गीत गीता दत्त की आवाज़ में, फिल्म साहिब बीवी और गुलाम से।

पर है।

मुड़ मुड़ के देखना है और फिर से जुड़ना है 2:10 पर मेरे साथ। अभी वक्त है समाचारों का, आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्ध पोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के

0: गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ग्रीस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल कई स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने कैलिफोर्निया में सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकीमोतो को 22-20, 15-21, 21-19 से हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज में अमेरिका के कैलिफोर्निया में राउंड ऑफ 32 के शुरुआती मैच में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। हाफ टाइम के बाद भी दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of two Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, addressing a joint press conference after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity, and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said, India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: The two countries also exchanged several agreements in a range of fields including agriculture, finance, space and health. On the occasion, PM Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Later in the day, PM Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Mr. Modi reached Victoria on Saturday on a three-day visit to the East African island nation. On the sidelines of the Seychelles visit, PM Modi met with Mauritius Prime Minister Dr. Naveen Chandra Ramgoolam. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They also reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Both leaders reaffirmed the significance of the India-Mauritius enhanced strategic partnership under India's vision Mahasagar and neighborhood first policy and their shared commitment to the Global South. India categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Ranadhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swastha Karyakram during the 16th Conference of the Central Council of Health and Family Welfare.

हम मिलेंगे किसी ना किसी दिन किसी मोड़ पर, हम मिलेंगे किसी ना किसी दिन किसी मोड़ पर, जैसे दो रेखाएं मिलती हैं कभी ना कभी। और अगर हम समांतर निकले तो मिलेंगे अनंत में, जहां ये झूठ हर रोज दोहराना ना पड़े कि मुझे तुमसे मोहब्बत है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 31 सेकेंड। रात सुरमई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी रात के सुरों पर बात, रात के दर्द पर बात।

गाने सुनकर ऐसा लगता है ना कि इश्क की जुबान या फिर मोहब्बत की जुबान कभी पुरानी नहीं होती। चेहरे बदल जाते हैं पर एहसास वही रहता है। अगला गीत रफी साहब और आशा जी की आवाज में।

जब रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ एक साथ मिलती है तो मौसम और भमरे गुनगुना ही उठते हैं, और मुझे यकीन है कि इस गाने को सुनकर आपके चेहरे पर भी एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ ही गई होगी। बाहर मौसम चाहे जैसा हो, पर एफएम गोल्ड का मौसम मस्ताना तो है। अगला गीत अभी के लिए

इस गाने को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे काम छोड़कर मौसम को गले लगा लिया जाए, स्टूडियो से बाहर निकलकर मौसम के साथ एंजॉय किया जाए। लेकिन फिर याद आया कि अगर मैं चली गई तो इस मौसम में आपका साथ कौन निभाएगा। तो चलिए फिर आपके दिल का, आपके जज्बात का एहसास समझते हुए अगला गीत अभी के लिए।

वो रुला के हंस ना पाया देर तक, वो रुला के हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक। भूलना चाहा कभी उसको अगर, और भी वो याद आया देर तक। खुद ब खुद बेसाख्ता मैं हंस पड़ा, उसने इस दर्जा रुलाया देर तक। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है ना साया देर तक। कल अंधेरी रात में मेरी तरह एक जुगनू जगमगाया देर तक, वो रुला के हंस न पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:42:10। रात सुरमई महफिल का हसीन और यादगार सफर आप तय कर रहे हैं मेरे साथ। रात सुरमई, जहां हम रात के जज्बात को, रात के एहसास को, रात के दर्द को अपनी बातों से और गीतों से समझने की कोशिश करते हैं, बयां करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर अगला गीत सुना जाए। अगला गीत है शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में,

प्यार का इजहार अगर मुस्कुराते हुए किया जाए तो शायद उसकी जबान वही होगी जो इस गीत में थी। और अब सुनते हैं हम अगला गीत।

वैसे दुनिया छोड़ने की बात गानों में ही अच्छी लगती है और गानों में ही अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि असल जिंदगी में तो अपनों के साथ छोटी छोटी खुशियों में उनके साथ रहना ही असल जिंदगी की दौलत होती है। अपनों के साथ रहना, अपने जो अपने करीबी हैं उनके साथ रहना ही असली दौलत होती है। तो जिंदगी का साथ ऐसे ही निभाते रहना ही असली जिंदगी है। अगला गीत

हम सभी की जिंदगी में बहुत सी तमन्ना होती है, बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं, पर हर तमन्ना पूरी हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता। रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी अर्चना सचदेवा। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी शामिल हुए। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि ग्रीस यात्रा के दौरान ये प्रतिनिधिमंडल कई स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल एक विमान दुर्घटना में

0: 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के उच्चतम रिकॉर्ड दर्ज किए। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज के शुरुआती मैच में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है। मुकाबले में हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का अभियान इस विश्व कप में समाप्त हो गया। ग्रुप चरण के मुकाबले खत्म होने के बाद 32 टीमें नॉकआउट स्टेज में पहुंची। इस चरण में 16 मैच खेले जाने हैं। भारत के स्टार शटलर किताम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकीमोतो को हराया। 33 वर्षीय श्रीकांत का सामना फाइनल में चीनी ताइपे के 8वीं वरीयता प्राप्त सू लिंग यांग से होगा। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष अब्राहम। Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of 2 Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, addressing a joint press conference after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, Mr. Modi said, India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said, India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai. जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
1: The two countries also exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, PM Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Later in the day, PM Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Mr. Modi reached Victoria on Saturday on a 3-day visit to the East African island nation. On the sidelines of the Seychelles visit, PM Modi met with Mauritius Prime Minister Dr. Navin Chandra Ramgoolam. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They also reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Both leaders reaffirmed the significance of the India-Mauritius enhanced strategic partnership under India's vision Mahasagar and neighborhood first policy and their shared commitment to the Global South. India categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Ranadhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi today. The Ministry of Health and Family Welfare said that it will carry forward the vision of Pehle Teen Saal Sampurna Dekhbhal, recognizing the critical importance of the first 3 years of life for child survival, growth, nutrition and early brain development. 4 traditional agricultural products from Madhya Pradesh have been granted the geographical identification. Granted the geographical indication or GI tag. They are Sitahi Kutki, Nagadaman Kutki, Bengani Arhar, and Kshatriya Dhan. The State Agriculture Department described the recognition as a major achievement for farmers. A sessions court in Maharashtra's Bhiwandi remanded the three accused at

3:11 हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद और इंतजार में बहुत गहरा रिश्ता है। हम कुछ भी काम करते हैं तो हमें एक उम्मीद होती है कि इसका परिणाम कैसा होगा, और परिणाम अच्छा होगा या बुरा इसका इंतजार भी होता है। इंतजार का अपना एक अलग नशा है, जिसमें शिकवा भी है और एक अजीब सा सुकून भी। कुछ ऐसी ही बेचैनी, कुछ ऐसी ही दीवानगी लेकर जब कोई किसी के इंतजार में पलकें बिछाए बैठा होता है तो दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है। आइए महसूस करते हैं इस खूबसूरत एहसास को।

कुमार सानू साधना सरगम की आवाज में फिल्म दीवाना से अभी आपने गीत सुना। सुना है वादे अक्सर टूट जाया करते हैं, सुना है वादे अक्सर टूट जाया करते हैं और निभाने वाले अक्सर रूठ जाया करते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने वादा किया हो और वो टूट गया हो?

कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज में फिल्म दिल का क्या कसूर से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, कुछ नजरें ऐसी होती हैं जो बिना कोई लफ्ज कहे सीधे रूह में उतर जाती हैं, और तब जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि कहीं इस सादगी पर हम अपना दिल ना हार बैठें।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म चमत्कार से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म हीरो से अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज में।

हंसते हुए दिल को पल में रुला देती है, हंसते हुए दिल को पल में रुला देती है, सोई हुई तकदीर को पल में जगा देती है। मत पूछो कि ये मोहब्बत क्या चीज है यार, अच्छे अच्छों को ये सीधे रास्ते से भटका देती है। आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में फिल्म सनम से ये गीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म साजन से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, कहते हैं कि प्यार में थोड़ा सा इंतजार उस प्यार की मिठास को और बढ़ा देता है। जब एक हमसफर दूसरे से कहता है कि एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की, तो वो लम्हा इतिहास बन जाता है।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म कयामत से कयामत तक अभी आपने ये गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से, कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों, हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक, और कुछ ही पलों में सुनिएगा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी शामिल हुए। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 1,00,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बन रहा 1,400 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उत्तरी और पश्चिमी भारत के बीच संपर्क को काफी आसान बनाएगा और देश की आर्थिक प्रगति में सहायक होगा। एक्सप्रेसवे बड़ोदरा मुंबई खंड की प्रगति की समीक्षा के बाद श्री फडणवीस ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे बड़ोदरा मुंबई यात्रा के समय को 8 घंटे से घटाकर लगभग 4 घंटे कर देगा। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्न

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

सुबह के 4:11 और 10 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम के साथ आज मैं हाजिर हूं आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। रात का अंधेरा थमा तो एक नई किरण मुस्कुराई है। रात का अंधेरा थमा तो एक नई किरण मुस्कुराई है। देखो धीरे धीरे ही सही पर एक खूबसूरत सुबह आई है। मिट गए सब शिकवे गिले, सब धुंध छंट गई। जिंदगी फिर से नए हौसलों के साथ मुस्कुराई है।

येसुदास की आवाज में फिल्म हैसियत से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी पल पल पर हमारा इम्तिहान लेती है, कभी किसी मोड़ पर तो कभी किसी मोड़ पर। उसी में से हमने ये देखना होता है कि किस तरह हर एक परीक्षा में हमें सफल होना है।

कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म नसीब से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, एक चुप सो सुख, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी और ये सही भी है, क्योंकि हर बात का जवाब देने से अच्छा है कि चुप रहा जाए। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सौतन की बेटी से ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म मन से, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में।

दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा कि किसी खुश मिजाज व्यक्ति को कभी आप देखो तो आपके चेहरे पर भी अपने आप ही खुशी आ जाती होगी। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में वक्त फिल्म से ये गीत।

सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म प्रेम रोग से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी में अलर्ट रहना भी बहुत जरूरी है, इसलिए आगे पीछे दाएं बाएं अच्छे से देखकर चलें। आइए सुनते हैं मन्ना डे की आवाज में फिल्म जोकर से ये गीत।

का ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

जाता है जीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है और इंसान

आपका क्या डर है? कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, दिल जिसके जाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

केजे येसुदास की आवाज में फिल्म चितचोर से आप ये गीत सुन रहे हैं। इसी के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में आप सुनेंगी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए गए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। सोशल मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। भारत के किदांबी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने कैलिफोर्निया में सेमीफाइनल में जापान के योदाई ओकीमोतो को हराया। फाइनल मुकाबले में 33 वर्षीय श्रीकांत का सामना चीनी ताइपे के सू ली यांग से हो रहा है। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण के पहले मैच में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है। मुकाबले में हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का अभियान इस विश्व कप में समाप्त हो गया। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार

0: the end of this news bulletin.
1: सौ दशमलव एक मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी।

सुबह के 5:11:10 हुए हैं। सुबह की इस प्यारी बेला में भोर सुहानी कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है। दोस्तों, आपके सब काम पूर्ण हो जाते हैं अगर उस प्रभु पर विश्वास हो। तो आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन से, जो गाया है विक्रांत माथुर ने।

दोस्तों, ये छोटी सी दुनिया है और हम कई रास्तों पर चलते हैं जहां हमें कई तरह के लोग मिलते हैं, कुछ जाने से और कुछ अनजाने से।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म रंगोली से ये गीत आपने सुना। दोस्तों, हम हर चीज को बांट कर खाते हैं और शेयर करना एक अच्छी आदत भी है। इसी तरह अगर हम अपनी खुशी भी दूसरों में बांट देंगे तो देखिएगा, आप पहले से ज्यादा खुशहाल होंगे।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में फिल्म तकदीर से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म शोर से।

दोस्तों, धैर्य रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर समय स्वयं देता है। अशांत मन और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन में पछतावा ही देता है।